मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:56:35 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार, अब दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए

0: को हट कंधे अपनाना ठीक नहीं होगा।
1: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं समूह स्वर्मी।

खालस का ये भजन अभी आपने श्रुति सड़ोलीकर के स्वर में सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। गांधी जी का आत्मानुशासन, इस विषय पर आज चिंतन है। डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार अपने विचार इस विषय पर व्यक्त कर रहे हैं।
1: आत्मानुशासन शब्द बोलते और सुनते समय इसके अर्थ के साथ उच्च आध्यात्मिक भूमि का बोध स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। अनुशासन दूसरे की ओर से करवाया जाने पर ऊपर से लादा हुआ भार प्रतीत होता है, इसीलिए अनुशासन का पालन करते समय अनेक बार चूक होने की संभावना बनी रहती है। यही अनुशासन अपने भीतर से प्रेरित सत्कर्म के रूप में जब प्रस्फुटित होता है तब सहज स्वीकार्य हो जाता है। इस आत्मानुशासन में आध्यात्मिक धरातल की भूमिका अनिवार्य होती है। इसे ही शास्त्रों में व्रत शब्द से भी अभिहित किया जाता है। अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर आधारित यह व्रत अथवा आत्मानुशासन जीवन और जगत की समस्त समस्याओं का अहिंसक समाधान खोजने में सहायक बन जाता है। महात्मा गांधी ने अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आत्मानुशासन की महिमा को भलीभांति अनुभव किया था तथा समस्याओं के समाधान के लिए इसका क्रियात्मक प्रयोग करके सफलता प्राप्त की थी। अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने और फिर वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने और अंततः भारत से अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने में अहिंसात्मक सत्याग्रह के हथियार को अपनाने में गांधी जी ने आत्मानुशासन की अनिवार्यता प्रमाणित कर दी थी। विलायत में रहते हुए अनेक बार अपने खानपान, वेशभूषा और सामाजिक व्यवहार में फिसलने के अनेक प्रलोभनों पर उन्होंने आत्मानुशासन के बल पर विजय प्राप्त की थी। इस सफलता का श्रेय उन्होंने अन्य अनेक ग्रंथों तथा सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के वो दिए देते हुए भी श्रीमद् भगवद गीता को सबसे अधिक प्रभावशाली स्वीकार किया है। दक्षिण अफ्रीका में अपने मित्रों के साथ गीता पाठ करते हुए दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोकों को उन्होंने विशेष रूप से महत्व देते हुए आत्मानुशासन में इसे स्वीकार किया है। वो श्लोक इस प्रकार हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात आँख, नाक, कान, रसना तथा त्वचा इंद्रिया मनुष्य को क्रमशः रूप, गंध, ध्वनि, रस तथा स्पर्श विषयों की ओर निरंतर आकृष्ट करती हैं। इन विषयों का चिंतन करते रहने से इनके प्रति आसक्ति बढ़ती है, जिससे कामवृत्ति उत्पन्न होती है। प्रत्येक कामना के पूर्ण न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण सम्मोहन अर्थात विवेकशीलता नष्ट होती है। इसके परिणाम स्वरूप स्मृति और बुद्धि का नाश होता है और अंततः मनुष्य का ही नाश हो जाता है। इस व्याख्या का गांधी जी के जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने खानपान, रहन सहन और आचरण में स्वतः इतना नियंत्रण कर लिया कि कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का आत्मानुशासन कर लिया तथा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म से इंद्रियों का संयम, और यह माना कि इस व्रत पालन से ही ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। यही उनका अध्यात्म चिंतन का आधार था। आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों तथा अन्य प्रवासी लोगों के प्रति गोरे शासकों के अन्यायों तथा अत्याचारों के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह करने में गांधी जी को निरंतर सफलता मिलती रही। आत्मानुशासन के बल पर अत्याचार के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह की इस प्रयोगशाला का लाभ उन्हें भारत आकर भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने में बहुत लाभ मिला। इसकी उपयोगिता और भी अधिक उस समय दिखलाई देती है जब भारत में सत्याग्रह के दिनों में जब भी हिंसा दिखाई दी तब उन्होंने अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए उपवास किए। इसका परिणाम यह होता था कि हिंसक भीड़ गांधी जी के आत्मबल से प्रभावित होकर हिंसा का मार्ग छोड़ देती थी तथा अहिंसात्मक आंदोलन पुनः प्रारंभ हो जाता था। गांधी जी के इस अमोघ अस्त्र से प्रभावित होकर महान दार्शनिक वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, एक समय ऐसा आएगा जब लोग यह विश्वास भी नहीं करेंगे कि गांधी जैसा कोई व्यक्ति कभी इस धरा पर विचरण किया करता था। महान आत्मसंयमी गांधी जी को नमन।
0: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार के विचार। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। वैज्ञानिक विधि से धान की रोपाई विषय पर आज जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह।
1: धान की जो रोपाई की जाती है, किसान भाई दो विधियों से कर सकते हैं। एक तो रोपाई जो परंपरागत विधि से किसान भाई करते हैं वो रोपा पद्धति कहलाती है, और दूसरी रोपा पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है जिसे हम धान की श्री या एसआरआई पद्धति या मेडागास्कर पद्धति कहते हैं। तो जो पौध की उम्र है परंपरागत विधि में, किसान भाई 25 से 30 दिन, यहाँ तक कि कई बार 1.5 माह तक की पौध लगाते हुए देखे जाते हैं। तो ये तकनीक जितना देर से पौध लगाएंगे उसका उपज पर उतना ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि 25 दिन अधिकतम आयु की पौध आप लगाएं और एक स्थान पर दो पौधे इस पद्धति में लगाए जाते हैं। पौधों के लगाने का जो अंतराल है वो 15 से 15 सेंटीमीटर पर रखा जाता है कि जब आपकी किस्में कम अवधि में पकने वाली या मध्यम अवधि किस्में हो, तब जब आप देर से पकने वाली किस्में लगा रहे हैं जैसे क्रांति इत्यादि जो देर से पकने वाली किस्में हैं, तो इसमें आपको दूरी अंतराल बढ़ाना पड़ेगा। कतार से कतार की दूरी वहां पर 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम दूरी का निर्धारण करते हुए पौध का रोपण करते हैं। पौध रोपण करने के लिए आप खेत की तैयारी का बताना चाहूंगा कि खेत आपको एक दिन पहले अच्छे से पानी भरकर उसमें खेत को मचा लें। मचाने के लिए पडलर आपके पास रहते हैं, आप उनका उपयोग करते हुए खेत को मचाते हैं और पानी आपके लगभग उसमें 8-10 सेंटीमीटर पानी भर के फिर मचाई का कार्य करें। जब मिट्टी के जो कण है पानी में घुल जाते हैं वो बाद में जब बैठ जाएं तब उसका पानी जो है निकाल दें, और पानी का स्तर जो है 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हुए पौधों की रोपाई कर दी जाती है। जो नाइट्रोजन, स्फुर और पोटास, ये तीन मुख्य तत्व हैं जो धान की फसल को आपको देना होते हैं। साथ ही एक द्वितीयक तत्व जो सूक्ष्म तत्व कहलाता है जस्ता, इसकी भी धान की फसल को आवश्यकता होती है। तो आप ये तीनों ही तत्व जो है और साथ में जस्ता आधार खाद के रूप में जब खेत मचाते हैं उसके पहले आप मिट्टी में आखिरी बखरनी पर मिला दें, उसके बाद पानी भरें, फिर खेत की मचाई करें। जहां तक इन तत्वों की मात्रा का सवाल है, आपको नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और जस्ते की पूरी मात्रा आधार खाद के रूप में देनी है। शेष नाइट्रोजन जो बस्ती आधी मात्रा, उसको दो भागों में जब कंसे फूटते हैं और गबोट वाली स्थिति होती है उस अवस्था पे आपको फसल को देना होता है। खरपतवार खरीफ की फसलों में विशेषकर बहुत अधिक क्षति पहुंचाते हैं और क्षति निर्भर करती है कि आपकी खेत में खरपतवारों की संख्या कितनी है। ये क्षति 40% से लेकर के 90% तक क्षति फसल की उपज में होती है। अब धान की जहां तक सवाल है, तो धान में जब आप पौध लगा देते हैं उसके लगाने के 2-3 दिन के बाद आपको पानी भरे खेत में बीटाक्लोर एक शाकनाशी आता है जो कि अंकुरण पूर्व शाकनाशी की कैटेगरी में इसको रखा गया है, और इस शाकनाशी के उपयोग की मात्रा आपको 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के मान से उपयोग करना है। बाजार में यह मैचेटी और अन्य कई नामों से उपलब्ध है। किसान भाई इसका उपयोग पौध लगाने के 2-3 दिन के बाद पानी के स्तर को रखते हुए 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खेत में रहे, ऐसी स्थिति में इसका छिड़काव कर दें पानी में, तो आपके खेत में फसल के साथ में खरपतवार अंकुरित नहीं होंगे और आपकी फसल इनसे बच जाएगी। एक और यहाँ पर दवा बताना चाहूंगा, एक प्रेटला क्लोर दवा है, यह भी मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है। इसका भी उपयोग आप इसी मात्रा में 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के मान से उपयोग करेंगे तो उससे भी खरपतवार नियंत्रण में आपको सहायता मिलेगी और आपकी फसल का अधिक उत्पादन आपको मिलेगा। परंपरागत पद्धति में एक स्थान पर दो पौधे हम लगाते हैं, और जहाँ तक कितने सावधानी वाली बात है, तो इसमें ये पौध आप हाथ से करीबन आप 1 इंच गहराई में जड़ों को गाड़ दें, उसके बाद आप आसानी से पौधों को लगाया सकता है। मेडागास्कर पद्धति धान की वह पद्धति है जिसमें हम छोटी उम्र की पौध का उपयोग करते हैं और इससे आपकी फसल का उत्पादन 1.5 से 3 गुना तक वृद्धि हो जाती है। और इसमें पौध जो लगाते हैं वो हम 6 से 8 दिन की पौध का उपयोग करते हैं जिससे कि उत्पादन हमें अधिक मिलता है। इससे क्या होता है, फसल की जो पौधे हैं जो हम छोटी अवस्था में लगाते हैं उसमें बीज भी साथ में लगा रहता है, तो खेत में जब पौधा ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को स्थापित करता है और उसमें कंसे अधिक फूटते हैं। एक पौधे में सामान्यतः 35 से लेकर 55 कंसे प्रति पौधा इसमें मिल जाता है।

0: हैं, वहीं परंपरागत विधि में जो धान लगाई जाती है उसमें 15 से 20 पौधे कंसे प्रति पौधा मिलते हैं। तो इस प्रकार से कंसों की अधिक संख्या होने की वजह से बालियां अधिक आती हैं और जिसकी वजह से फसल का उत्पादन बढ़ जाता है।
1: वैज्ञानिक विधि से धान की रोपाई विषय पर अभी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। कृषि चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचना पर कार्यक्रम दर्पण। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
2: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
3: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
2: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
3: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
2: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
3: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
2: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
3: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
4: पानी रे पानी,
5: पानी रे पानी,
2: आओ मिलकर करें प्रयास,
3: शुद्ध पानी हो सबके पास।
6: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात,
3: याद रखो हमारी बात,
2: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
3: जंगल है धरती का गहना,
2: सदा इसकी रक्षा करना,
3: होगी जो धरती पर हरियाली,
2: चहू और फैलेगी खुशहाली।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब दिल्ली से होंगे। 7 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली से ही हम अनुप्रसारित करेंगे।
7: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंग प्रकरणेषु, परीक्षासु अनुचित साधन प्रयोगस्य च प्रकरणेषु च द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय सहैव दोषेभ्यः कठोर दंड विधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। संसद भवन परिसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मंत्रिमण्डलीयोपवेशने एतत् प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। सूत्राणाम् अनुसारेण प्रस्तावितं विधेयकम् आगामि सप्ताहे संसदि प्रस्तुतं भविष्यति। अस्मिन् मध्ये परीक्षा परिष्काराणां दिशि महत्वपूर्ण पदक्षेपेण राष्ट्रीय परीक्षाभिकरणेन 47 अधिकारिणः सेवातः निष्कासिताः। अभिकरणेन महाप्रबंधक स्तरस्य वरिष्ठ व्यावसायिक पदानां तथा संघलोक सेवा

0: उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा अवदत् यत् परीक्षा व्यवस्था परिष्कार सम्बद्धाः प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः प्रशासनेन धैर्येण गम्भीरतया च श्रुताः। तेनोक्तं यत् प्रतिनिधिमण्डलेन त्रयः प्रमुखाः प्रस्तावाः प्रस्तुताः। प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गस्य निवारणाय कतिपयाः परिष्कारोपायाश्च प्रतिपादिताः। श्रीनड्डा अवदत् यत् प्रशासनं प्रतिनिधिमण्डलेन सह अद्य पुनरेकवारं विचारविमर्शं करिष्यति। नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गप्रकरणमाधृत्य छात्राणां विरोधप्रदर्शनानि च अधिकृत्य पञ्चमदिवसे अपि निरन्तरं जातेन कोलाहलेन संसदः उभयोः सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः कार्याचरणं सोमवासरपर्यन्तं स्थगितम्। प्रशासनेन पुनः पुनः आश्वासनं प्रदत्तं यत् तत् नीट प्रकरणे सार्थकचर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीयशिक्षामन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिकप्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीयसमित्या कर्णाटकान्ध्रप्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीयचतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य चतुष्षष्ट्यधिकद्वादशशतकोटिरूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनीवैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेशकर्णाटकयोः मध्ये रेलसम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिकसङ्कुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिकविकासयोजना रसायन इत्येषा योजना मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः रोमानियादेशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानदविद्यावाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षाक्षेत्रे सामाजिकसमावेशे च विशिष्टयोगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः सम्बन्धसुदृढीकरणे च मान्यतास्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अङ्गीकुर्वती राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली

में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि चनाब नदी में जलस्तर बढ़ना 20 से 23 जुलाई के बीच जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी मानसूनी बारिश का परिणाम है। भारत ने कालासागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की बाब सामे को 3-1 से हराया। इसके साथ ही वो इस प्रतिष्ठित जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। सात बजकर 7:20 पर डॉक्टर चारुचित्रा से सुनिए उनके वार्ता मोहन राकेश के नाटकों के मुखर पात्र। 7:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के क्रम में हम आपको प्रत्येक शनिवार 8:30 बजे सुनवाते हैं पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट का विषय है डूबने से बचाव, जागरूकता ही सुरक्षा।

खतरा है। इस विषय पर SDRF और होमगार्ड्स के कमांडेंट रिपुदमन सिंह से बात करेंगी विभूति सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण।

9 बजे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे अब्दुल हमीद खान का सारंगी पर बजाया राग गिरवानी। जिले की चिट्ठी 10 बजे होती है, जिसे भोपाल से हम अनुप्रसारित करते हैं। प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में सुनिए जानकारी, एड्स के संग जरूरी है जंग। डॉक्टर राकेश गहरवार से इस विषय पर बात करेंगी तुलिका शर्मा। 10:50 पर फिल्म संगीत होगा और 11 बजे से कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे से। सभा के आरंभ से ही कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, जिसमें 5:02 पर युवाणी कार्यक्रम होगा, जो आज आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगा। हमारे केंद्र से चौपाल कार्यक्रम सुना जा सकता है 7:20 पर, जिसमें चर्चा होगी वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस, डूबने से बचाने के लिए विश्व दिवस पर चर्चा। इसके अलावा खेत का पानी खेत में, जल सहेजें विषय पर चर्चा होगी। ग्रामीण बच्चे आज ही सुनते हैं अपना कार्यक्रम फुलबगिया, चौपाल कार्यक्रम के ही अंतर्गत। बच्चों से चर्चा का विषय होगा जीवन में अनुशासन का महत्व। शशिभामा तिवारी की वार्ता भी बच्चों को सुनवाई जाएगी, जिसका विषय होगा पत्तियों में क्लोरोफिल कैसे बनता है। 8 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे सभा की समाप्ति तक। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी भोपाल है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। ये वीडियो अब तक 30 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन गया है। आभार व्यक्त किया ये वीडियो अब तक 30 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन गया है।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया है। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: आपको बता दें, अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई के पक्ष में है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 22 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई और 19 तारीख को परिणाम भी घोषित कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक से जुड़ा विधेयक जल्द संसद में पेश किया जाएगा। सरकार आज परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों को लेकर सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुधारों के सुझाव भी दिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। ये कोर्ट भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित किए जाएंगे।
1: थैंक यू फ्रेंड्स। कल
2: माननीय प्रधानमंत्री ने कल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की है, ये जो सभी प्रकार के मसलों को तीव्र गति से निराकरण करने के लिए हमारे राज्य ने भी आज चार नई फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा करके उनके आदेश का क्रियान्वयन किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर चारों महानगरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट हम भी बनाने जा रहे हैं, जहां त्वरित गति से इस प्रकार के प्रकरणों का, युवाओं से जुड़ा के मसलों का त्वरित गति से निराकरण कराएंगे।
0: कल पन्ना में डॉ. यादव ने करीब 185 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 210 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुखबीर सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें वर्तमान दायित्वों के साथ आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही उन्हें खाद्य सुरक्षा आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। भाजपा ने आशुतोष तिवारी, कांग्रेस ने घनश्याम सिंह और आजाद समाज पार्टी ने दामोदर सिंह यादव को मैदान में उतारा है। तीनों प्रत्याशी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए जनसंपर्क में जुटे हैं। भाजपा केंद्र और प्रदेश में एक ही दल की सरकार होने को मुद्दा बना रही है, जबकि कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड कल 26 जुलाई को प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। राजगढ़ जिले के नरसिंहपुर में कल प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से बने सांदीपनी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का लोकार्पण किया। इस विद्यालय में एलकेजी से 12वीं तक के करीब 1300 विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया और सात कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। एक स्वसहायता समूह को 22 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज

0: newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर कल विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज इस पर आदेश सुनाया जाएगा। बचाव पक्ष ने महिला और उम्रदराज होने के आधार पर जमानत की मांग की, जबकि सीबीआई ने इसका कड़ा विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि आरोपी जांच को प्रभावित कर सकती है। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के तहत एक गुरु एक वृक्ष अभियान चलाया गया। इसके तहत कल प्रदेश भर में 40,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। प्रदेश में कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। राज्य सरकार इसे जल गंगा संवर्धन अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 21 जुलाई से 4 अगस्त तक पेयजल का सम्मान और संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। भारत ने पहला मैच 7 विकेट से जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक लगाकर पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया। और अब बात मौसम की। प्रदेश के 35 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है, जबकि 20 जिलों में हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मॉनसून का मजबूत सिस्टम सक्रिय है, जिससे बीते 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। विभाग ने अगले 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। अब तक प्रदेश में 13 इंच बारिश हो चुकी है, जो कुल कोटे का करीब 35% है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार के ऐतिहासिक भूशाला को लेकर कल शाम राष्ट्रीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कोटे गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। झाबुआ पुलिस द्वारा संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जिले भर में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगर मालवा जिले में 106 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नवनिर्मित 3 सांदीपनी विद्यालयों सुसनेर आगर मालवा नलखेड़ा का लोकार्पण जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान आज करेंगे। अशोकनगर राज्य आनंद संस्थान द्वारा जिले के अधिकारी कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन, बेहतर समन्वय और कार्य क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण आयोजित किया गया। डिंडौरी जिला पंचायत सभा कक्ष में कल जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ती की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। गुना जिले में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने जलापूर्ति व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं डॉक्टर चारू चित्रा से उनकी वार्ता, मोहन राकेश के नाटकों के मुखर पात्र।
2: 70 का दशक भारतीय नाटक का वो समय था जब बांग्ला में बादल सरकार, मराठी में विजय तेंदुलकर, कन्नड़ में गिरीश कर्नाड और हिंदी में मोहन राकेश ने अपने नाटकों से धूम मचा रखी थी, और इन सबको मिलाकर ही उस दौर का रंग परिवेश संपूर्ण होता था। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, विजय तेंदुलकर का विवादास्पद नाटक गिद्ध, बादल सरकार का एबो इंद्रजीत और गिरीश कर्नाड का ययाति जैसे नाटकों ने अपने नए प्रयोगों के कारण उपलब्धियों के नए आयाम स्थापित किए। इन सभी नाटककारों ने अपनी भाषाओं के रंगमंच को प्रेक्षागृह की परिधि से बाहर निकालकर आम जनता तक पहुँचाया और देश की अन्य भारतीय भाषाओं में भी यह नाटक मंचित।

हिंदी नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद यदि कोई नाम सशक्त सितारे की तरह एक अलग ही ध्रुवांतर पर चमकता है तो वो है मोहन राकेश का कभी न भुला दे सकने वाला नाम। 50 के दशक में नई कहानी आंदोलन के शीर्ष कथाकार के रूप में चर्चित होने के बाद अपने उपन्यासों, यात्रा संस्मरण, निबंध और संस्कृत नाटकों के अनुवाद के पड़ाव को पार करते हुए उन्होंने जब नाटक के क्षेत्र में अपना कदम रखा तो हिंदी नाटक जगत और रंग जगत की सारी जड़ता और रूढ़ियों को तोड़ नाटक को एक अलग ही कलेवर दिया। वो स्वयं आकाशवाणी के एक साक्षात्कार में कहानी से ड्रामा की ओर मुड़ने के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, स्टेज के साथ मेरा ताल्लुक अंदर ही अंदर काफ़ी पहले से बना रहा है। मेरे दिमाग में जब कोई आइडिया आता है तो वो किसी अफसाना या ड्रामा की तरह के सीन होते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ अपने आप में ही ये मांग करती है, ये डिमांड है कि वो एक अफसाने या ड्रामे की शक्ल इख्तियार करे। मोहन राकेश ऐतिहासिक, पौराणिक, आधुनिक, सामाजिक नाटक लिखने वाले समर्थ कलाकार हैं। उनके दो नाटक आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस जहां एक और पौराणिक कलेवर लिए हुए हैं, वहीं आधे अधूरे और शायद जैसे नाटक समाज और विशेषकर मध्यम वर्ग की विसंगतियों और मनोवृत्तियों को प्रस्तुत करता है। पैरों तले जमीन उनका अधूरा नाटक है जिसे उनकी मृत्यु के उपरांत कमलेश्वर ने पूरा किया। आखिरकार ऐसा क्या था मोहन राकेश के नाटकों में जो उन्हें इस कदर प्रसिद्ध बना गया? उनकी प्रयोगशीलता, इतिहास को नए संदर्भ और आधुनिक ढंग से देखने की उनकी नई नज़र, नए भाव, नई विशेषताओं को स्थापित करना, कंटेम्परेरी समस्याओं को बुलंदी के साथ उठाना, थिएटर को रोज़मर्रा की नई भाषा प्रदान करना, रिश्तों के सामाजिक अकेलेपन और द्वंद को बड़ी ही बारीकी के साथ प्रस्तुत करना और जीवन के कड़वे सत्यों को उद्घाटित करना, ऐसी बहुत सी विशेषताएँ हैं जो उन्हें अपने समकालीन नाटककारों से अलग करती हैं। और उनके इन विचारों को पाठकों तक और दर्शकों तक पहुंचाने का काम तत्परता से जिस उपकरण ने किया है वह है उनके छोटे बड़े सभी किरदारों की मुखरता, जो ऐसा जीवंत संप्रेषण करते हैं कि आप उस नाटक के मुहपाश में बंध जाते हैं। मोहन राकेश की प्रयोगशीलता का उनके द्वारा रचित पात्रों पर गहन प्रभाव देखने को मिलता है। आषाढ़ का एक दिन का संबंध कवि कालिदास के जीवन से है। इस नाटक का शीर्षक भी उन्होंने मेघदूत के ही द्वितीय श्लोक से लिया है। वहीं दूसरी ओर लहरों के राजहंस अश्वघोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरानंद का नाटकीय पुनराख्यान है। नाटक भले ही पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखते हों, लेकिन ये प्रस्तुतियां जिंदगी में सामने आए विभिन्न आकर्षणों, जरूरतों और उनके चुनावों और रिश्तों के भंवर में फंसे आधुनिक व्यक्ति की कहानी है। मोहन राकेश एक और आषाढ़ का एक दिन के बारे में स्वयं एक इंटरव्यू में बताते हैं, कालिदास की जद्दोजहद आज के आधुनिक मनुष्य की जद्दोजहद है, लेखक की जद्दोजहद है। कालिदास को एक सिंबल की तरह सामने रखा गया है। कालिदास की कहानी आज के रिलेशनशिप की कहानी है। दूसरी ओर लहरों के राजहंस की प्रस्तावना में भी वह स्पष्ट करते हैं, इसमें आधुनिक जीवन का पर्याप्त भावी बोध है। मोहन राकेश और गिरीश कर्नाड दोनों ही नाटककार ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास को नए संदर्भों में रखकर उसे आधुनिक रूप से प्रस्तुत कर नए प्रयोग किए हैं। दूसरी ओर आधे अधूरे में एक ही व्यक्ति का सूत्रधार सहित पांच पुरुषों की पृथक भूमिकाएं निभाने की रोचक रंगा युक्ति द्वारा ये प्रस्तुत करना कि किसी भी पुरुष के स्थान पर दूसरे को रख देने से भी कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता, परिस्थितियों की समानता में व्यक्ति एक ही प्रकार से बर्ताव करता है। नाटक में इससे उपजी स्त्री की वितृष्णा इस संवाद में नजर आती है। सब के सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही। शायद नाटक में भी मोहन राकेश ने अपने पात्रों को कोई नाम न देकर उन्हें स्त्री और पुरुष कहकर फिर एक अलग ढंग का प्रयोग किया। मोहन राकेश के सभी पात्र किसी न किसी मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को जीते हैं, जीवन की विडंबनाओं को झेलते हुए संघर्ष करते हैं और संपूर्णता की तलाश में भटकते हैं। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास जो एक रचनाकार हैं, जिसके सामने प्रेम या सफलता चुनने का द्वंद्व है और वह सफलता की खातिर प्रेम को त्याग कर चला जाता है, वह अपनी प्रेयसी मल्लिका के सामने स्वीकारता है, ना तो मैं बदल सका ना सुखी हो सका, अधिकार मिला, सम्मान मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियाँ देश भर में पहुँच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। लहरों के राजहंस में नंद गौतम बुद्ध से प्रभावित हो भिक्षु बनना चाहता है, दूसरी ओर अपनी पत्नी सुंदरी पर भी अनुरक्त है। जब नंद अपनी पत्नी के पास होना चाहता है तो आध्यात्मिक होना चाहता है और तथागत के निकट होते हुए भी सांसारिकता से मुक्ति नहीं पाता। नंद की रूप गर्विता, प्रेम गर्विता रानी सुंदरी जो सांसारिकता में पूरी तरह रमी हुई है, वह गौतम बुद्ध के संन्यास के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से यशोधरा की उदासीनता को दोषी मानती है और वाचाल हो कह उठती है, नारी का

0: आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। वही सुंदरी अपने पति का मुंडित मस्तक देखती है तो उसके नारित्व और स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचती है। आधे अधूरे के पात्र स्त्री पुरुषों के संबंधों में व्याप्त असफलताओं, अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, यौन कुंठाओं और आक्रोश को उजागर करते हैं। जहां बाहरी संसार की बड़ी घटनाएं तनाव पैदा नहीं कर रहीं, बल्कि आंतरिक उद्वेग मन स्थितियां किसी बम की तरह समय समय पर विस्फोट कर युद्ध जैसी स्थितियों को निर्मित कर रही हैं। हर व्यक्ति उस घर में अतृप्त है, उसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, वह अपनी अपनी नियति को झेलता हुआ जिंदगी को ढो रहा है। बड़ी लड़की बिन्नी, जिसका कुछ समय पहले ही विवाह हुआ है, उसका दर्द देखते बनता है जब वो हताशा भरे टूटते स्वर में अपनी माँ से पूछती है, तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वह और कहाँ है वह? इस घर के खिड़कियों, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनूस चीज़ जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? बताओ मम्मा, क्या है वो चीज़? कहाँ पर है वो इस घर में? मोहन राकेश के किसी भी नाटक में स्त्री और पुरुष के आपसी संबंध सामान्य नज़र नहीं आते। जबरदस्त संघर्ष और रस्साकशी है संबंधों में। संवादों के माध्यम से लेखक ने बखूबी उस अंतर विरोध को दिखाया है। आषाढ़ का एक दिन का विलोम यूं तो मल्लिका का पति है, पर मल्लिका के भावकोष में सदैव कालिदास विद्यमान रहता है। दोनों अपनी इस विडंबनापूर्ण त्रासदी को झेलते हुए अपना वैवाहिक जीवन बिताते हैं। अपनी ही पत्नी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ वह कालिदास से पूछता है, क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? नंद और सुंदरी के बीच कई तरह की गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। दोनों दो अलग स्तरों पर चलने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। नंद कहता है, मैं तुम्हारा या किसी और का विश्वास ओढ़कर नहीं जीना चाहता। दोनों एक दूसरे का संघर्ष, व्यक्तित्व का, स्थितियों का सामना नहीं करते, बल्कि नंद बहुत ही कायरता के साथ पलायन कर जाता है। शायद कि मध्यम वर्गीय स्त्री और पुरुष विवाह के कुछ ही वर्षों में जीवन की नीरसता, अकेलेपन, अर्थहीनता, घुटन और ऊब से बुरी तरह ग्रस्त हैं। दोनों एक मशीनी जीवन बिता रहे हैं जिससे ना उससे दूर जा पाते हैं ना ही उसमें कोई रस भर पाते हैं। बातचीत होने के बावजूद भी उन्हें यही लगता है कोई चीज़ होल्ड नहीं करती। फाइलें पलट लो, चाय पी लो, बहस कर लो, किसी के ब्याह शादी है, मातम में चले जाओ, कोई पार्टी अटेंड कर लो, कुछ भी कर लो, खालीपन झोंका क्यों बना रहता है? पुरुष और स्त्री के संवाद प्रभावी हैं और उनकी मन स्थिति को बयान करते हैं। पैर तले की जमीन में जब जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं तब भी अपने वैवाहिक जीवन की निरर्थकता को दो असहाय लड़कियों रीता और नीरा के द्वारा अयूब अपने वैवाहिक जीवन की कुंठा को उनके उपभोग से मिटाना चाहता है। पुरुष की इस प्रवृत्ति से मोहन राकेश दर्शकों के सामने प्रश्न उछालते हैं, औरत कब्रिस्तान क्यों बन जाती है? आधे अधूरे के पति पत्नी में जरा भी सामंजस्य नहीं है। घर की दीवारों के भीतर वो दो दुश्मनों की तरह रहते हैं। समाज में व्याप्त व्यवस्थाओं के चलते इस पुरुष प्रधान समाज का एक पुरुष महेंद्रनाथ भी शादी जैसे बंधन को तोड़ पाने में खुद को असमर्थ पाता है। सावित्री का नाटक के अंत में एकालाप इब्सन की नोरा हेल्मर और तेंदुलकर की लीला बेनारे की तरह उसे भी एक यादगार पात्र बना गया है। सांकेतिकता भी राकेश के नाटकों के प्रयोग का अभिन्न अंग है। उस गहन चुप्पी या कुछ शब्दों में भी पात्रों की मुखरता प्रभावित करती है। बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, ई उफ उफ उफ जैसे भावों से मंच पर भाषा में शब्दों का ध्वनि संयोजन होता है। मोहन राकेश ने जब नाटक की दुनिया में कदम रखा तो दिल्ली में नाटक की कोई खास परंपरा नहीं थी। जब कोई परंपरा नहीं थी तो सिफर से शुरुआत की, और अच्छी बात यह थी कि कहीं कोई बंधन भी नहीं था। अनुराधा कपूर, जो NSG की चीफ भी रह चुकी हैं, वो कहती हैं कि ऐसे में मोहन राकेश ने नाटक और थिएटर को एक अलग ही एनर्जी दी। मोहन राकेश का जिंदगी के बारे में फलसफा यही था कि जिंदगी को हमेशा समाज के कानून के अनुसार नहीं जिया जा सकता। समाज और उसकी व्यवस्था आपको बहुत सी आज़ादी नहीं दे सकते, लेकिन आप समाज को नकार भी नहीं सकते, और उनके पात्रों का स्ट्रगल, अपनी जिंदगी जीने की चाह और उसकी ललक को उनके पात्रों की मुखरता में देख सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर चारुचित्रा से उनकी वार्ता, मोहन राकेश के नाटकों के मुख्य मुखर पात्र। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तूलिका।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और विभा शर्मा का गाया, जावेद अख्तर का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है इश्क।

0: मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अमित कुमार और अलका याग्निक को अब सुनते हैं फिल्म नरसिम्हा में। गीत जावेद अख्तर का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
4: सच?
3: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
4: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
3: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
4: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
3: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। चलो
6: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय ITI में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। ITI में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय ITI में संपर्क कीजिए।
7: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया फिल्म दस्तक का ये गीत। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार राजेश रोशन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैराभारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं।

0: हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
1: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
2: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
4: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 इशारे के लिए सुझाव हुए।
2: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
5: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में

0: आपका फिर स्वागत है। रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
1: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
0: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
2: The recent increase in flows,
3: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
0: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 115,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।

0: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved

0: Thank you, Abhishek. The students' protests at Jantar Mantar is covered prominently by the dailies. Government steps up bid to end arm fast. Protesters firm on Pradhan's exit, leads Hindustan Times. Government seeks time for call on Pradhan exit demand, says the Times of India. Cabinet clears bill imposing tougher paper leak penalties, leads the Statesman. 47 officials sacked in major NEET paper leak purge. Legal action likely, notice, notes the Tribune. Bill to grant Vande Mataram equal legal protection as national anthem introduced in Rajya Sabha, says the Statesman. The Indian Express in its editorial piece, Shine On Dick Parry, writes that the brilliantly crafted saxophone lines by Dick Parry, who passed away at 83 this week, were rarely the first thing one noticed in a Pink Floyd song. But imagine the song stripped off his saxophone, and the incompleteness will reveal what he brought to them. In his aching solo on Shine On New Crazy Diamond, written in memory of Sid Barrett, one can feel the instrument channeling the collective grief of the band. Vishwanathan Anand becomes FIDE interim president, reports a pioneer. Jurgen Klopp named new Germany football coach, informs Hindustan Times. And finally, spectacular cultural mix gives Commonwealth Games a fresh start, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves anti-paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in the Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है. आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में ये पॉडकास्ट. श्रोताओं, आज डूबने से बचाने के लिए विश्व दिवस हम मना रहे हैं. इसी संदर्भ में सुनते हैं आज का ये पॉडकास्ट, डूबने से बचाव जागरूकता ही सुरक्षा है. SDRF और होमगार्ड्स के कमांडेंट रिपुदमन सिंह से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह.
3: श्रोताओं नमस्कार, हम हाजिर हैं पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ. पानी जीवन का आधार है, लेकिन थोड़ी सी असावधानी इसे खतरे में भी बदल देती है. हर साल डूबने की घटनाएं कई परिवारों को गहरा आघात देती हैं. आज हमारा पॉडकास्ट विश्व डूबन के रोकथाम दिवस के अवसर पर, जिसे ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे भी कहते हैं, पर हम चर्चा कर रहे हैं. हमारे साथ जुड़े हैं रिपुदमन सिंह, जो SDRF और होमगार्ड कमांडेंट हैं और आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशंस में वर्षों का अनुभव भी रखते हैं. रिपुदमन जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में.
4: धन्यवाद
3: सर. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रेडियो के साथ आपका परिचय कब हुआ था और किस तरह का संबंध आपका रहा है.
4: मैं एक बहुत अच्छा इसमें वाकया बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रेडियो का महत्व हमारे डिजास्टर में सबसे ज़्यादा है. देखिए, जब हम किसी डिजास्टर में रहते हैं तो हमें किसी भी एरिए में ना तो वहाँ पे लाइट्स होती हैं ना और सोर्सेज होते हैं जिससे हम जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुँचाएँ. उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि उसके माध्यम से हम अपनी सूचना को उन तक पहुंचाते हैं और प्रशासन के जो निर्देश होते हैं जिनका पालन उस समय किया जाना चाहिए उसके लिए ये सबसे अच्छा सोर्स है. तो हमारा और ऑल इंडिया रेडियो का एक बहुत नज़दीकी है, क्योंकि हम जब भी कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं तो इस कार्यशाला में हमारा एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए क्या सोर्स आप लगेंगे. तो लोगों का ध्यान मोबाइल पे जाता है, टीवी पे जाता है, लेकिन ये चीज़ें डिजास्टर के समय में अपना व्यक्तित्व कम कर देती है या खो देती है. लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है आज भी कि जो सूचना तंत्र को लोगों तक पहुंचाता है.
3: रिपुदमन जी, अब हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपने जीवन के विषय में,

0: लाइफ हिस्ट्री और जो आपकी जर्नी रही है अब तक उसके विषय में बताएं, जिससे कि वो अपने गेस्ट को अच्छे से जान पाएं।
1: मैं हूं रिपु दमन सिंह, कमांडेंट एसडीआरएफ एंड होम गार्ड्स। एसडीआरएफ की भूमिका आपदा के समय सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में लोगों को आपदा में रेस्क्यू जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों में एसडीआरएफ के द्वारा बाढ़ के क्षेत्र में बॉडी के रिसर्चिंग में, अर्थक्वेक में हुई या अग्निशमन के दौरान हुए बिल्डिंग कोलैप्स में लोगों की जानों को बचाया गया है। साथ ही एसडीआरएफ अन्य सभी प्रकार के डिजास्टर्स, चाहे वो मैन मेड हों चाहे वो नेचुरल हों, इन सभी में एसडीआरएफ अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों एवं हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य करता आया है। मेरा इसमें आपदा के क्षेत्र में कार्य का अनुभव रहा है। मेरे द्वारा नागपुर का सिविल डिफेंस कॉलेज है, उसमें सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर जैसा बेसिक फायर फाइटिंग जैसे विधाओं में पारंगतता हासिल की गई। वर्तमान में एसडीआरएफ में एक टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया गया है 1079। अगर श्रोता या कोई भी आपदा में फंसा व्यक्ति चाहे तो उस 1079 पे कॉल कर एसडीआरएफ यूनिट को जब वो किसी आपदा में फंसा हो बुलाकर और सहयोग ले सक। और वर्तमान में मैं लगभग 5 वर्षों से ग्वालियर में पोस्टेड हूँ। हमारी एसडीआरएफ की टीम के द्वारा काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशंस ऐसे किए गए हैं जिनके कारण एसडीआरएफ की काफ़ी सराहना रही है।
0: डूबने की घटनाएं आमतौर पर किन प्रमुख कारणों से होती हैं?
1: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डूबने की घटनाओं का जो आज तक का मेरा विश्लेषण रहा है कि जब भी कोई धार्मिक आयोजन होते हैं जिसमें मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है या ताजियों का विसर्जन किया जाता है, और साथ ही ऐसी स्थिति जब यंगस्टर्स जो आजकल मोबाइल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी झरने या किसी पॉन्ड के पास जाकर सेल्फी लेते हैं, साथ ही कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी के अंदर काम किया जाता है वहाँ पर लोग मद्यपान करके अधिकतर जाते हैं पिकनिक के लिए, और पिकनिक मनाने के दौरान वो मद्यपान का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, इन सभी कारणों से डूबने की घटनाएँ सबसे ज़्यादा होती हैं।
0: मध्य प्रदेश और खास करके ग्वालियर जो हमारा क्षेत्र है, आप बताइए कि किन स्थानों पर डूबने का खतरा अधिक रहता है?
1: ग्वालियर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डबरा का कुछ इलाका और भितरवार का कुछ इलाका, चूँकि इसमें सिंध और चंबल नदियों का बहाव रहता है और कुछ सहायक नदियों का बहाव भी रहता है, तो अभी तक का जो हमारा पिछले 5 वर्षों का अनुभव रहा है वो ये रहा है कि इन क्षेत्रों में लास्ट ईयर 2024 में डबरा में हमें रात्रि में रेस्क्यू ऑपरेशंस कराना पड़े, जबकि देश की कोई भी एजेंसीज रात्रि में रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए मना करती हैं। तो डबरा है, भितरवार है, इसके आसपास के जो ग्रामीण अंचल हैं, हमने अभी वर्तमान में उन जगहों पर जहाँ पर सेंसिटिविटी ज़्यादा है वहाँ पर DRC की स्थापना की हुई है, वो लोग वहीं पे टीम तैयार रखते हैं अपनी और बहुत जल्दी, चूँकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि उसमें टाइम बहुत गोल्ड होता है, चूँकि आप जानते हैं कि जैसे अगर फ्लड है, मोस्टली ग्वालियर का जो एरिया है वो फ्लड अफेक्टेड भी है कुछ एरिया, तो फ्लड अफेक्टेड एरिया में बहाव बहुत होता है और उसमें काम करने के लिए बहुत ही धैर्य और ताकत की आवश्यकता होती है, तो हमारे जवान उस तरीके से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं।
0: बच्चों की सुरक्षा के लिए माता पिता या अभिभावक हैं, किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से जब डूबने की बात हो तो?
1: जी देखिए, बच्चों में थोड़ा सा अनुभव की कमी होती है, उनके पास एक्सपीरियंसेस बहुत नहीं होते जीवन को लेके। हाल ही की मेरी कुछ ऐसी रिसेंट की घटनाएं हैं जो बच्चों से ही रिलेटेड हैं। एक तो देखिए, जब वो किसी स्थान पर जाते हैं, खासकर डूबने की जो स्थान है वो रिजर्वायर होते हैं, तालाब होते हैं, डैम्स होते हैं, झरने होते हैं, जहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स बना लेते हैं। अब जैसे मानसून का समय है, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी बहुत तेज़ी से बहाव से आता है और इसमें अक्सर कर घटना होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो जब भी बच्चे ऐसी जगहों पर जाएं, पेरेंट्स प्लीज़ उनको अलाउ करें पहली चीज़ कि वो सेल्फी ना लें, क्योंकि उसकी टोपोग्राफी उनको नहीं मालूम कि पानी में कितना जाने के बाद एकदम नीचे टेंच है या कितनी गहराई है
0: जी।
1: बच्चे तैरना नहीं जानते और फलस्वरूप डूबने की घटना होती है।

0: इसके अलावा बच्चे पिकनिक में जब जाते हैं तो ज़्यादातर आजकल का जैसा परिवेश है उसमें बच्चे मद्यपान का भी इस्तेमाल करते हैं, और जब वो मद्यपान करते हैं तो वो अब साइकोलॉजी उनकी थोड़ी सी दूसरी हो जाती है और वो चेतावनियों पे ध्यान नहीं देते। कई बार हम लोग सीटी बजा के सायरन्स के थ्रू बच्चों को अलर्ट करते हैं कि इस जगह पे आप पानी तेज़ी से बढ़ेगा, वहाँ से हटें, लेकिन बच्चे उस पे ध्यान नहीं देते, बड़ी घटना। और इस प्रकार की घटनाएं इन्हीं परिस्थितियों में होती हैं। तो पेरेंट्स से यही हमारा वो है कि वो बच्चों को सेल्फी, मद्यपान या ऐसी जो बुराइयां हैं इनसे थोड़ा सा दूर रखें और उनके बारे में सावधानियां बरतने के लिए हिदायतें दें।
1: ये तो बच्चों की बात हो गई। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, आसपास जो मौजूद लोग हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या ऐसा है जो नहीं करना चाहिए?
0: अगर व्यक्ति डूब रहा है तो देखिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमारे जवान भी लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और अगर आप सीधे उसके पास जाएंगे तो वो आपको पकड़ लेगा और साथ ही अपने साथ साथ वो नीचे आपको भी डुबो लेगा। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है रेस्क्यू करने के लिए जो भी जाएगा, उसको कुछ सावधानियाँ बरतना। जैसे वो जब उस व्यक्ति के पास जाए तो एकदम पास सामने से बिल्कुल नहीं जाएगा, उसके पीछे की साइड से उस जाएगा, उसके बाल को पकड़ेगा टाइटली और उसको बैक रिवर्स स्विमिंग करता हुआ किनारे की तरफ लेके आएगा। ये तो एक तरीका हुआ। अब अगर मुझे स्विमिंग नहीं आता है तो फिर मुझे दूसरे अल्टरनेट्स पे जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो भी नॉन स्विमर्स हैं उनको लाइफ जैकेट्स, लाइफ बॉय या रस्सों का सहारा लिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में जब किसी को रेस्क्यू कर रहा है वो, तो वो दूर से रिंग जैसी, जैसे ट्यूब्स जो गाड़ियों के ट्यूब्स होते हैं, इनको फेंकेगा रस्सी से बांध के, वो व्यक्ति उसको पकड़ लेगा और वो उसको धीरे धीरे खींच लेगा। ये तरीके हैं, या फिर कुछ और तरीके ऐसे निकाल, रस्सी फेंक, स्वयं रस्सी भी फेंक सकते हैं, रस्सी को भी पकड़ लेता, लंबे बांस हों अगर दूरी कम है उसको फेंक के भी किया जा सकता। मतलब ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम इम्प्रोवाइज्ड कहते हैं, जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें काम कर
1: और सामने से जाके उसको बचाने की कोशिश करना, ये गुरेज करना
0: ये उसके लिए जो रेस्क्यू कर रहा है उसके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो उसको पकड़ेगा, सीधा पकड़ लेगा और ऐसा पकड़ेगा कि गला पकड़ सकता है वो उसका, गर्दन को पकड़ेगा, क्योंकि वो पानी में अपने आप को डेप्थ में जाने से डर रहा है।
1: आपने तैराकी की बात करी है, तैरना अगर आता है तो क्या डूबने से बचाव का ये फुल प्रूफ तरीका है?
0: देखिए तैरना ये तो एक सही बात है कि अगर आप डूबने से बचना चाहते हैं या पानी में अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो तैरना एक उपयुक्त चीज़ है। मतलब वो तो आवश्यक ही है कि जो एरिया जिनमें फ्लड का इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है तो उसमें आप देखते हैं जिनमें नदियाँ निकली होती हैं बच्चे बहुत अच्छे स्विमर्स हो ही जाते हैं, क्योंकि वो उससे दिन भर उनका रहता है पानी के बीच रहना, आना जाना। जो आपने कहा कि स्विमिंग है वो बचाने के लिए और आप स्वयं के बचाव के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है, लेकिन स्विमिंग के अलावा हम बहुत से अल्टरनेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें सिर्फ स्विमिंग आएगी तो ही हम बचा पाएंगे अपने आप को या दूसरे को। मैं प्रेफर करता हूँ, मतलब SDRF और हमने जो देखा है वो ये है कि फ्लोटिंग एड्स का हम यूज़ करते हैं, इसमें इम्प्रोवाइज्ड भी होता है। जैसे कोई सूखी लकड़ी का तना है वो पानी में फ्लोट कर सकता है, तो हमें क्या करना है कि जैसे संबंधित आदमी अगर कभी डूब रहा है किसी कारण से वो पानी में है तो उसको वो उसको पकड़ सकता है, उसको पकड़ने के बाद उस पर बैठ जाता है, वो लट्ठा उसको धीरे धीरे कहीं ले जाता। इसी तरीके से हम जो पानी के जो बॉटल्स होते हैं यूज़ करने के बाद, अगर हम इनको एक क्वांटिटी में 5-6 जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग एक रस्सी से बांध के और अपनी बॉडी पे रख लेंगे तो हमें फ्लोट करेंगे। इसी तरीके से कुछ और भी चीज़ें हम लोग बनाने के लिए बताते हैं, जैसे राफ्ट बनाते हैं जिसमें 10-15 बोट हम पे नहीं है, लोगों को 10-15 की संख्या बनाना है, तो हम ड्रम लेके बांसुक की सहारे बांध के उस पर एक राफ्ट बनाते हैं। वो राफ्ट हमको जिस एरिया में पानी भर गया है, जो पानी का लेवल 8 से 10 फीट है, तो हम उसमें आराम से बोइंग करते हुए 10 से 15 लोगों को नाग करते हैं। तो ये तरीके हैं जो स्विमिंग नहीं है उसके अलावा लोगों को बचाने के,
1: इनका उपयोग किया जा सकता है।
0: जी, इनका उपयोग किया जा सकता है।
1: अब ये बताइए कि आपके अनुभव में आमतौर पर लोग कौन सी लापरवाहियां करते हैं और जो हादसों का शिकार उनको बनाती है, सेल्फी के अलावा? उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं।
0: जी हाँ, सेल्फी, पिकनिक

0: स्पॉट्स पे लोगों का मद्यपान है ना, विसर्जन के दौरान भी लोग मद्यपान करते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब भिंड में था तो एक ही परिवार के 6 लोग बारी बारी से माता विसर्जन के दौरान एक टेंच में चले गए। उनमें से एक लड़का जो उनके परिवार का था वो इंडियन नेवी में था, अच्छा स्विमर था, लेकिन ड्रिंक करने के कारण वो अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया। वो अपने भाई को बचाने गया तो भाई को तो उसने सेव किया, लेकिन उसके बाद के लोगों को लेने के चक्कर में वो सब 6 के बाद एक 6 लोग चले गए। कारण ओवर ड्रिंकिंग, नंबर 1। नंबर 2 जो मेरा एक्सपीरियंस अभी का लेटेस्ट का रहा है, कुछ दिन पहले तिगरा के 2 मेडिकल कॉलेज के छात्र अपने एक ग्रुप के साथ पूरा डैम क्रॉस करने के बाद एक सुनसान जगह पे गए, और सुनसान जगह पे जाने के बाद उन्होंने पानी में अटखेलियां शुरू करी। अब आपको मैं बताऊंगा कि जो डैम की ग्राफिक बनाई जाती है वो एक पर्टिकुलर स्पेस तो उसका फ्लैट रहता है, लेकिन उसके बाद एकदम डेप्थ आती है, क्योंकि पानी को रोकने के लिए पत्थरों की एक दीवार सी बनाई जाती है, तो वो एकदम गहरी होती है, करीब करीब 10-15-20 फीट तक। वो बच्चे आपस में जब तक स्पॉट पे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे सरकते सरकते पानी की उस दीवार के कोने तक पहुंच गए जहां से वो टैंक शुरू होती थी। उसके बाद वो स्लिप हुए और पानी में। ये एक बहुत दुखद घटना थी,
1: इसकी काफी चर्चा भी हुई थी।
0: चर्चा हुई, हम लोगों को रात के वहां पहुंचना पड़ा, उन बच्चों की एक बॉडी हमने रिकवर की, और CPMT से निकले हुए बच्चे थे, एक बिहार का था बच्चा था उसमें और एक बीना का बच्चा था। दोनों बच्चों की डेड बॉडी रिकवर होने में हमें 10 से 12 घंटे लग गए। बड़ी हृदयविदारक घटना थी
1: जी।
0: हम लोग भी लगातार 18 घंटे तक उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करते रहे, जब तक हमने सेकेंड डेड बॉडी नहीं, फर्स्ट डेड बॉडी हमने विद इन 20 मिनट कर ली थी, लेकिन चूंकि रात का समय हो गया था और डैम की गहराई और टोपोग्राफी कुछ मालूम नहीं होता, फिर भी कोशिश की काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद हमने दूसरे दिन जाके रिकवर की, लेकिन ये घटना हमें सिखाती है कि बच्चे, ये नहीं है कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वो सभी जगह की ग्राफिक्स, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट प्लेस पे जब जाएं तो वहाँ पर जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है गहरा पानी है, क्रोकोडाइल है, ये सब आपके लिए एक चेतावनी हुआ होता, अगर आपने उनको नज़रअंदाज किया तो निश्चित तौर से घटना के चांसेस बहुत हो जाते। अक्सर कर जो गहरी गहरी जगह होती है उन पर साइन बोर्ड्स ज़रूर लगाता है प्रशासन, कि जो जिन पुलियों पर से पानी जाता है उनके ऊपर साइन बोर्ड लगा रहता है, ड्रॉप गेट लगा रहता है, टेम्परेरी ड्रॉप गेट्स भी लगाए जाते हैं, लोग उनको भी नज़रअंदाज करते हैं और उस पानी के बहाव में अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा घटनाएं ये मानसून में देखी जाती हैं। और दूसरी जो घटनाएं मानसून के समय में देखी जाती हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों का पानी का एकदम बहाव तेज आता है। कहीं पर भी अगर पहाड़ी पानी आपके पीछे साइड में गिरा है और वो पानी तेज़ी से आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग या जो जी स्थानीय प्रशासन वहाँ पर होता है वो सायरेंस वगैरह बजा देता है पहले से, लेकिन लोग पिकनिक मनाने में इतना तल्लीन रहते हैं कि वो उन सायरनों को, विसिल्स को, मतलब जो साइंस चल रहे होते हैं उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर, जब पानी बिल्कुल एंड दिखाई देने लगता है तब फिर वो अपना सामान उठा के भागने की कोशिश करते हैं, पानी की चपेट में आ जाते हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है सभी से कि पानी, चूँकि हमारे पुराने समय से ये कहा जाता है कि आग और पानी, इन दोनों में सावधानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, तो अगर आपको डूबने से बचना है या अपने परिवार को सेफ रखना है तो प्लीज़ आप लाइफ सेविंग इक्विपमेंट का सहारा लें, आप उनकी चेतावनियों को नज़रअंदाज ना करें और आप वो सब करें जो आपसे प्रशासन अपेक्षा रख।
1: जी, ये तो बात हमने की जो लोग हैं पिकनिक मनाने में या एंजॉय करने में तल्लीन हो जाता है, लेकिन जब कोई घटना घट जाती है रिपुदमन जी और आपकी SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
0: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है मैडम आपने, ये हमारे साथ सबसे ज़्यादा होता है। एक्चुअल क्या होता है, जब SDRF किसी भी स्पॉट पर पहुँचता है तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि डेड बॉडी, चूंकि अब देखिए डेड बॉडी काफ़ी नीचे होती है और डेड बॉडी कभी कभी तो किसी किसी टैंच में फंस जाती है। मैं दुर्घटनाओं के कारण में आपको ये भी बताऊंगा कि लोग पानी में एकदम छलांग लगाते हैं और कभी कभी वो हेड साइड से छलांग लगा देते हैं, तो जो नीचे पोखर्स बने होते हैं उस पोखर्स में जाके बॉडी का हेड फंस जाता है, तो जिसके कारण वो पानी में बॉडी बहुत देर अंदर रह। वैसे बॉडी का ये नियम है कि जब भी बॉडी 24 या 36 आवर हो जाते हैं

0: तो बॉडी पानी में अपने आप फ्लोट कर जाती है। लेकिन अगर वो किसी कारण से पोखर में या किसी में फंसी है, अब उस टाइम रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो हमारी टीम रहती है कंटिन्यूएशन में, एक तो उसे काम करना होता है, जन समुदाय की हमसे अपेक्षा ये होती है कि हमें कितनी जल्दी आप अपना वो आर्टिकल निकाल के दें, तो वो पैनिक सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि टीम का भी एक रेस्टेंस होता है काम करने का। अगर आप उससे 36 घंटे लगातार काम कराएंगे तो थोड़ी सी असुविधाएं उन्हें भी होने लगती। यहाँ पर हम जनमानस को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं जब लोग हम पे हमला करने से भी नहीं चूक, सिचुएशन बड़ी हैटिक हो जाती है उस टाइम, और हम लोगों को भी एक पीड़ादायक स्थिति से गुजरना होता है। क्योंकि लोग हर तरीके की गलत धारणाएं बनाते हैं। एक तो उनका ये मानना होता है कि रात में रेस्क्यू ऑपरेशंस हो सकते हैं, जबकि नियमानुसार रेस्क्यू ऑपरेशंस रात में नहीं होते। लेकिन हम चूँकि जनमानस की भावनाओं की भी हमें ध्यान रखना होता है, प्रशासन का भी निर्देशों को पालन करना होता है, हमारी कोशिश रात में भी लंबा से लंबा काम करने की रहती है। उसके बाद हम अर्ली मॉर्निंग से भी अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस लाते हैं। लेकिन देखिए, कई जो एरियाज रहते हैं उनमें क्रोकोडाइल होते, अगर कोई व्यक्ति को कोई क्रोकोडाइल ले गया तो बॉडी तो रिकवर होना नहीं है। जब बॉडी रिकवर नहीं होना है तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमें होते हैं कि 3 दिन तक तो आपको सर्च करना है। तो हम लोग बॉडी को हर संभव कोशिश करते हैं, बॉडी जहाँ तक कि बोट्स को हम फ्लोट कराते जिससे कि बॉडी अगर है तो वो ऊपर आए। तो इसके लिए हर संभव हम अपनी डीप डाइविंग इक्विपमेंट्स का यूज़ कर पानी के अंदर जाके सर्च करते हैं। तो अभी जो वर्तमान में हमारी समस्या है वो ये है कि हमें रिकवर, बॉडी को रिकवर करने में ज़्यादा लंबा समय लग जाता है कभी कभी, और उसमें हमें जन आक्रोश बहुत झेलना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली हो जाती है।
1: हम उम्मीद करते हैं जो श्रोता हमें सुन रहे होंगे वो इस बात को अवश्य समझेंगे। आपके लिए चेतावनी है, उसको फॉलो करें, और अगर कोई घटना कहीं घटी है तो अपने एंगर को गलत जगह पोजीशन ना करें। SDRF की टीम आपके रेस्क्यू के लिए है, आपके बचाव के लिए है, उसे अपने गुस्से का शिकार ना बनने दें। रिपुदमन जी, अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वे खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें?
0: SDRF जिला प्रमुख होने के नाते मैं आप सभी से यह आग्रह करूँगा कि आप जब भी अपने परिवार के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पे जाएं जहां पर आपको बोट में बैठना हो और आपके परिवार के सदस्यों को बोट में जाना हो, तो आप सबसे पहले उनसे लाइफ जैकेट की डिमांड ज़रूर करें। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपके परिवार को तब तक मदद दिए रहता है जब तक कि उनके पास कोई मदद नहीं आती और उनको डूबने से बचाता। तो सबसे पहला ये नियम भी है कि किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन बोट को हैंडल कर रहे हैं उनकी ये पहली दायित्व है कि वो उनको लाइफ जैकेट प्रदान करें। लेकिन चूंकि हम लोग भी जोश में होते हैं, बच्चे भी जोश में होते हैं, और वो लाइफ जैकेट्स नहीं मांग। दूसरी आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बोट में बैठें तो उस बोट में ये ज़रूर देखें कि उसकी स्थिति ऐसी ना हो कि आप जितने लोग बैठ रहे हैं उसकी कैपेसिटी ही ना हो। ये बहुत होता है। अभी जबलपुर में एक हादसा हुआ, आपने क्रूज का हादसा देखा होगा, क्रूज में भी पूरे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट थे ही नहीं, लाइफ बॉयज नहीं थे, लाइफ जैकेट्स नहीं थे, और कई जगह आपने देखा होगा कि बोट्स में ओवरलोडिंग बहुत होती है क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं वो बोट्स में, जैसे ओंकारेश्वर पे बोट्स का संचालन होता है, मैंने देखा कई बार कि जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसमें लोग ओवरलोडेड बिठा लेते हैं जो बहुत ही बड़ी त्रासदी को निमंत्रण देता है। तो ऐसी चीज़ों से बचें। बच्चों को लेके जाएं तो उनका पूरा केयर करें कि बच्चे आपके हाथ से निकल के पानी की तरफ नहीं चले जाएं, है ना। तीसरी जो चीज़ है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो अगर टब में नहा रहे हैं तो उनके लेवल से पानी अगर ज़्यादा है तो आप उनको अपनी निगरानी में ही बाथिंग करवाएं। अदरवाइज आप अगर हटेंगे तो कई बार जो मैंने इंसिडेंट देखे हैं कि बच्चा बकेट के पास पानी में और उसने एकदम हेड डाउन किया और वो हेड के बल चला गया। माताजी जब तक अपने कामों में किचन के व्यस्त थी, जब वो आती हैं, चूंकि देखिए एक बार व्यक्ति डूबेगा तो उसको अगर 2 मिनट तक आपने उसका ध्यान नहीं दे पाया और उसको ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुँचा तो उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, और नेचुरली अगर आप उसे बाहर निकालते तो उसको कुछ ना कुछ आनी तो होगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम हो गया फिर मिस हैपनिंग के पूरे पूरे चांस हैं। तो एक तो लाइफ सेविंग का इस्तेमाल करें, मदपान बिल्कुल ना करें, ऐसी जगहों पर जाएं, और जो कॉशंस जो आपको दिए गए

0: जिस तरीके के कॉशंस वहाँ लगे हुए हैं उनका निर्देशों का पालन करें। अगर श्रोता जो अभी मुझे सुन रहे हैं वो अगर इसका पालन करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा खतरे से बचाव रहेगा। और वो देखिए, आपकी सुरक्षा में हमेशा हम SDRF हमेशा तत्पर हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम 1079 के कॉल से जल्दी आपके पास पहुंचते हैं, लेकिन सावधानी बरतना आपका भी दायित्व है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। एक बहुत छोटा सा स्लोगन है कि जान है तो जहान है, तो मैं समझता हूँ अगर आप इसका पालन करेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो ये हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए बेहतर।
1: चलते चलते एक परंपरा है कि पॉडकास्ट के जो गेस्ट होते हैं हमारे श्रोताओं को अपनी पसंद का एक गीत भी सुनाते हैं, तो एक गीत आप बताएं हमें अपनी पसंद का जो हम आपकी ओर से अपने श्रोताओं को सुनवा सकें।
0: मैं अपनी तरफ से एक पुरानी, चूँकि मैं पुराना रहा हूँ तो मुझे एक ये सॉन्ग याद है, मनोज कुमार साहब की एक फिल्म हुआ करती थी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम।
1: ये अप्रोप्रिएट क्लोजिंग हो सकती है किसी भी पॉडकास्ट की। हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, आज की इस महत्वपूर्ण बातचीत से हमें ये समझ में आता है कि डूबने जैसी घटनाएं अचानक ज़रूर होती हैं, लेकिन उनसे बचाव पूरी तरह संभव है। आवश्यकता है जागरूकता, सतर्कता और सही समय पर सही कदम उठाने की। हम आभार व्यक्त करते हैं श्री आरडी सिंह जी का, जो अपने अनुभव और महत्वपूर्ण सुझावों के माध्यम से हमें जीवन की सुरक्षा से जुड़ी इतनी जरूरी जानकारी दे रहे हैं।
1: जी धन्यवाद, बहुत मैं भी आभारी हूँ ऑल इंडिया रेडियो का कि आपने मुझे यहाँ आकर इतनी महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का अवसर प्रदान किया।

पॉडकास्ट डूबने से बचाव जागरूकता ही सुरक्षा है। SDRF और होमगार्ड्स के कमांडेंट श्री रिपुदमन सिंह से बातचीत कर रही थी डॉक्टर विभू।

केंद्र सरकार आज परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों को लेकर सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर में करीब 185 करोड़ रूपये लागत के विभिन्न विकास कार्यो का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35 लाख से अधिक हितग्राहियों को 210 करोड़ रूपये से अधिक की राशि भी अंतरित की। भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर कल विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस पर आदेश सुनाया जाएगा। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 35 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट है, जबकि शेष जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में मानसून का मजबूत सिस्टम सक्रिय है, जिससे अगले 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। श्रोताओं, बारिश के मौसम में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, घर के अंदर रहना या घर से बाहर जाना? दोनों ही चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे हैं। घर में बैठकर यदि आप बारिश को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको लगता होगा कि आपके हाथ में चाय होनी चाहिए और सामने पकौड़ों की प्लेट, और फिर एक खूबसूरत सी खिड़की होनी चाहिए जिसमें से आप बारिश को देख सकें, निहार सकें, बाहर का मौसम अनुभव कर सकें। इसी तरह से यदि आप बाहर घूमने के शौकीन हैं तो हाथ में भुट्टा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए जिसमें आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकें भुट्टा खाते हुए, या फिर कोई अच्छा सा पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ पैदल चहलकदमी करते हुए, भुट्टा खाते हुए या चाय पीते हुए काफ़ी सारा समय गुजारा जा सके। यदि ऐसी ही सिचुएशंस को आप सच करना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चाय पीने का एक साथी हो, भुट्टा खाने के लिए एक साथी हो। हाँ, साथी बनाना बेहद ज़रूरी है, कोई दोस्त बनाना बेहद ज़रूरी है, कोई रिश्ता बनाना बेहद ज़रूरी है। हम कार्यक्रम में आकर के आपको अक्सर रिश्तों के बारे में ज़रूर बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं कि ये रिश्ते जो हैं ना, हमें हमारे जीवन में बहुत सारा सुकून प्रदान करते हैं, बहुत सारा तनाव घटा देते हैं ये हमारा। लेकिन क्या हो जब यही रिश्ते तनाव का कारण बन जाएं? होता है कभी कभी ऐसा भी, सबकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन रिश्तों को अपने तनाव का कारण खुद बना लेते हैं। ऐसा ही एक मानसिक लोचा होता है, कह लीजिए साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप ओसीडी। ये रिलेशनशिप ओसीडी क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। रिलेशनशिप ओसीडी में आप रिश्ते को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आपका रिश्ता हो। अब रिश्ता कोई वस्तु तो नहीं है, आपके बिस्तर की चादर तो है नहीं कि आपने ओसीडी में आकर के उसके सारे कोने अंदर टक कर दिए और

पर आपका एकदम सीधा सतर बना रहे, एक भी सिलवट उसमें ना आए। रिश्ते के दूसरी तरफ एक जीता जागता इंसान होता है जिसका अपना दिल और दिमाग होता है। आपके हिसाब से वो चल सकता है, लेकिन उसे अपने हिसाब से भी चलना होता है। तो ये जो रिलेशनशिप OCD है, इसे आप पजेसिवनेस कह सकते हैं, लेकिन ये पजेसिवनेस से थोड़ा और ऊपर होता है। ये दो तरफ से होता है। जो व्यक्ति रिलेशनशिप OCD में होता है, वो खुद पर भी शक करता है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि ऐसा करूँगा तो उसे बुरा ना लगे उसके साथ, यदि मैं ये काम करूँगा तो ऐसा ना हो जाए कि मैं उसे धोखा दे दूँ, या कहीं मैं धोखा तो नहीं दे रहा। हमेशा मन में ये विचार चलता रहता है और अपने हर काम के ऊपर शक पैदा होने लगता है। इसके उलट भी होता है। रिलेशनशिप OCD में पड़ा व्यक्ति सामने वाले रिश्ते पर शक करने लगता है, और इस पजेसिवनेस की हद हो जाती है जब आप या रिलेशनशिप OCD में पड़ा हुआ व्यक्ति सामने वाले का जीना दूभर कर देता है, उसके ऊपर बातें आरोपित करते करते। मनोरोग विशेषज्ञ जो हैं, वो ये मानते हैं कि लगातार ऐसे रिलेशनशिप OCD वाले व्यक्ति के मन में संदेह की बातें आती रहती हैं और वो दिमाग से हटती ही नहीं हैं, और इस वजह से व्यक्ति को भारी तनाव होने लगता है। कभी कभी समझ में आने के बावजूद कि मैं ऐसा करते हुए गलत साबित हो रहा हूँ, वो बर्ताव बार बार किया जाता है। जैसे पार्टनर को बार बार टेस्ट करते रहना, उसका फ़ोन चेक करना, उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछते रहना, उससे कुछ कुछ बातें ऐसी पूछना जिससे वो असहज हो जाए, और साथ ही बार बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करना कि वो सही व्यक्ति है, और ये सब करते हुए हम घंटों की मानसिक ऊर्जा अपनी खो देते हैं। बहुत एंग्जाइटी हो जाती है। सामान्य रिश्तों में भी ये विचार यदि दिन भर हावी रहे कि सामने वाला कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, आप सोचिए रिश्ता सामान्य नहीं रह जाता। ये एक मानसिक प्रताड़ना बन जाता है जो स्वयं द्वारा खुद को दी जाती है। दिमाग में एक आवाज़ लगातार बनी रहती है और वो रिश्ते में लगातार कमी निकालती रहती है, और अपने पार्टनर के खिलाफ भयानक भयानक ख्याल आने लगते हैं, और दूसरों को देख करके तो शक और भी गहराता है। विशेष तौर पर सोशल मीडिया में जो आप रिश्ते में पड़े लोगों के बारे में कुछ अच्छा देखते हैं तो अपने रिश्ते पर शक करने लगते हैं। हालांकि जो रिलेशनशिप OCD नामक मानसिक बीमारी है, इससे दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही पीड़ित हैं, लेकिन ये आंकड़ा रिलेशनशिप OCD वाला विस्तृत ज़रूर है। हम उस मानसिकता को ROCD नहीं कह सकते, रिलेशनशिप OCD नहीं कह सकते, लेकिन मन में विचार आना भी अपने आप को प्रताड़ित करना है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि ऐसा व्यवहार कोई हमारे साथ करे तो हमें कैसा लगेगा, और ये सोच करके भरोसा कर लेना चाहिए। ये तो हुई आज की बात। जब पार्टनर्स जो हैं, किसी रिलेशनशिप में पड़े हुए दो लोग एक दूसरे के बारे में शक करते हैं, एक दूसरे का फ़ोन चेक करते हैं, उसके दोस्तों से बातें करते हैं, उसके बारे में तमाम लोगों से जानकारियां हासिल करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनके शक को बल मिले। जी हाँ, शक दूर करने के लिए ऐसा नहीं करते, वो जो वो शक कर रहे हैं उसे साबित करने के लिए ऐसा करते हैं। अब इसके उलट कुछ साल पहले की बात सोच लीजिए, या कुछ जो अच्छे हेल्दी रिलेशन हैं उनके बारे में सोच लीजिए। वहाँ क्या होता है? वहाँ दो पार्टनर्स कोई भी गलत काम करने से पहले ये सोचते हैं कि हम पर किया जाने वाला भरोसा न टूटे। कोई भी गलत काम करने से पहले यदि हम ये सोचें
कि सामने वाला तो हम पर भरोसा

करता है उसका भरोसा हमें कभी नहीं तोड़ना है। ये वाली भावना यदि मन में रहेगी तो रिलेशनशिप्स हमेशा हेल्दी रहेंगी और दूर तक साथ निभाएंगी। तो हमें भी ऐसी ही रिश्ते चाहिए, ऐसी ही रिलेशनशिप चाहिए जो दूर तक साथ निभाए, जैसे हमारा और आपका रिश्ता। जी हाँ, हम कभी अपने श्रोताओं के ऊपर ये शक नहीं करते कि आज उन्होंने रेडियो सेट ऑन किया है कि नहीं। हम ये मान के बैठे रहते हैं कि आप हमें सुन रहे हैं और इस माइक्रोफोन के पार, इस रेडियो सेट के उस तरफ आप बैठे कान लगाए हमारी बातें सुन रहे हैं। और इसी वजह से हम बातें भी तरह तरह की करते हैं, अलग अलग तरह के विचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और बातों के बीच में गीतों को भी पिरो लाते हैं। तो देखिए, आज हमने ये गीत पिरोया है अपनी बातों के बीच में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को एक बार फिर तुलिका का नमस्कार है। और ये कार्यक्रम जो है गुड मॉर्निंग ग्वालियर, आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम में आगे बात करते हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत में ही कह रहे थे कि आप किस बात से ज़्यादा खुश होते हैं। दरअसल खुशी के जो भरोसे हैं ना, हमारे विश्वास है ना, वो हमने गलत पाल रखे हैं और यही हमारी असंतुष्टि के कारण होते हैं। जैसे हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा तो हम खुश हो जाएंगे, और पैसा कमाने के चक्कर में हम छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हमने आपसे कहा था ना कि भुट्टा खाते हुए किसी दोस्त के साथ लंबे दूर तक चला जाए अच्छे से मौसम में, ये लम्हा भी आपको खुशी दे सकता है, ना कि उस समय को आप पैसा कमाने के लिए रोज़गार के किसी भी काम में घुसे रहें, लगे रहें, उसमें बिताएं। उससे बेहतर ये है कि अपने मित्र के साथ या अपने फेवरेट पर्सन के साथ थोड़ा सा समय गुजारें। और ऐसा नहीं है कि वो समय गुजारना कोई बहुत बड़ी बड़ी गूढ़ बातें करना हो। कभी कभी बेवकूफ़ी भरी बातें करके बिना किसी कारण हंस के भी खुशी हासिल की जा सकती है। हंसना ही नहीं, यहाँ तक कि हम रो करके भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिस पर हम भरोसा करते हैं उसके सामने जार जार रो करके भी खुशी हासिल की जा सकती है। अब आप कहेंगे कि कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं ये, लेकिन यही सच है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ से निकला जा रहा है और हमारे बस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे कब्ज़े में, न हमारे भाई बहन, न हमारे माता पिता, न हमारे बच्चे, न हमारे स्पाउस, कुछ कोई भी हमारे हिसाब से तो काम नहीं कर रहा, सब अपने अपने में लगे हैं।

ये भी कारण जो है वो हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं। अरे क्यों होगा कुछ आपके बस में, आपके कब्ज़े में? हम स्वयं भी तो अपने कब्ज़े में नहीं हैं। जिस दिन हम खुद पर अपना यकीन कर लेंगे, हम खुद अपने हिसाब से चलने लगेंगे, तो उस दुनिया के सारे लोग भी तो अपने हिसाब से चलेंगे ना, वो क्यों आपके कब्ज़े में होंगे? किसी को अपने कब्ज़े में या किसी भी परिस्थिति को अपने कब्ज़े में करने का जो हमारा प्रयास होता है वो भी हमें तकलीफ देता है, तो इसे भी छोड़िए। एक और हमारा विश्वास है जो हमें तकलीफ़ देता है कि जो हम हैं हम तो वही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। अरे भाई, परिस्थितियां हमें बहुत बदलती हैं। आप अपने पुराने वर्जन को याद कीजिए, क्या आप वही हैं आज जो पहले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हर पल ज़िंदगी हमें बदलती है। जो बदल जाता है थपेड़ों के साथ वो खुश रहता है, और जो अड़ा रहता है वो हमेशा दुखी रहता है। तो बदल जाने के लिए तैयार रहिए, हाँ, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि ये जो बदल जाना है ना, ये अच्छा हो, बुराई की तरफ ना हो। कैसे बदलना है ये आप तय कर सकते हैं, कब बदलना है ये समय तय करता है, ज़िंदगी तय करती है। एक और भरोसा है जो हमें दुखी करता है कि जो मिला हमें वो हमारा हक था, ये तो मिलना ही था। नहीं, जो आपको मिला है जितना कर्म आपने किया है उसका प्रतिफल है, हक नहीं है आपका। और हाँ, ईश्वर की मर्जी है, तो कृतज्ञ हमेशा बने रहिए। कृतज्ञता खुशी देती है, और जो हक मांगने वाली बात है, जो अधिकार की बात है, वो हमेशा तकलीफ़ देती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, खुशी के पैमाने हैं, इन पर बने रहिए, खुश रहिए, यही हमारी दुआ रहती है आपके लिए। और हाँ, यदि हम खुश रहेंगे तो खुश नसीबी निश्चित तौर पर हमारे साथ साथ चलेगी, और हम अपने आप को लकी महसूस करेंगे। तो चलिए, आप अपने आप को लकी महसूस कीजिए और सुनिए ये गाना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: चलो
3: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: और आइए कार्यक्रम के अंत में कुछ सूचनाएं आपको दे दें। श्रोताओं, महिला एवं बाल विकास विभाग ने नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का आरंभ किया है। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां 7 अगस्त तक आमंत्रित की गई हैं और इसका उद्देश्य है महिला नेतृत्व आधारित विकास की भावना को प्रभावी ढंग से दिखाने वाला एक ऐसा रचनात्मक और मौलिक लोगो तैयार करना, जिसके लिए कुछ तकनीकी मानक भी विभाग ने निर्धारित किए हैं। इसके अंतर्गत जो प्रविष्टि जाएगी वो रंगीन हो, उच्च गुणवत्ता वाली हो तथा JPG या PNG प्रारूप में हो। इस प्रतियोगिता में चयनित सर्वश्रेष्ठ लोगो डिज़ाइन को ₹11,000 का पुरस्कार होगा। इसके अलावा 4 अन्य उत्कृष्ट प्रविष्टियों को ₹5,000 से सम्मानित किया जाएगा। तो इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स। और साथ ही साथ एक और खबर ये है कि आज से देवशयनी एकादशी, चूँकि आज है तो 4 महीने के लिए देव सोए रहेंगे और कोई भी शुभ कार्य जो है वो हिंदू धर्मावलंबी नहीं करेंगे। कोई शादी, मुंडन, गृह प्रवेश इस दौरान नहीं किया जाता और माना जाता है कि ये पूरा जो 4 महीने का समय है ये जप, तप, व्रत और भगवान की भक्ति का समय है। अब इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है? वैज्ञानिक पहलू ये है कि ये चौमासे का जो समय है ये बारिश का समय होता है, नमी का समय होता है, वातावरण में नमी बढ़ जाती है, इसलिए संक्रामक रोग ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस दौरान संयमित जीवन जीने की सलाह दी जाती है, व्रत रखने की।

सलाह दी जाती है, भारी भोजन खाने की सलाह नहीं दी जाती। ये सावधानियां हैं जीवन जीने की। हालांकि आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए हम बीमारियों से थोड़ा कम डरते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी आहारचर्या में शामिल करना चाहिए। इसीलिए बीच बीच में इस तरह के व्रत, उत्सव, त्यौहार आते रहते हैं और हमें हमारी आहारचर्या याद दिलाते रहते हैं। खैर, कार्यक्रम में एक और गीत इंतज़ार कर रहा है, आप तक उसे भी पहुँचना है।

और इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम अभी आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं अब्दुल हमीद खान का सारंगी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार। प्रस्तुत है अब्दुल हमीद खान का सारंगी पर बजाया राग किरवानी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अब्दुल हमीद खान का सारंगी पर बजाया राग किरवानी। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे महेश कुमार। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने को हैं। ज़िले की चिट्ठी थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आपने सुना भेंटवार्ता पद्मश्री से। लीजिए अब प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से। जिले की चिट्ठी में विषय है आलेख आशीष जैन का, वाचन स्वर दीपा सिंह के।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी, आलेख आशीष जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। नरसिंहपुर जिले में अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। बारिश के चलते खेतों में धान की रोपाई का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि राहत की बात के साथ चिंता भी बनी हुई है क्योंकि इस साल अब तक जिले में औसतन करीब 309 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले साल इसी समय तक 639 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई थी, यानी इस बार अब तक पिछले साल की तुलना में आधी बारिश भी नहीं हुई है। फिलहाल जिले का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। बारिश के मौसम में गांव को साफ सुथरा रखने पर भी प्रशासन खास ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नरसिंहपुर, कोटेगांव और करेली में ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और स्वच्छता कर्मियों का प्रशिक्षण कराया गया। इसमें घर घर कचरा संग्रह, गीले सूखे कचरे को अलग करने और उसके वैज्ञानिक तरीके से निपटान की जानकारी दी गई। जिला पंचायत के अधिकारियों ने सभी पंचायतों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों की पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम खबर कोटेगांव से है। यहां प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की 2 बूंद पिलाने की अपील की। दूसरी तरफ किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी लगातार जारी है। ये खरीदी 10 अगस्त तक चलेगी। जिले के करीब 48,000 किसानों ने मूंग की फसल का पंजीयन कराया है। किसानों की सुविधा के लिए 23 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जहाँ समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी जा रही है। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम मिलेगा। अब बात पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की। विश्व बाघ दिवस के मौके पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ने नरसिंहपुर के पीएम श्री एमएलबी स्कूल में शर्ट पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। जिले के 10 स्कूलों के 156 छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। वन विभाग ने सभी प्रतिभागियों को व्हाइट टी शर्ट दी जिन पर बच्चों ने बाघ और दूसरे वन्यजीवों के सुंदर चित्र बनाए। विकास कार्यों को भी जिले में लगातार गति दी जा रही है। सांसद दर्शन सिंह चौधरी और तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल ने लिलवानी गाँव में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। करीब 49 लाख रुपए की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया। वहीं नई सीसी सड़कों के निर्माण कार्य की भी शुरुआत हुई। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए गाडरवारा में रोगी कल्याण समिति की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने की। इसमें गाडरवारा, साईखेड़ा, साली चौका और चिचली क्षेत्र के अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर कई फैसले लिए गए। जल संरक्षण के क्षेत्र में भी नरसिंहपुर जिले ने मिसाल पेश की है। जिले के 171 सरकारी स्कूलों में रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। एक काम जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किया गया है। अब ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई के केंद्र नहीं है बल्कि जल संरक्षण की सीख देने वाले मॉडल भी बन रहे हैं। और आखिर में संस्कृति और विरासत से जुड़ी खबर। नरसिंहपुर जिले के ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर और हरिश्चंद्र अग्रवाल के संग्रह में सुरक्षित कुल 79 प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण किया गया है। इन सभी पांडुलिपियों को अब ज्ञान भारतम पोर्टल पर अपलोड कर डिजिटल रूप से सुरक्षित कर दिया गया है। इससे जिले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुँच सकेंगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। जिले की चिट्ठी में आज आपने सुना नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था आशीष जैन का, वाचन स्वर दीपा सिंह के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत के बाद तरानों के साथ। इस कार्यक्रम में आज का विषय है एड्स के संग जरूरी है जंग। डॉक्टर राकेश गहरवार से इस विषय पर बात कर रही हैं तुलिका शर्मा।
2: सेहत के बाद तरानों के साथ कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, कितनी ही बीमारियों और महामारियों से हम जूझ रहे हैं, उनके इलाज और वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक बात सार्वभौम सत्य है कि जितना संभव हो बीमारियों से बचाव ही उनके इलाज का पहला कदम है। बचाव ही इलाज है, ये बात हम एड्स के संदर्भ में वर्षों से सुनते आ रहे हैं। एड्स के संग जरूरी है जंग आज के कार्यक्रम का यही विषय है और इस बीमारी यानी एड्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने बात की है डॉक्टर राकेश गहरवार जी से। सबसे पहले राकेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
3: धन्यवाद तुलिका जी, नमस्कार।
2: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर राकेश गहरवार एसोसिएट प्रोफेसर हैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के, और इस समय एआरटी सेंटर में नोडल ऑफिसर के तौर पर भी पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, तमाम सारी बीमारियों के आने के बाद पूछ परख इसकी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन बीमारी अभी भी उतनी ही घातक है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे श्रोताओं को एक बार फिर याद दिलाएं कि ये क्या है।
3: HIV जो है वो, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, ये उस वायरस या विषाणु को कहते हैं जो मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या बीमारियों से बचने वाली ताकत को कम कर देता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में यह वायरस जो HIV है वो मौजूद होता है, वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव कहलाते हैं। और एक और जो कॉमन शब्द है जिसको अपन एड्स कहते हैं, यह श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है कि HIV और एड्स एक नहीं है, इसमें अंतर है। अंतर जो है वो है कि HIV एक वायरस है, जबकि एड्स इस वायरस के कारण होने वाले बीमारियों के समूह को बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो HIV एक वायरस है, एड्स उन लक्षणों का समूह, या इसको बोलते हैं एडवांस HIV स्टेज को हम एड्स कहते हैं, जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता एक तय पैमाने से कम हो जाती है, तब लक्षण ज्यादा शरीर में आने लगते हैं, कई बीमारियां शरीर को घेरने लगती हैं, इस एडवांस स्टेज को हम एड्स कहते हैं। और HIV वायरस है, तो अमूमन जब HIV किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है वायरस, तो अमूमन जो एड्स होने तक की जो समय अवधि है वो अमूमन करीब लगभग 8 से 10 वर्ष तक इस अवस्था में पहुंचने में लगते हैं। तो HIV और एड्स दोनों अंतर है इसमें, और यह जानना बहुत जरूरी है।
2: तो मतलब HIV पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि वो एड्स रोगी है।
3: जी जी जी बिल्कुल, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। HIV एक वायरस है और एड्स उससे होने वाली गंभीर जो लक्षणों का समूह या जो बीमारी है उसको एड्स बोलते हैं, और इसके लिए डेफिनेशन है। एड्स डिफाइनिंग कई लक्षणों के समूह होते हैं वो हो जाते हैं, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को नापने की जो जांच होती है उसको हम CD4 जिसे कहते हैं, CD4 काउंट वो 200 से कम हो जाते हैं तब एड्स कहलाता है। हर व्यक्ति HIV पॉजिटिव एड्स नहीं होता, ये जानना बहुत जरूरी था।
2: यहाँ एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि जो ये HIV पॉजिटिव व्यक्ति है ये एड्स फैला सकता है, ये HIV पॉजिटिव दूसरे लोगों को कर सकता है, ये भी बहुत जरूरी है जानना।
3: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक HIV वायरस पहुंचने के 4 रास्ते हैं। पहला, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क। दूसरा, HIV संक्रमित जो सिरिंज या सुई है उनके पुनः प्रयोग से। तीसरा, HIV संक्रमित रक्त या रक्त तो उत्पाद चढ़ाने से। चौथा, HIV संक्रमित माँ से उसके होने वाले नवजात शिशु को। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिससे संक्रमण फैलता है। और कई भ्रांतियां हैं कि HIV संक्रमण कैसे नहीं होता, जो कॉमन लोगों के जहन में सवाल आते हैं कि HIV संक्रमण कैसे नहीं होता है, जैसे इन मरीजों को साथ साथ कुछ भी हम खाना खाएं इससे कभी नहीं होता,

0: सामान्य सामाजिक व्यवहार जैसे हाथ मिलाने, गले मिलने से इनसे कभी नहीं होता। खाने के बर्तन, कपड़े, बिस्तर, शौचालय, इनके सामूहिक उपयोग से कभी नहीं होता वायरस, एचआईवी वायरस। खांसने, छींकने या हवा से इससे बिल्कुल नहीं होता है। मच्छरों के काटने, घरों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े के काटने से, तो इन सबसे बिल्कुल नहीं होता। ये भ्रांतियां हैं, ये मिथ्या है कि एचआईवी संक्रमण, जो मैंने कई चीजें ऐसी बताई, उनसे एचआईवी वायरस एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। संक्रमण के चार ही मुख्य रास्ते, मैंने कहा, या तो संक्रमित खून चढ़ाने से रक्त या रक्त पदार्थ, या असुरक्षित एक से या ज्यादा अधिक लोगों के साथ असुरक्षित यौन संबंध से। तीसरा, जो इंजेक्शन ड्रग यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, संक्रमित सुइयों का पुनः उपयोग करते हैं। अगर वो एचआईवी संक्रमित व्यक्ति तो एक दूसरे से वो शेयर करते हैं निडल, वो एक इम्पोर्टेंट इंजेक्शन ड्रग यूजर्स। और चौथा, संक्रमित माँ से उसके होने वाले नवजात शिशु, तो ये मुख्य चार यही कारण है। इसके अलावा और किसी कारण से एचआईवी वायरस नहीं फैलता है।
1: और जो भ्रांतियाँ आपने बताई हैं उनसे कोरोना फैल सकता है लेकिन एड्स नहीं फैल सकता।
0: एड्स नहीं फैल सकता, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। एड्स में और कोरोना में यही है कि एड्स का जो संक्रमण है बहुत सीमित है, बहुत ही अनसेफ प्रैक्टिसेस जो अपन बोलते हैं सेक्सुअल, उनसे होता है। और कोरोना जो है वो एक ड्रॉपलेट वायरल इन्फेक्शन है जो खांसने छींकने उन सबसे होता है।
1: डॉक्टर साहब, एड्स से बचाव के लिए तमाम जन जागरूकता के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, और कोई भी जन जागरूकता अभियान जो शासन द्वारा चलाया जाता है वो जनता की भागीदारी के बिना पूरा नहीं होता। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है शासन के प्रयासों और जनता की जागरूकता के बीच, इस कोऑर्डिनेशन को बनाने में कितना मेहनत आप लोगों को लगती है, और आपको क्या लगता है कि कितना सफल हो रहा है? क्योंकि ये प्रयास तमाम सारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी किए जा रहे हैं, शासन द्वारा भी किए जा रहे हैं, और तमाम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कितना संभव हो पाया है कि एड्स के लिए जागरूकता बनी?
0: देखिए, ये बड़ी हर्ष की बात है। ये उन बीमारियों से में से है जिसका प्रेवलेंस पहले से, जब भी हमने एड्स को जाना उससे और आज में हमने कई सफलताएं अर्जित की हैं। और ये संभव हुआ है सरकार के प्रयासों से, चिकित्सकों के प्रयास से, कई सामाजिक संगठन हैं, जनता है। इसका प्रेवलेंस जब स्टार्ट हुआ था हमारे भारतवर्ष में 1986 में ये वायरस आया था पहली बार चेन्नई में, और जब शुरुआती जो प्रेवलेंस था एचआईवी का वो बहुत ज्यादा था, अर्ली 90s में 0.38 था, और अभी हम इस पे 0.22 पर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ये यही ऐसी बीमारी है जिसका प्रेवलेंस, जो इंसिडेंस, जिसको हम बीमारी का होने का प्रतिवर्ष नए इन्फेक्शन है, इसमें काफी कमी आई है। और ये सब अथक प्रयास, चाहे वो चिकित्सक समूहों के हों, चाहे सामाजिक संगठन, जनता का जो साथ मिला, तो इससे हम काफी वो खाए। और बहुत कारगर दवाइयां भी हैं जो हमको, जिनको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, वो नियमित चलती हैं मरीजों को। और इन सबके प्रयास से इस बीमारी में हमने काफी हद तक इसको कंट्रोल करने में, इसका इंसिडेंस कम करने में बहुत मदद मिली है।
1: डॉक्टर साहब, एड्स के बारे में और इस कैसे हो सकता है इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही है कि सेहत की बात तरानों के साथ, तो हम ये बातें करते करते जो भी हमारे अतिथि होते हैं उनकी पसंद के गीत भी सुनते हैं। तो हमारे श्रोता जानना चाह रहे होंगे कि डॉक्टर राकेश गहरवार को कौन सा गीत पसंद है या गाना बजाना पसंद करते हैं कि नहीं?
0: देखिए, संगीत तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आपके रिलैक्सेशन का, हम सुनना पसंद करते हैं, गाते तो नहीं है।
1: जी
0: जी, तो आप किशोर कुमार जी का कोई एक गाना सुनवा दीजिए श्रोताओं को।
1: तो चलिए हम सुनवाते हैं आपकी पसंद पर किशोर कुमार का गाया गीत।

0: डॉक्टर बिग बग में स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। आपने बताया कि किस किस तरीके से एड्स फैल सकता है। इसमें एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो रक्तदान लोग करते हैं, करने वाले डोनर और एक्सेप्टर दोनों के लिए किस तरह के खतरे होते हैं और उन्हें उनसे कैसे बचना चाहिए, ये हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: देखिए, ज्यादातर जो ब्लड डोनेशन है, अब सभी ब्लड बैंक्स मैंडेटरली HIV टेस्टिंग करती हैं, सभी टेस्ट। तो वो खतरा अमूमन टल गया है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड बैंक्स के थ्रू, क्योंकि जो डोनर होता है उसका HIV टेस्टिंग होती है और उसके बाद ही जब वो HIV फ्री होता है, HIV नेगेटिव होता है, तभी डोनेशन के लिए स्वीकार किया जाता है वो ब्लड। तो ब्लड बैंक्स पूरे विश्वभर में HIV की मैंडेटरी हर ब्लड बैंक टेस्ट करने के बाद ही ब्लड डोनेशन लेती है।
0: क्या ये टेस्ट बहुत महंगा होता है?
1: ये तो ब्लड डोनेशन पे तो ब्लड बैंक करती हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हर राज्य की स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी होती है और ये जो ICTC जिसे बोलते हैं, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ये हर सरकारी संस्थाओं में, जिला चिकित्सालय, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सभी मेडिकल कॉलेज में ये जाँचें मुफ्त की जाती है।
0: अच्छा, तो यदि किसी को इमरजेंसी में ब्लड डोनेट करना है, कोई एक्सीडेंट है या इस तरह की कोई समस्या है, ऑपरेशन के दौरान किसी को अचानक रक्त की आवश्यकता पड़ी, तो ऐसे में जब अचानक रक्त चढ़ाना पड़ता है तो भी ये सारी प्रक्रिया का पालन किया जाता है?
1: यस, बिल्कुल किया जाता है। इमरजेंसी ब्लड डोनेशन हो चाहे प्लांट डोनेशन हो, ये पहले से दोनों ही अवस्थाओं में हमको HIV की जाँच करना सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है और जाँच की जाती है। जो मुख्यतः जो भारतवर्ष में जो केसेस हैं HIV के, उनमें सबसे ज्यादा योगदान जो है असुरक्षित यौन संबंधों का ही है। सेक्सुअल रूप से ही सबसे ज्यादा जो 85-87% मरीज हैं वो यही है।
0: तो इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस तरफ आपका ARTI सेंटर किस तरह से काम कर रहा है?
1: मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ARTI केंद्र ग्वालियर 1 अप्रैल

0: 2010 से सतत अपने सेवाएं दे रहा है। हमारे केंद्र में अनुभवी एवं प्रशिक्षित चिकित्सक, परामर्शदाता, अन्य स्टाफ जो कि पूरी तरह से ट्रेन्ड है और उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सहयोगात्मक व्यवहार के साथ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। निःशुल्क का मतलब दवाइयां जीवन भर निःशुल्क मिलती हैं इस केंद्र पर। निःशुल्क जांचें जो बाजार में बहुत महंगी होती हैं, जिसमें CD4 काउंट है, वायरल लोड हमने पिछले वर्ष से स्टार्ट किया है, जो कि बहुत महंगी जांच है, और हम हर मरीज का ये सब संपूर्ण जांचें, संपूर्ण परामर्श, क्वालिफाइड काउंसलर है हमारे पास और चिकित्सक हैं, और प्रतिमाह मरीज हमारे पास आते हैं क्योंकि इसकी दवाइयां निरंतर चलती हैं। निरंतर मीन जीवन भर, जब तक मरीज जिंदा है तब तक जो एंटी रोट्रोवायरल ड्रग्स हैं ये हमारे केंद्र से प्रदाय की जा रहे हैं। और आपको जानकर वो होगा कि हमारे केंद्र पर आज दिनांक तक करीब 5,300 मरीज रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से अभी प्रतिमाह करीब जो हमारी ओपीडी है 1500 से 1800 प्रतिमाह मरीज आते हैं हमारे केंद्र पर। और सभी सेवाएं, चाहे वो परामर्श हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, ये सब सेवाएं निशुल्क हर व्यक्ति को प्रदान की जाती है।
1: बहुत सारे लोग बीमारी छुपाते हैं, ये भी एक ऐसी बीमारी है, सोशल टैबू की वजह से छुपाते हैं। अब हमारे यहाँ तो टीबी जैसी बीमारी छुपा लेते हैं लोग, ये तो बड़ी बीमारी मानी जाती है एड्स, तो ऐसे लोग जो छुपाते हैं वो आपके रजिस्टर्ड मरीज नहीं होते, लेकिन वो समाज में इस बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, या इनको डिटेक्ट करने के लिए समाज को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, मैंने जैसा बताया ये एक सामूहिक प्रयास है, सरकार, प्रशासन, सामाजिक संगठनों का बहुत, इसमें जो एनजीओ हैं, एनजीओ ने बहुत योगदान किया है, हर तरफ से एनजीओ मदद करते हैं, चाहे वो उनके जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में। तो हम इस पहलू पर काफी हद तक सफल हुए। एक जो हमारा एक स्लोगन था कि 2020 का जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ये था 90-90-90, मतलब पहला 90 कि जितने लोग संक्रमित हैं HIV से 90% मरीजों को अपनी जानकारी होनी चाहिए, और जो 90% जानकारी है उसमें से 90% ट्रीटमेंट पर होनी चाहिए, दूसरा 90, और तीसरा 90 कि जो मरीज ट्रीटमेंट पर है वो दवाइयों का असर या जो वायरस सप्रेस करने की क्षमता इन दवाइयों द्वारा वो 90% मरीजों में होनी चाहिए। इसमें हम काफी हद तक सफल रहे। हमारे भारतवर्ष का डाटा देखा तो हम 85% इसमें हमको सफलता अभी तक मिली है, तो ये काफी अच्छा नंबर है। और जो रही बात स्टिग्मा की, इसमें हमने बड़ी लंबी यात्रा तय की है। जब शुरुआत में बहुत HIV का नाम सुनते ही डॉक्टर भी घबरा जाते थे, मरीज भी बहुत छुपाते थे, लेकिन सभी के सतत प्रयासों से हमने इसमें काफी वो किया है। अब हमारे, आप हमारे केंद्र पर आएंगे तो लोग आपको बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार करते हुए, आराम से बैठे हुए अपने ओपीडी, अपने नंबर का इंतजार करते हुए आराम से मिल जाएंगे, कोई वहां छुपाने का ऐसा वो नहीं होता। और ये संभव हुआ है, हमारा जो स्टाफ भी है AIT केंद्र में वो बड़ा, इनको बड़े सम्मान के साथ स्वीकार करता है केंद्र पर, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। और ये चूंकि बीमारी ऐसी है, इसमें चिकित्सक के पार्ट पर यह है कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, गोपनीयता पूर्ण रूप से बरकरार की जाती है। केवल जो स्पाउस है उसको हम आइडेंटिफाई वो करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के, क्योंकि उसको उसके साथ रहना है, अदरवाइज ये जानकारी बीमारी के मरीज की किसी और व्यक्ति को कभी नहीं देते हैं। तो स्टिग्मा भी काफी कम हुआ है समय के साथ, और हम इन चीजों में जो टैबू है, स्टिग्मा है, इसमें सामाजिक संगठनों ने बहुत प्रयास किए हैं। कई ऐसे संगठन हैं जो HIV पॉजिटिव जो कम्युनिटी है उनके मैरिजेस वगैरह भी कराने में जो इस तरह के भी सहयोग करते रहे हैं और करते हैं, और सरकार इनको पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है।
1: ये बहुत बेहतर बात है, और यदि समाज में इस तरह का एक्सेप्टेंस हर बीमारी के लिए हो जाए तो बीमारी से निजात पाना या उसे जीतना आसान हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, एक और गाना हमारे श्रोताओं को सुनवाइए, कि कौन सा गीत आप सुनवाना चाहते हैं अपनी तरफ से?
0: मैं चाहूंगा, मुझे गजल में जगजीत सिंह जी बहुत पसंद है, तो मैं चाहूंगा कि आप जगजीत सिंह का गाना जरूर सुनवाए श्रोताओं को।
1: और जगजीत सिंह की आवाज ऐसी है जो एक उम्र में हर एक युवा को पसंद आती है, तो आपको शायद इस गीत को सुनते हुए अपने कॉलेज के दिन याद आएंगे। जी, आइए सुनते हैं जगजीत सिंह जी की गाई।

0: एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश गहरवाल जी और हम एड्स पर बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बारे में बताया है, ये क्या है? क्या बहुत सारी दवाइयां एक साथ दी जाती हैं?
1: एआरटी का मतलब है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। जब शुरुआत हुई थी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, तो इसमें हमने काफी विकास किया है इन दवाइयों में। पहले जो नंबर ऑफ पिल्स थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अभी आपको जानकर खुशी होगी कि अब केवल दो तीन जो ड्रग्स हैं वो एक ही गोली में समावेश है और वो एक गोली हमको प्रतिदिन लेनी है रात को भोजन के बाद।
0: अच्छा।
1: तो ये दवाइयां इतनी कारगर हैं कि इन एचआईवी रोगियों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी कर दी है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, जो मरीज जिनको निरंतर नियमित दवाई लेते हैं उनकी जो शरीर की स्थिति है बड़ी अच्छी है और वो अपने जीवन शैली को हम और आपकी तरह जी पा रहे हैं। और जो वायरस है उसको सप्रेस करने में, उसको दबाने में ये दवाइयां बहुत ही कारगर साबित हो रही हैं और बहुत अच्छी दवाइयां विकसित हो गई हैं। जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है उसके माध्यम से इतनी अच्छी दवाइयां विकसित हो गई हैं कि हम केवल एक गोली हमको निरंतर लेनी है। बस यही है कि ये दवाइयां निरंतर लेनी है, एक भी दिन इसमें गैप नहीं करना होता है। और जो इनको दवाइयों को नियमित लेता है उनकी जो शरीर की स्थिति है जो उनमें और संक्रमण होने के खतरा न के बराबर हो जाता है। और एक और जो मैंने एक कारण बताया था आपको जो बहुत महत्वपूर्ण होता था पहले, कि संक्रमित माँ से शिशु को होने वाली जो, तो हमने इसमें इतना डेवलपमेंट किया है कि पिछले कई वर्षों में हमने हमारे ही सेंटर पर अगर जो वो माए संक्रमित हैं वो नियमित एचआईवी की दवाई ले रही हैं तो उनसे होने वाले जो बच्चे की जो

0: रेसिपी वो नागाली हो गई है और हमने
1: अच्छा।
0: पिछले कुछ साल ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट और बड़ी खुशी की बात है कि जो बच्चा जो जन्म ले रहा है वो स्वस्थ HIV नेगेटिव ही हमारे पास हो रहे हैं।
1: क्या बात,
0: पहले रिस्क बहुत हुआ करती थी, तो ये दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि अगर ये नियमित ली जाए तो वो कई प्लांट प्रेगनेंसी कई पेशेंट करते हैं और वो कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि उनने अगर दवाई ली है और बच्चे को जन्म के समय पर वो दवाई पिलाई जाती है जो एंटीरोट्रोवायरल ड्रग है जिसको नेबिराफिन, तो वो खतरा नगण्य बच्चे में होने की, तो ये बहुत सफलताएं अर्जित की इन इस बीमारी में हमने, चाहे वो थेरेपी के पार्ट पे हो चाहे वो जांच के पार्ट पर हो। अब वायरल लोड हम कर रहे हैं हर व्यक्ति का हर 6 माह में या प्रतिवर्ष। मैं मरीजों को समझाता हूँ कि ये और जैसे गंभीर और क्रॉनिक जो बीमारी है उसी की तरह इसको हम क्रॉनिक मैनेजेबल इलनेस बोलते हैं HIV को, कि अगर आप अपनी दवाएं से नियमित ले रहे हैं, खान पान आपका नियंत्रित है, तो आपके और हमारे जीवन में जो जीवन शैली है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो रही है हमारी।
1: डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज, यानी क्रॉनिक तो है लेकिन यदि हम थोड़े से जागरूक रहें तो इसे बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। और आपने जैसे कि बताया कि सिर्फ एक गोली लेनी है और आप सामान्य दूसरे लोगों के जैसा जीवन जी सकते हैं, उतनी ही उम्र भी प्राप्त कर सकते हैं जितनी आपकी स्वाभाविक उम्र है। और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरी मानव जाति की तरफ से मेडिकल साइंस का, जितने रिसर्च में लगे हुए लोग हैं, जितने डॉक्टर्स कम्युनिटी है, उन सबको, कि जिन्होंने इतने अथक प्रयास किए हैं बीमारियों को जीतने के लिए। न सिर्फ एड्स बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस आई जिनको आज हमने जीत लिया है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि माँ से शिशु को होने वाले खतरे को आपने बहुत ज्यादा कम कर दिया है, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियाँ इसमें भी है कि माँ से बच्चे को दूध यदि पिलाती हैं तो भी खतरा है, इसका क्या वो है?
0: बिल्कुल, अगर संक्रमित है माँ और उससे दूध पिलाने जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी भी रिस्क रहती है बच्चे में, लेकिन चूंकि माँ के दूध के और अन्य फायदे बहुत ज्यादा है और हम जिसको कहते हैं कि जहां अपने को रिस्क और एडवांटेज को वे करना है, तो माँ का दूध हम पिलाने बोलते हैं मरीज की जो है वो नियमित दवाई लेते रहे। और जैसा मैंने कहा, ये खतरा वैसे भी बहुत कम हो गया है जो संक्रमित माँ से शिशु के हो, तो और माँ के दूध के फायदे बहुत ज्यादा है क्योंकि उसमें और न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादातर माएं कराती हैं जो संक्रमित हैं, बस यही है कि दवाई का नियमित सेवन लेती हैं तो वो खतरा बहुत कम है, नगण्य। और ब्रेस्ट मिल्क अपने आप में बहुत जरूरी होता है एक माँ के, एक बच्चे के विकास के लिए।
1: एड्स के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, उनसे बचाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है, नहीं तो हमारे देश में मेल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत कॉमन समस्या है बच्चों में, तो हमको और बीमारियों का खतरा बच्चे में ज्यादा रहेगा अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेंगे।
1: ARTI सेंटर की हम कार्यप्रणाली जानना चाहते हैं। आपने बताया कि बहुत से परामर्शदाता आपके पास रहते हैं, काउंसलर्स रहते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ये पूरा सिस्टम बना होता है, इस सिस्टम के बारे में यदि हम जानेंगे तभी इस सिस्टम पर भरोसा कर पाएंगे और यहाँ तक पहुँच पाएंगे, तो इसके बारे में बताइए।
0: देखिए, सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव अगर आता है जो एकीकृत परामर्श केंद्र जांच केंद्र ICTC जो है भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, अगर उसको जानकारी होती है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो HIV पॉजिटिव जानकारी मिलने के साथ ही उसे नजदीकी एंटी रिट्रोवायरल सेंटर में अपने नाम का पंजीयन करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे ही हमारे केंद्र पर वो मरीज पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है, तो यहाँ का जो कार्य प्रणाली है हमारे ARTI सेंटर की बहुत ही सिस्टमेटिक है। पहले मरीज आएगा तो जो कम्युनिटी केयर कोऑर्डिनेटर होता है वो उसका पंजीयन करेगा, उसके बाद वो मरीज काउंसलर के पास जाएगा, जो परामर्शदाता है वो उसे पूरी बीमारी के बारे में जानकारी देगा। बीमारी की जानकारी वो कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें वो नियमित जांचों की कितनी जरूरत है, चिकित्सीय परामर्श की कितनी जरूरत है, वो परामर्शदाता उसको पूरी जानकारी बीमारी के बारे में, नियमित दवाइयां लेने का क्या प्रभाव है, वो सब जानकारियां उनको देगा, किस तरह से दवाई लेनी है, अपने खान पान में क्या बदलाव करनी है, ये परामर्शदाता देगा। उसके बाद वो मरीज जाता है चिकित्सक के पास, चिकित्सक उसका पूरा परीक्षण करता है, परीक्षण उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं, हिस्ट्री टेकिंग जो है, बीमारी से संबंधित जो सवाल है वो पूछते हैं, और चिकित्सक उसका पूरा पूर्ण परीक्षण करके जो आवश्यक जांचें हैं वो लिख देते हैं। और उसके बाद जब जांचें आ जाती हैं, क्योंकि इन बीमारियों में एक बहुत जो

0: इम्पोर्टेंट बात मैं कहना भूल गया कि इन बीमारी में जो एच आई पॉजिटिव मरीज है इनमें अवसरवादी संक्रमण जिनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो जल्दी होने लगते हैं क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। सामान्य व्यक्ति से इनमें जो अवसरवादी संक्रमण होने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। तो इन बीमारियों की भी जांच चिकित्सक द्वारा तुरंत की जाती है। जब पूरी जांचें आ जाती हैं तो करीब और उसके बाद इस मरीज को मेंटली प्रिपेयर्डनेस जिसे बोलते हैं मानसिक रूप से यह प्रिपेयर करना होता है कि ये दवाइयां आपको नियमित लेनी है जिंदगी भर लेनी है। और उसके बाद अगर कोई अवसरवादी संक्रमण है तो पहले उसको ठीक किया जाता है। जैसे खासकर जो कॉमन इन्फेक्शन है खासकर टीबी का संक्रमण इन मरीजों में बहुत ज्यादा होता है। स्किन इन्फेक्शन है वो ज्यादा होते हैं तो पहले ये जो टीबी का इलाज है वो 2 हफ्ते तक हम देते हैं जब दवाई उपचने लगती है। उसके बाद जो एचआईवी की दवाइयां हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं वो हमारे फार्मासिस्ट जो होते हैं केंद्र पर वो उनको दवाइयां देते हैं 15 दिन बाद जब और दवाइयां पचने लगती हैं। उसके बाद वो मरीज डाटा मैनेजर के पास जाता है जहां उसकी पूरी एंट्री होती है और ड्रग मिल जाता है उसे 1 महीने के लिए। उसके बाद उसका पूरा इस तरह से फ्लो चार्ट बना हुआ है। हर कमरा चिन्हित है कि पहले कम्युनिटी केयर कोऑर्डिनेटर उसके बाद काउंसलर उसके बाद डॉक्टर फिर फार्मासिस्ट फिर डाटा मैनेजर लैब टेक्नीशियन जो बीच में जांच करेगा तो ऐसा स्टाफ नर्स। तो इस तरह से हमारा पूरा फ्लो चार्ट है और उसमें कोई चूक नहीं होती है इस तरह की क्योंकि पूरा ट्रेंड है वो प्रशिक्षित स्टाफ है जो आपकी देखरेख कर रहा है और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ साथ जो व्यवहार है वो सम्मानपूर्वक हम हर मरीज को वहाँ पर लेते हैं।
1: ये बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास या किसी मेडिकल सेंटर पर पहुंचता है तो वो पहले ही बहुत घबराया हुआ होता है। उसकी मानसिक अवस्था ऐसी नहीं होती कि वो बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर सके। तो ये एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है और उसका मनोबल यदि बढ़ा रहेगा तो बीमारियों को लड़ने में भी उसको फायदा करेगा। जी डॉक्टर साहब आगे हम बात करेंगे लेकिन एक और गीत हमारे श्रोता इंतजार कर रहे होंगे कि क्या सुनवाते हैं डॉक्टर साहब।
0: मैं जब स्कूल में था तब मुझे उदित नारायण जी की आवाज बड़ी अच्छी लगती थी। उस पर एक फिल्म आई थी जो जीता हुआ सिकंदर उसका वो गाना जो पहला नशा
1: पहला खुमार। क्या बात है क्या बात है। ये गीत हम बहुत सारे लोगों को पसंद है हमारे श्रोताओं को भी पसंद है। आइए आपकी पसंद अपनी पसंद में शामिल करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: डॉक्टर बिगबर फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम एड्स विषय पर बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश गहरवार से, जो एआरटी सेंटर में नोडल ऑफिसर हैं और साथ ही मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर हैं गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में। डॉक्टर साहब, दवाइयों का जो वितरण होता है, जो विशेष दवाई है आपकी, उसको जब आप वितरित करते हैं अपने रजिस्टर्ड मरीजों को, तो इसमें क्या चीज ध्यान रखी जाती है, कितने दिनों की दवा दी जाती है, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, या इस तरह की कोई समस्या मरीज के साथ होती है कि वो अगले दो महीने के लिए कहीं और जा रहा है, तो क्या पहले से दवाइयां आप उसको स्टॉक में देते हैं?
1: देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि ये दवाइयां निरंतर चलनी है, जीवन भर चलनी है, तो अमूम जो हमारे जो स्टेबल पेशेंट है, जिनको और कोई अवसरवादी संक्रमण नहीं है, उनको ये दवाइयां हम दो माह तक की भी देते हैं एक विजिट पर, और जिनको थोड़ा इन्फेक्शन उनको हम प्रतिमा बुलाते हैं ज्यादातर मरीजों को। रही बात कोविड में, हमने हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की, हम मेरी देखरेख में, कि चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और कई दूर दूरस्थ जगह से मरीज नहीं आ पा रहे थे सेंटर में, तो हमने उनको घर घर दवाई वितरण की सुविधा की
0: अपने।
1: अच्छा। यहाँ से हमने व्हीकल्स में, हमारी जो गाड़ी थी वहाँ हमारा स्टाफ जाता था और उनके घर घर तक हमने दो दो तीन जो स्टेबल मरीज थे, जो कोई और संक्रमण था, उनको हमने तीन तीन महीनों की दवाई एक साथ उनके घर पर भी उपलब्ध कराई। तो हमारे जो स्टाफ है उनने बहुत कड़े मेहनत की, कोई भी मरीज चूक ना हो, कोई भी मरीज एक भी दिन दवाई छूटे ना, इसके लिए हमने पूरे प्रयास किए। हमारे कम्युनिटी केयर वर्कर्स हैं और भी जो एनजीओ जो साथ कर रहे हैं, उनके उनका भी हमने सहयोग लिया और वो घर घर जा जाकर भी हमने दवाइयां वितरित की। लॉकडाउन जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, तो हमने स्टेबल जो मरीज हैं, जो हमारे जो मरीज स्टेबल हैं, उनको हम तीन तीन माह की भी दवाई दे रहे हैं। और इस बीमारी में एक और बहुत अच्छा वो है, क्योंकि ये शासन द्वारा, जो नाको द्वारा एक संस्था है, जो एआरटी सेंटर जो संचालित होता है, हर राज्य की इकाई है, जैसे मध्य प्रदेश की एमपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी एमपी सैक्स, तो और जो हमारा सिस्टम है वो ऑनलाइन, जो एंट्री है वो ऑनलाइन है। सपोज मरीज आज दिल्ली में है, किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, तो वो दिल्ली वाला एआरटी सेंटर हमारे काउंसलर या हमारे स्टाफ से समन्वय बिठाकर उनको तुरंत दवाई देता है। ये पूरे भारतवर्ष में है। इसमें जो संस्थाएं हैं, चिकित्सक हैं, वो इतनी प्रयासरत हैं कि कोई भी मरीज की दवाई एक दिन भी ना चूके, इसका पूरा का पूरा ख्याल किया जाता है। सपोज जैसे कोई मरीज अभी नॉर्मल प्रक्रिया में, जब नहीं आ, जब हर प्रतिमा आना है, तो वो नहीं आ पा रहा है, तो हमारे यहाँ से केंद्र से दूरभाष के माध्यम से उसे तुरंत संपर्क किया जाएगा, भाई आपको आ जाना था दवाई लेने, आप नहीं आ पाए, तो पहला रिमाइंडर जाएगा, दूसरे महीने नहीं जा रहा है, फिर रिमाइंडर जाएगा, तीसरे महीने तो हमारा वर्कर ही उसे घर पहुंच जाएगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होता है तो वैलिड एड्रेस प्रूफ लिया जाता है और उसके पूरे, तो हमारा वर्कर भी उसके घर पहुंच के दे देगा और फिर उसको केंद्र तक लाने की व्यवस्था करेगा कि क्यों नहीं आ पा रहे, क्या बाधाएं आ रही है। तो दवाई की चूकना हो, इसके पूरे के पूरे हमने सिस्टम ऐसा नेटवर्क फैलाया हुआ है कि ज्यादातर मरीज हमारे पूरे प्रति माह या जो स्टेबल है वो प्रति हर दो माह में दवाइयां नियमित लें, और छोटे छोटे जैसे कुछ सेंटर, मेरा जैसे मुख्य एआरटी सेंटर है ग्वालियर का, हर जिलों में हमने लिंक सेंटर भी है, जहाँ एआरटी केंद्र नहीं, वहाँ लिंक सेंटर है, जो स्टेबल मरीजों की दवाई हम यहाँ से उनके निकटतम जिला चिकित्सालय वहां तक भी पहुंचाते हैं लिंक सेंटर तक, तो वहां से लेते रहते हैं नियमित, में कोई दिक्कत होती है वहां का चिकित्सक हमारे पास भेज देता है। तो दवाइयां चूकेना, जांचें चूकेना, इसकी पूरी की पूरी हमारे पास सिस्टम ऐसा डेवलप किया हुआ है कि केंद्र, मैंने कहा हम करीब 5,300 मरीज रजिस्टर कर चुके हैं एआरटी केंद्र ग्वालियर पर अभी तक।
0: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम समाप्त करें उससे पहले एक और गीत आप हमें बता दें।
1: अभी मैं हाल फिलहाल में सोनू निगम जी की बहुत पसंद है हमें, तो उनका एक कोई गीत चल सुना दीजिए।
0: मतलब सारे पुरुष गायक पसंद है आपको, कोई महिला गायक पसंद नहीं है?
1: नहीं,
0: तो सोनू निगम का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: जी जी।

0: कार्यक्रम का समय समाप्त हो इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि ऐसे मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, सोशल एक्सेप्टेंस किस तरह से होनी चाहिए, इसके बारे में आप जनता से, लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं?
1: मैं उनको, जनता को यही कहना चाहूंगा, जैसे बताया था ये भी बीमारी और क्रॉनिक इलनेसेस की तरह है, क्रॉनिक मैनेजेबल इलनेस है, जैसा मैंने बताया। अगर मरीज हमारे केंद्र या मरीज सलाह लेने आता है तो उसे तुरंत दवाइयां रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो जनता से यही अपील है, इन मरीजों को के साथ सहयोग करें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और इस बीमारी को जागरूकता के लिए पूरे के पूरे सहयोग करें, जिससे कोई भी मरीज एक भी हमारा छूटे ना, जो हमारे टारगेट्स हैं वो 100% संभव हो। क्योंकि अब वर्ल्ड का टारगेट है कि बाई 2030 में हमको इस पैंडेमिक को खत्म करना है। वी हैव टू एंड एड्स, ऐसा संकल्प लिया है यूएन एड्स ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो जब तक ये सभी का सहयोग नहीं मिलेगा, सभी का सकारात्मक सहयोग मिलेगा, तब हम इसमें सफल हो पाएंगे। और बाकी संगठन सभी लगे हुए हैं, चिकित्सक सभी लगे हुए हैं, इन सबके साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आगे आने के लिए इनको वो करें, प्रोत्साहित करें।
0: जी।
1: और जो मरीज हैं वो भी तुरंत सलाह लें, चिकित्सीय सलाह लें, क्योंकि एआरटी की दवाइयों का नियमित सेवन करना है। दवाइयां हमेशा अपने साथ रखें, मरीजों के लिए जो सुझाव है, कभी भी किसी भी शराब या इस तरह की चीजों का सेवन न करें, इससे शरीर को नुकसान होता है। कई दवाइयां जो एआरटी की हैं वो दूसरी दवाइयों के साथ ली जाए तो नुकसान भी कर सकती हैं। इस स्थिति में तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, दवाओं के अनुसार भोजन की आदत

0: और समय में बदलाव करना पड़ सकता है, वो जरूरी है। कोई भी दवा लेने से पहले ईआरटी केंद्र के चिकित्सक से जरूर सलाह लें, ये मेरा सुझाव है जनता।
1: एड्स के संग जरूरी है जंग। श्रोता साथियों, इसी विषय पर सेहत की बात तरानों के साथ में हम बात कर रहे थे डॉक्टर राकेश गहरवार जी की। राकेश जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत विस्तार से इस बीमारी के बारे में और इससे लड़ने के लिए शासन और जनता का क्या सहयोग होना चाहिए, इन सब बातों के बारे में विस्तार से आपने हमें बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। एड्स के संग जरूरी है जंग। सेहत की बात तरानों के साथ में इस विषय पर डॉक्टर राकेश गहरवार से बात कर रही थी तुलिका शर्मा। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनते हैं फिल्म रंगोली में।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: फिल्म सारंगा में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश को।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार आज परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों को लेकर सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। प्रदेश सरकार ने कल रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इंदौर संभागायुक्त डॉ सुदाम खाड़े मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव का कार्यभार संभालेंगे। वहीं भास्कर लक्षकार नए इंदौर संभागायुक्त होंगे। भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर कल विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस पर आदेश सुनाया जाएगा। जम्मू श्रीनगर में श्री अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद पुनः आरंभ हो गई है। आज सुबह 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मॉनसून का मजबूत सिस्टम सक्रिय है, जिससे अगले 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और भारत जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।

0: रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि हम रोजाना इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं सुबह 10:30 से 11 बजे के मध्य, और हमारा फोन नंबर है 2660902, एसटीडी कोड है 0755। अब कार्यक्रम का विषय जान लेते हैं। आज का विषय है वो अनोखे व्यंजन जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समुदाय में या आपके मोहल्ले, क्षेत्र, गांव आदि में विशेष रूप से बनते हैं और कहीं और नहीं पाए जाते। सावन का मौसम चल रहा है, बारिश की फुहारें पड़ रही हैं और ऐसे में अच्छा अच्छा खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है, और इसीलिए हमने आज का ये विषय चुना है। नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे।
0: जी, किन से बात हो रही है?
1: मैं बागली जिला देवास से गणेश भाटी बोल रहा हूँ।
0: देवास से गणेश भाटी जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ, पहली बार फोन लगा मेरा।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या हाल चाल है गणेश जी?
1: बढ़िया है।
0: और क्या करते हैं गणेश जी आप?
1: हमारे हम ये मिर्ची मसाले की चक्की चलाते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो कार्यक्रम जो है वो है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हम आपसे कुछ बात करते हैं किसी विषय पर और बढ़िया से मीठे मीठे गीत सुनवाते हैं आपको। तो आज का विषय है वो आपके काम से किसी तरह जुड़ा हुआ ही है। आज का विषय है अनोखे व्यंजन जो आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में बनाई जाती हैं। ऐसा कोई अनोखा व्यंजन है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे?
1: अनोखा व्यंजन तो दाल बाटी, दाल बाफले यही बनते हैं, दाल चावल यही बनते हैं सब हमारे यहाँ। तो
0: दाल चावल और दाल बाफले तो आजकल सब जगह ही मिल जाते हैं। थोड़ा और सोचिए।
1: और क्या सोचे?
0: अच्छा, आपको क्या खाना पसंद है? बारिश का मौसम है,
1: भजिए पकौड़े,
0: भजिए पकौड़े खाने पसंद है बारिश के साथ में।
1: हाँ
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने फोन किया और आप शामिल हुए इसके लिए।

0: नमस्कार कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है
1: जी। नमस्कार
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है
1: जी? मैम जी, मैं आपका नेम में सोता हूँ, कमलेश कहार करकबेल।
0: कमलेश कहार जी,
1: जी
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल से।
0: अच्छा, ये कहाँ पड़ता है?
1: ये जिला नरसिंहपुर, तहसील गोटेगांव, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है मैम जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं आप?
1: कुशल है मैम जी, सुन रहे हैं आपको।
0: क्या करते हैं कमलेश जी?
1: मेरी चाय नाश्ते की दुकान है और एक ग्रुप है रेडियो का, जय नरसिंहदेव एफएम रेडियो ग्रुप।
0: अच्छा, आज जो कार्यक्रम है वो है बात आपकी गीत हमारे, और आज का विषय है अनोखे व्यंजन। आपकी चाय नाश्ते की दुकान भी है तो आपसे बेहतर और कौन बता पाएगा। तो इस विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे ऐसे अनोखे व्यंजनों की जो आपके परिवार में, आपके समुदाय में या फिर आपके क्षेत्र में अनोखा हो, मतलब यूनिक हो, आपके यहाँ ही बनता हो, बाकी कहीं मुश्किल से ही मिलता हो।
1: देखिए मैम जी, सस्पेंस में डाल दिया, इंग्लिश बोल दी मैंने, और अनोखी बात ही कर रहे हैं आप। आज के वर्तमान समय की बात करें तो सचमुच में परिक्षेत्र अलग अलग होता है खाने पीने के हिसाब से सभी का
0: जी।
1: तो मेरे यहाँ तो मैम जी शायद भारत में प्रसिद्ध होंगे गोटेगांव के श्रीधाम के आलू बंडे बोलते हैं जैसे।
0: अच्छा
1: हाँ, तो और स्टेशन पर बिकते मैम जी बहुत ही ज्यादा बिकते हैं, एक बात। और दूसरी बात हो चली मेरे परिक्षेत्र की बात हो चली तो मैम जी सामान्य भोजन या सभी लोग करते हैं, लेकिन अनोखा ऐसा कुछ सियानों से जरूर सुनते आ रहे हैं कि इन दिनों बरसात के तौर में खास तौर से जो सियाने होते थे वो डुबरी, डुबरी करके एक शब्द होता था जिससे जो होते हैं ना महुए, महुए को सुखा करके फिर रख लिया जाता था, फिर इन दिनों उसकी पानी के माध्यम से उबेला जाता था, उसमें शायद गुड़ भी डाला जाता था गुड़ के तहत। जब जब बरसात होती थी, एक दिन दो दिन तीन दिन चार चार दिन जब रिमझिम बरसात होती रहती थी तो लोग उसी को खाते थे, लेकिन वर्तमान में यह स्थिति अब दुर्लभ हो गई मैम जी।
0: अच्छा, ये जो व्यंजन है इसका क्या नाम बताया आपने?
1: डुबरी करके बोलते,
0: डुबरी डुबरी। इसमें महुए को पानी में उबाल करके रख लेते थे और फिर बहुत दिनों तक जब व्यवस्था ना हो तो इसको खा लिया करते थे, है ना?
1: हाँ हाँ,
0: ये तो बड़ा अनोखा
1: है जी। बरसात होती है तो फिर अनोखी अनोखी चीजें तो घर में बनती हैं।
0: हाँ।
1: जैसे कि अब मैं नाम ले दूं गुलगुला।
0: हाँ,
1: रसगुल्ले का दूसरा रूप।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: आटा रहता है, खोवा नहीं रहता है, और चाशनी बढ़िया सामान्य तौर पे जो रहती है वही रहती है। और मैं तो चाहूंगा कि आपके माध्यम से हम लोगों को भी कुछ ऐसी अनोखी स्थिति व्यंजनों की सुनने को मिल जाए तो अच्छा लगेगा मैम जी।
0: हाँ बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया है उसी तरह हमारे अन्य श्रोता भी होंगे जो कि अपने क्षेत्र के, अपने घर परिवार के अनोखे अनोखे व्यंजन लेकर आएंगे।
1: और मैम जी मैं तो ये कहूंगा कि मेरी चाय नाश्ते की दुकान है तो समोसे बनाए जाते हैं और जलेबियां बनाई जाती हैं। जलेबियों को मैं रह रहकर दिन भर खाता रहता हूँ।
0: अरे वाह, आपकी ही दुकान है, आप ही खत्म कर देते हैं क्या?
1: नहीं नहीं, मेरी स्वभाव हो गया है कि खत्म तो नहीं कहते, खत्म तो ग्राहक करते हैं, लेकिन मेरा वेरे कहने का मतलब यही है लगभग लगभग दो चार दस पीस पच्चीस तीस पीस मैं दिन भर एक एक करके खाता रहता हूँ, मुझे जलेबी बहुत प्रिय है।
0: अच्छा, इसीलिए तो नहीं आपने दुकान खोली है कि मतलब जो जो कहते हैं ना कि ऐसी चीज करो जो पसंद हो, तो ऐसा नहीं लगता कि काम कर रहे हैं?
1: जी जी, ये तो मैम जी अलग बात हुई है, लेकिन कह सकते हैं ना कि जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ अर्थ के रूप में होना चाहिए। तो मेरी चाय नाश्ते की दुकान है जिसके माध्यम से मेरा जीवन चलता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है।
0: हाँ जी, बहुत बढ़िया कमलेश जी, आपने कार्यक्रम में फ़ोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी अच्छी अनोखे व्यंजन आपने बताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद मैम जी, आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद हृदयपूर्वक।

0: जी नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
0: जी मैं मालवा रेलवे श्रोता संघ गुलबालोत से बोल रहा हूँ, गुलबालोत तहसील आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से।
1: नाम बताएं अपना।
0: जी विक्रम मालवीय।
1: कैसे हैं विक्रम जी?
0: हम बढ़िया हैं मैडम जी, आप कैसे हो?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है?
0: बस ये बारिश हो रही है।
1: अरे
0: अभी बारिश सही समय पर आ गई, नहीं तो सोयाबीन में नुकसान होता।
1: अच्छा
0: जी हाँ, सोयाबीन बहुत ज्यादा तान लग गई थी पानी की।
1: चलिए अच्छी बात है, समय से बारिश हो गई।
0: जी समय पे संभल गई सोयाबीन, नहीं तो मैम खत्म हो जाती सोयाबीन। अगर 8-10 दिन मतलब 8-1 दिन और निकले तो सोयाबीन समझ लो खत्म हो जाती।
1: अच्छा, कार्यक्रम जो है वो है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हमेशा एक विषय होता है। तो आज का विषय जो है वो है अनोखे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो आपके घर परिवार या क्षेत्र में ही बनते हैं। तो ऐसा कोई व्यंजन है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे?
0: घर पे तो खाना खाना अच्छा बनना चाहिए मैम। दाल बाफले फेमस है हमारे, दाल बाफले लड्डू है
1: मालवा के, दाल बाफले।
0: जी जी
1: आजकल
0: बनाते हैं अधिकांश रसोई में, तो हमारे इधर सामान्य शादी में अधिकांश यही बनता है मैम।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, मालवा के बाफले तो ऐसे प्रसिद्ध हो गए हैं कि आप देश से बाहर भी चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे।
0: हाँ मिल ही जाएंगे।
1: हाँ लेकिन ऐसा कोई व्यंजन बताइए ना जो कि लोग नहीं जानते हो या कम पता हो लोगों को।
0: इतना मैम मुझे नॉलेज नहीं है।
1: अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आप बता दीजिए कि आपका पसंदीदा व्यंजन कौन सा है, या बारिश में आप क्या खाना पसंद करते हैं?
0: बारिश में पकौड़े ज्यादा पसंद
1: खाते हैं। और इसके अलावा और कोई ऐसा व्यंजन जो आपके बचपन से जुड़ा हुआ हो, कि बचपन में आपको खाना बहुत पसंद था और अभी भी पसंद है?
0: हाँ वो बचपन में मम्मी और जो अपने देसी भाषा में बोलते ना राबड़ी बनाते ना, गुड़ डाल के खटिसा में जो खाते हैं छाछ में।
1: मैं जानती हूँ लेकिन अन्य श्रोताओं को भी पता चल सके इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताएं कि क्या होता है उसमें, क्या क्या डलता है।
0: गुड़ गुड़ और छाछ में बनाते हैं राबड़ी।
1: अच्छा
0: मक्की के आटा की बना सकते हैं, गेहूँ के थोड़ा सा थुली टाइप का आटा पीसते हैं उसमें, वो बहुत अच्छी लगती है मैम।
1: अच्छा ये अभी भी खाते हैं आप?
0: हाँ कभी बनाते ना, कभी कभार मम्मी बनाते ना।
1: अरे
0: मेरी माता जी।
1: जी बहुत बहुत अच्छी बात है विक्रम जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी थैंक यू मैम।

0: नमस्कार कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी, किनसे बात हो रही है?
1: जी मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से बोल रहा हूँ मैम, आपका अपना साथी सुरेश कुमार सारथी छत्तीसगढ़ बेमेतरा से।
0: सुरेश कुमार सारथी जी?
1: जी मैम।
0: कैसे हैं आप सुरेश कुमार जी?
1: बहुत बढ़िया है मैम, हमारे तरफ अभी हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ और बरसात की बूंदों की बौछार के आनंद उठा रहे हैं मैम, और खेती बाड़ी की काम अभी जारी है मैम। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने साथी समाज की ओर से 3 पेड़ पौधे लगाए हुए हैं छोटे छोटे मैम।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक काम कर रहे हैं आप।
1: बरगद नीम और पीपल का पेड़ लगा हुआ है, उनका सुरक्षा के लिए कांटे की घेरा करके देखभाल कर रहे हैं मैम, और सुबह शाम पानी इसमें डाल रहे हैं मैम।
0: अरे वाह, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है सुरेश जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप।
1: जी जी मैम, जी मैम। क्या है मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक आदमी को एक पेड़ लगाने ही चाहिए मैम, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए प्रदूषित हवा न मिल पाए, और ये कहा जाए कि अच्छी साफ सुथरा शुद्ध हवा मिले और भीषण गर्मी और जल संकट से निजात पाया जा सके मैम।
0: जी बहुत अच्छे विचार हैं आपके, भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके, अच्छा पर्यावरण हो, इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए कार्यक्रम पर वापस आ जाते हैं। कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और आज का विषय मैंने आपको भी नहीं बताया, आज का विषय है अनोखे व्यंजन। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके घर परिवार में ऐसा कोई व्यंजन है जो विशेष रूप से बनता हो?
1: जी मैम, हमारे घर में क्या है मैम, वही दाल चावल और रोटी यही बनाते हैं मैम, और ज्यादा करके तो तेल फूल और नमक मिर्च वाले मसालेदार युक्त भोजन हम नहीं करते और नहीं बच्चे को खिलाते हैं मैम।
0: अच्छा,
1: इनसे सेहत खराब होती है ना मैम।
0: हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पर छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जो बड़ा अनोखा हो और दूसरे लोग नहीं जानते हो जिसके बारे में?
1: इसके बारे में हमारे तरफ अब छत्तीसगढ़ी में कहा जाए तो ठेठी खुरमी चीला बरा ऐसे व्यंजन जो है जो सामूहिक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में बनता है मैम।
0: जी क्या क्या होते हैं ये व्यंजन, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, क्या क्या डलता है, कैसा स्वाद होता है?
1: इनका स्वाद मैम का लाखड़ी जो होता है ना, उसका उसको पीस करके बनाया जाता है मैम।
0: अच्छा,
1: और चने की दाल है उनको पीस कर इसको बनाया जाता है, और कहा जाए तो नया जो धान होता है, नया फसल जो धान का होता है उसको मशीन से कुटवा कर उसको साफ करवा के उसको आटे के रूप में देकर उसको बनाया जाता है मैम।
0: अच्छा, मीठा होता है ये? मीठा
1: नहीं नहीं इसमें नमक होता है मैम, और जो बताया हूँ वो मीठा रहता है।
0: अच्छा अच्छा, आपने दो अलग अलग व्यंजनों की बात की, नाम एक बार फिर से बताएं।
1: ठेठरी खुरमी चीला और बड़ा मैम।
0: अच्छा, ठेठरी खुरमी चीला और बड़ा।
1: बड़ा
0: बढ़िया बढ़िया।
1: और फरा, 5 व्यंजन होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में।
0: ये फरा क्या होता है?
1: चावल को जो पिसवाते हैं ना उसको हाथ से छोटे छोटे लंबा कार के गोलदार बनाया जाता है।
0: अच्छा,
1: एक अंगूठा के माफिक और उसको ना भाप में उबाला जाता है मैम।
0: अच्छा, और फिर उबाल करके उसको खाएंगे?
1: बिल्कुल, उसको चटनी के साथ उसको खाया जाता है मैम।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, मतलब ये तो बड़े अनोखे व्यंजन मैंने सुने हैं छत्तीसगढ़ के, पहली बार ही मैं सुन रही
1: हूँ। फेमस है मैम छत्तीसगढ़ का।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी पूरी यूनिट को सारथी परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कोटि कोटि बधाई मैम।
0: जी आपको भी धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: छोटू मीना बोल रहा है, तो
0: छोटू
1: होशंगाबाद जिला से।
0: तो छोटू जी, आज का जो विषय है वो है अनोखे व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो आपके घर, परिवार, समुदाय, क्षेत्र में खास तौर से बनते हैं और बाहर उतनी आसानी से नहीं मिलते या लोगों को पता नहीं है जिसके बारे में, तो आप बताइए।
1: कहीं कहीं की ऐसी चीज होती वो भाई मुश्किल से मिलती है, पर आप होती है नहीं मिलती, ढूंढे ढूंढे से नहीं मिलती।
0: हाँ, तो ऐसा कुछ बताइए आपके क्षेत्र में मिलता
1: हो। और मैडम जी, वो यहाँ के तो पान बहुत प्रसिद्ध है, जो आपको के पान है ना, बाहर तक जाते हैं खाने के लिए।
0: अच्छा।
1: बहुत अच्छे बिकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लगते हैं मैम जी।
0: अच्छा,
1: यहाँ के पान। और वो बागरा की कचौड़ी, वहाँ की कचौड़ी प्रसिद्ध है मैम।
0: अच्छा। क्या खास होता है वहाँ की कचौड़ी में?
1: यहाँ खास ऐसा होता है, वो अपनी बाटी बनती ना बड़ी वाली।
0: हाँ हाँ,
1: उतनी बड़ी बनती है वो।
0: अच्छा।
1: कहीं नहीं बनती वो ऐसी कचौड़ी।
0: अच्छा, अरे वाह।
1: जी जी हमने सबू खा के देख ली, होशंगाबाद जिला में भी खा ली है।
0: हाँ।
1: और सुहागपुर में और इटारसी में कहीं नहीं मिलती वो ऐसी कचौड़ी मैम
0: अच्छा।
1: जी। और जो पानी पीने की जो सगाई है ना, तो वो भी प्रसिद्ध है यहाँ। दो चीज प्रसिद्ध है।

0: जी नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: मैं सागर जिले ग्राम पिथौरिया से शाहिद खान बोल रहा हूँ।
0: शाहिद खान जी?
1: जी हाँ।
0: कैसे हैं शाहिद जी?
1: जी ठीक हूँ। मैं ग्राम पिथौरिया नगर परिषद बारली से बोल रहा हूँ। मेरा नाम शाहिद खान है, मुझे गाना सुनना है।
0: माफ कीजिएगा शाहिद जी, आज का जो कार्यक्रम है वो है बात आपकी गीत हमारे, गीत हमारे पसंद के होंगे, बातचीत हम आपसे करेंगे। हाँ जी
1: जी मैम, जी मैम, जी मैम। हाँ मैं ग्राम पिथौरिया से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ अच्छा बड़ा किला है।
0: हाँ।
1: पानी अभी हो रही है, पानी अभी गिर नहीं रहा है।
0: अच्छा पानी नहीं गिरा?
1: नहीं मैम, कम गिरा था, वो बोनी तो हो गई है ना, वो
0: हाँ।
1: उसमें पानी की जरूरत है, अभी कम गिरा है पानी।
0: समझ रहे हैं। अच्छा शाहिद जी, आज का जो कार्यक्रम है उसका विषय है अनोखे व्यंजन, ऐसे खाने के व्यंजन जो आपके क्षेत्र में या आपके घर परिवार में ही बनते हैं और बाहर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और लोग कम जानते हैं जिसके बारे में, तो ऐसा कुछ है आपके घर परिवार में? हाँ जी
1: जी हम करेला,
0: करेला
1: जी करेला जो है ना मैम, वो अपने स्वास्थ्य के लिए सही होता है।
0: हाँ
1: जी उसमें का है, जो बीमारियां थोड़ी बहुत हो तो उसमें बहुत मेंटेनेंस में आ जाती है। करेला हम लोगों को हफ्ते में एक बार जरूर खाना चाहिए।

0: अच्छा, करेले को कुछ अलग तरह से बनाते हैं आप?
1: जी हाँ, वो कहते थे कल भी बनाते हैं, जो उसको कड़वापन ज्यादा होता है ना वो कम हो जाता है।
0: अच्छा, लेकिन करेला तो सब जगह बनता है। मैंने आपसे
1: नहीं,
0: पूछा कि ऐसा कुछ जो बस आपके घर परिवार में, आपके क्षेत्र में ही बनता हो, या आपके क्षेत्र का खास हो, कि वहाँ का विशेष है बड़ा।
1: अभी तो ऐसे कुछ नहीं है।
0: अच्छा,
1: वो हमारे यहाँ के सागर में जो है ना वो आलू वड़े बनते हैं अच्छे। जी
0: प्रसिद्ध
1: जी
0: है वो।
1: जी सागर
0: अच्छा,
1: के। हाँ
0: सागर में। अच्छा, ऐसा कुछ है और जो आपको बड़ा पसंद हो खाने को?
1: मेरे लिए तो समोसा पसंद है।
0: अच्छा, समोसा पसंद है, बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: और ऐसा कोई और व्यंजन जो मतलब आपको बचपन की याद आ जाती हो जिसको खाते ही?
1: बचपन की मैं बहुत ही ना वो पड़ोरा सब्जी बनती है उसकी, जो देहात में होता है। जैसे
0: हाँ, पर क्या होता है, मतलब कोई भाजी होती है?
1: नहीं भाजी नहीं, जैसे करेला होता है ना उसी की एक प्रजाति का एक पड़ोरा होता है।
0: अच्छा।
1: जी हाँ, वो विलुप्त, अब तो वो विलुप्त हो गया, बहुत कम मिलते हैं। ये देहात वगैरह में होते हैं, खेतों वगैरह में वो लगी रहती हैं बारगा, उस पर होते हैं वो। बहुत पुरानी है, बहुत स्वाद स्वाद वाली बनती है।
0: अच्छा, सब्जी होती है ये।
1: जी, जैसे
0: और
1: करेले होते हैं ना, करेले होते हैं थोड़े दाएं दाएं वैसे कांटे वाले,
0: हाँ,
1: बहुत अच्छा होता है, छोटे होते हैं वो।
0: अच्छा अच्छा
1: सही
0: अच्छा तो किस तरह से बनाते हैं उसको, जैसे सब्जी आमतौर पे बनाते हैं वैसी बनाते हैं?
1: मसाले में जैसे करेले बनते हैं ना वैसे ही बनते हैं, लेकिन इसका स्वाद जो है ना बहुत अच्छा, स्वाद स्वाद बहुत अच्छा लगता
0: अरे वाह, अब आपने बताया ना कुछ बढ़िया सा शाहिद जी।
1: है।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने कार्यक्रम में फोन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हाँ
0: जी, किनसे बात हो रही है?
1: अशोक कुमार शर्मा, शिवपुरी से।
0: कार्यक्रम का आज का विषय है अनोखे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो आपके घर परिवार में या आपके क्षेत्र में ही बनते हैं या आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं।
1: तो हमारे यहाँ तो ज्यादातर कद्दू होता है, कद्दू की सब्जी ज्यादा बनती।
0: कुछ खास तरह से बनती है कद्दू की सब्जी?
1: नहीं, ये जैसे नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनती है।
0: अच्छा, आपके यहाँ पैदावार ज्यादा होती होगी?
1: हाँ, इधर हाँ, बस ये पैदावार ज्यादा होती है कद्दू की, बहुत ज्यादा।
0: अच्छा।
1: कद्दू और टमाटर दो चीजें होती हैं।
0: पर उससे बनने वाला कोई व्यंजन बताइए ना, कुछ खास व्यंजन जो आपके घर परिवार में बनता हो या आपको पसंद हो।
1: कद्दू की सूखी सब्जी बनती है।
0: हम्म,
1: कद्दू की सूखी सब्जी बनती है और टमाटर अलग, वैसे यहाँ टमाटर भी बहुत होते हैं।
0: अच्छा,
1: शिवपुरी में?
0: हाँ जी,
1: वो तो यहाँ कोई विशेष वो नहीं है। वैसे यहाँ पर दाल टिक्का बनते हैं
0: दाल बाटी, दाल बाफले, दाल टिक्कड़ आप कह रहे हैं? ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: अच्छा, थैंक यू,
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने वाले मसौदा विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार आज परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों को लेकर सीजीपी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। राज्य सरकार ने कल रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुखबीर सिंह को वर्तमान दायित्वों के साथ लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। साथ ही उन्हें खाद्य सुरक्षा आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और भूस्खलन के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। अधिकारी सुरक्षित और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए यात्रा मार्ग की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मॉनसून का मजबूत सिस्टम सक्रिय है, जिससे अगले 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे से होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया और नांदेड़ से प्रभाकर जूनले, आरती जूनले और ये साथी हैं सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है हम आपके दिल में रहते हैं इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू की, गीतकार है समीर और संगीत है अनु मलिक का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया और अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, मुस्तबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, औरंगाबाद से राजेश सामले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है क्रिमिनल फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है कुमार सानू की, गीतकार हैं इंदीवर और संगीत है MM करीम का।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है बेरडी से हुकुम करमकर सुनीता करमकर हार्दिक प्राची करमकर तनु करमकर और सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा संगीता भावना प्राची नेमा खुरई से राम सखी परमानंद सौरभ गौरव किशोरी बोस एलपी रोहित ललूराम पूरन रोहित छोटू इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है हम तुम्हारे हैं सनम इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज़ है अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की गीतकार हैं समीर संगीत है निखिल विनय का

0: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

0: हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 10वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 10वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महालय छोड़ देते हैं, पैठार गांव

के भोले भाले ग्रामीण उन्हें पुण्य पुरुष मान लेते हैं और अच्छी फसल होगी इसलिए उनसे खेतों में बीज छिटकवाते हैं। ग्रामीण युवती शची से उनका मिलन हो जाता है। अब

0: ग्राम पैठार से राजा भर्तृहरि विदा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मार्ग में उन्हें एक भूत प्रेत का इंद्रजाल वाला गांव मिलता है। उससे बचकर भर्तृहरि आगे बढ़ते हैं। उन्हें चंद्रपुर जाना है। बादल खिर रहे हैं, वो सुरक्षित स्थान खोज रहे होते हैं। तभी एक कृषक उनसे कहता है,
1: जय महादेव पथिक, कहाँ से आगमन हो रहा है?
2: चला तो पैठार गांव से था, रात्रि विश्राम प्रेतपुरी के निकट एक ग्राम में हुआ। गंतव्य है चंद्रपुर। आगे का गांव कितनी दूर होगा?
1: चंद्रपुर गांव पर 2 कोस दूरी पर है। एक पांतशाला भी वहां है, जहां यदा कदा पथिक साथ ठहर जाते हैं। आप हमारे ग्राम में रुक ले, जब तक कोई स्थान न मिल जाए।
2: चंद्रपुर पहुंचना है, फिर वर्षा काल है। यदि पानी बरसने लगा तो जाना संभव नहीं होगा। कब तक रुकना पड़े? इसलिए जब तक वर्षा नहीं होती चलते रहना ही उचित है।
0: भर्तृहरि जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। भालुओं के गुर्राने की आवाजें आती हैं, वन पशुओं की भी आवाजें आती हैं। बादल गरजने लगते हैं और मेघ बरसने लगते हैं। पांतशाला के भीतर से एक व्यक्ति का भर्तृहरि को संबोधित करता हुआ स्वर उभरता है।
3: आइए, स्वागत है। आप बाहर भीग जाएंगे, पांतशाला में आप पहुंचे हैं। सही समय पर आए हैं आप। तनिक भी विलंब होता तो बुरी तरह भीग जाते। मैं 2 घड़ी पहले ही यहाँ पहुंचा हूँ। मुझसे पहले ये महाशय यहाँ थे? वेशभूषा से वे खनस प्रतीत होते हैं। पहले से ही इसी मुद्रा में अविचल ध्यान मग्न बैठे।
4: कौन जानता है कि महादेव महाकारिणी किस काल के लिए क्या निर्धारित कर रखा है? सत्य का साक्षात्कार तो मैं भी नहीं कर पाया। क्या पता सत्य किसी बड़े महासत्य का अंश हो, और वो महासत्य उससे भी आगे परम सत्य का। कौन जानता है, हम सत्य को खोजते रहते हैं। ये वर्षा तेज हो रही है।
3: अब तो पांतशाला की छतें भी टपकने लगी। शीघ्र ही यहाँ पानी में भूमि गीली हो जाएगी, सोना भी कठिन होगा, भोजन व्यवस्था की संभावना भी नहीं रही। ऐसे में कौन यहाँ आएगा ये देखने कि पांतशाला के पथिक भूखे हैं? मैं समझता हूँ भयानक अंधेरा, दारुण अतिवृष्टि और भूख, यही काल रात्रि है।
4: हंसो, और जोर से हंसो, हंसो। जो भूखा रहकर हंस सकता है वो भूख को भी जीत सकता है। अकालों में किसान इसी तरह मौत और भूख को हरा देते हैं।
0: तभी पांतवास के बाहर कुछ सैनिक घोड़ों पर सवार आते हैं। वो देखते हैं कि अंधेरा है और भोजन नहीं है, तो वो प्रकाश और भोजन की व्यवस्था करते हैं। फिर राजा भर्तृहरि से पूछते हैं कि वो कहां से आए हैं।
2: मैं पैठार ग्राम से आया हूं।
0: सैनिक अन्य पथिकों से इन महानुभावों की सेवा का ध्यान रखने को और आहार में कुछ बच जाने पर शेष को ले लेने को कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि तुम कृषक हो, भूख सह सकते हो, किंतु ये विप्र उसे सहन नहीं कर पाएंगे। ये कहकर सैनिक चले जाते हैं।
4: तुम लोग भोजन करके विश्राम कर लो, हम मेघ साधना करेंगे।
2: पर महाराज,

0: थोड़ा बहुत आहार तो ले लें।
1: क्षत्रिय हो ना
0: देव, कैसे अनुमान लगाया?
1: इसीलिए, क्योंकि ये ब्राह्मण चुप रहा, इसी भूख ने घेर रखा है। अब मैं चलता हूं।
2: निकट लगता है योगा, आओ कुछ खा ले। जोगी तो खाएगा नहीं, जाने कहां चला गया है। घनघोर वर्षा की भी चिंता नहीं।
3: वर्षा रुक जाती है, प्रातः काल का सूर्य उगने लगता है। मुर्गे की बाग, पक्षियों का कलरव, श्वान पशुओं के रम्हाने, मनुष्य के खांसने, बतियाने के स्वर उभरने लगते हैं। अचानक योगी की श्रृंगी कूकने लगती है।
4: राम महाराज, स्वागत है आपका।
1: तुम किस दिशा में निकलोगे?
0: चंद्रपुर जाना है महाराज।
1: चंद्रपुर? बहुत दुर्गम है मार्ग, अनेक नदी नाले हैं, वन व्याघ्र और तस्कर मिलेंगे, कहीं कहीं सैनिक गुप्तचर भी मार्ग रोकेंगे। गुरु का आदेश हुआ है कि ये दुर्गम मार्ग मैं तुम्हें पार कराऊंगा।
0: गुरु? कौन गुरु? आप मुझे जानते हैं वैखानस महाराज?
1: नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे गुरु जानते। उठाओ ये अपना झोली डंडा और निकल पड़ो हमारे साथ। मुझे लोग जोगी कहते हैं। ओगड़ जोगी ओगड़। और हाँ, मुझे बेखा नस्बत कहो, सिर्फ जोगी कहो, जोगी।
3: इतना कहकर जोगी चिंघाड़ उठता है। अलख अलख गोरख गोरख, शंगी फूंकता है, तभी मेघ बरसने लगते हैं।
0: क्या हमें वर्षा रुकने तक की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए?
1: मत सोच, सोच मत, कुछ भी मत सोच। जो तेरे वश में नहीं है उसे मत सोच। जहां पहुंचना है उसी दिशा में चल दे।
0: चलिए महाराज।

0: मध्यान काल हो गया और राजा भर्तृहरि तुम दो कोस भी पूरे नहीं कर पाए।
1: महाराज, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं?
0: हाँ, तो इस पर गुरु महाराज की कृपा। मेरे गुरु भाई ने बताया है कि ये विद्वान है और किसी आवेश में ग्रह त्याग कर आया है।
1: गुरु भाई, कौन है आपके गुरु भाई? आपको ये सब कब बताया उन्होंने?
0: रात में जब तू पांतशाला में आया था, तू उन्हें जानता है? प्रेतपुर की प्रेतनी से उन्होंने तेरी रक्षा की थी गुरु महाराज के आदेश से। तू गुरु महाराज की धरोहर मूल्यवान वस्तु है।
1: और आपके गुरु कौन है, क्या मैं ये जान सकता हूँ?
0: बताऊंगा, वो भी बतलाऊंगा। अभी तो कई दिन हमें साथ रहना है भर्तृहरि, अभी तो चला चल, गति तनिक बढ़ा दे।
1: अवश्य महाराज, पाँव का छाला बहुत पीड़ाजनक है।
0: मेरे पाँव में तो कोई छाला नहीं।
1: आपको नंगे पाँव चलने का अभ्यास है महाराज।
0: तुझे भी हो जाएगा।

0: अब तो सूर्यास्त होने को आ गया राजा भर। भूख लगी होगी?
1: मैंने भी कुछ दिन ऐसे के संग बिताए हैं जिन्हें भूखे रहने का अभ्यास है।
0: फिर हम आज की रात निराहार ही बिताएंगे।
1: आपकी ये दूसरी निराहार रात्रि होगी।
0: जानते हो राजा भर्तरी, अन्न का भी एक मद होता है, मद। गुरु ने बताया है संसार में मद ही मद, धन का मद, शक्ति का मद, रूप का मद, यौवन का मद। साधक को इन सब से विमुख होना पड़ता है और युक्त तो तभी हुआ जा सकता है जब इन्हें जान लिया जाए, उनका अनुभव हो तुम्हारे पास। क्यों, बात समझ में आई?
1: हाँ, कुछ कुछ समझ रहा हूँ जो।
0: आज की रात हम इस वृक्ष को अपना आश्रय बनाएं। अंधेरा हो रहा है, लगता है आसपास कहीं हिंसक पशु बैठे हैं। चलो चलो राजन, पेड़ पर बैठकर सुरक्षित हो ले।
1: हिंसक पशु तो मार्ग में भी अनेक मिले थे, किसी ने आक्रमण नहीं किया, हानि नहीं पहुंचाई। तो अब कैसा भय महाराज?
0: अरे वो तो मेरे गुरु भाई की कृपा थी, उन्हें वन्य जीवों को वश में करने की सिद्धि प्राप्त है। अब पेड़ पर चढ़ जा, गुरु कृपा से ये रात भर हमारी रक्षा करेगा। मैं तो चढ़ गया, मुझे अभ्यास है। तू ये सहारा ले ले, ले।
1: कुछ दिन पहले इसी तरह मैं वृकवन में जा पहुंचा था, तब इसी भांति बबूल के एक वृक्ष पर चढ़कर प्राण बचे थे। तब बबूल ने रक्षा की थी, आज ये पलाश। कितना असुरक्षित है मनुष्य।
0: न तो जन्म परवश है और न मृत्यु पर। गुरु कृपा से ही सब जन्म और मृत्यु को वश में किया जा सकता है। तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है राजा भर्तरी?
1: नहीं, पर आपने बताया नहीं कि गुरु कहाँ है, कौन है। आपने वचन दिया था कि बताएंगे, मैं जानना चाहता हूँ।
0: जानना ही चाहिए, जरूर जानना चाहिए। बोल, संक्षिप्त में कहूँ या विस्तार से?
1: यदि विस्तार ही अभिप्रेत है तो प्रारंभ अभी कर दें और क्रमशः कहते चले।
0: तेरा राजत्व अभी शेष नहीं हुआ, पा लेने की जल्दी है, किंतु मुझे क्या? अरे गुरु जाने ये सब। अला, अला, गोरा।
2: जोगी की शंगी के स्वर में वन्य जीवों की दहाड़ मिल जाती है।
0: सुन राजा भर्तरी, एक बार महायोगी मच्छिंद्रनाथ पर्यटन करते हुए बंग देश की नगरी चंद्रगिरी पहुंचे। वहां एक धर्मपरायण पंडित रहता था। उसकी सुंदर सुशील पत्नी सरस्वती देवी थी, किंतु निसंतान होने के कारण ये दंपति दुखी रहता था। भिक्षाटन के साथ समय योगीराज की भेंट इनसे हुई। परम गुरु मच्छिंद्रनाथ जान गए कि ये नारी अत्यधिक दुखी है। उन्होंने पूछा,
3: माता तुम्हारे दुख का क्या कारण है?
4: महाराज, यो तो मैं सभी भांति संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ, किंतु निसंतान होने का दुख है। यदि आप अनुकंपा करें तो मेरा ये दुख दूर हो सकता है।
0: महायोगी ने अपनी झोली से भस्म निकाली और माता के हाथ पर रख दी और कहा,
3: इस भस्म को ऋतु स्नान के पश्चात खीर में मिलाकर खा लेना। तेरे यहाँ नारायण के अंश से उत्पन्न तेजस्वी पुत्र

0: महागुरु प्रसाद देकर विदा हुए। सहेलियों ने संदेह उत्पन्न किया, कहा भूल कर भी मत खाना भस्म को। अरे क्या पता कौन सा तंत्र मंत्र हो, जोगी था या बहरूपिया। अरे यदि भस्म से ही संतान जन्म लेने लगे तो संसार में कोई भी बांझ ना रहे। सुन रहे हो राजा भर्तरी, गुरु के अवतार की कथा। सोया है तो जाग जा, और जागता है तो फिर हुंका भर।
1: हाँ महाराज, जाग रहा हूँ।
0: बड़े गुरु ने भी हुंकारा भरते हुए सुनी थी अमर कथा, काल के महाकाल महादेव के मुख से। गुरु की कृपा से कोई कोई सुन पाता है, यार कोई अमर नहीं होता। ये संसार आने जाने का स्थान है, कोई अमर नहीं होता, हो नहीं सकता। अलख अलख गोरख। तो राजन सुन, जितने मुंह उतनी बातें इस भस्म को लेकर। संदेह ने सबके विश्वास को गड़बड़ा दिया, ये संदेह बड़ा छली है। आत्मियों का संशय छल इतिहास रच देता है। तूने भी संशय के वशीभूत होकर गृह त्याग दिया है। तू गुरु के अवतार की कथा सुन, सुन रहा है ना?
1: हाँ हाँ देव, कहते रहिए।
0: संशय ग्रस्त माता ने बहकावे में आकर महागुरु की दी हुई भस्म को घूरे पर फेंक दिया और भूल गई, बांझ की बांझ बनी रही। उधर भूरे पर फेंका हुआ बीज भीतर ही भीतर अंकुरित होता रहा, और इस तरह 12 वर्ष व्यतीत हो गए। और 12 वर्ष पश्चात अपने वचन के अनुसार महायोगी मच्छिंद्रनाथ फिर द्वार पर थे, और उन्होंने पूछा,
2: माता तेरा पुत्र तो अब बड़ा हो गया होगा, दिखाओगी नहीं मुझे? क्या भस्म निष्फल हुई, संतान हुई नहीं, अथवा होकर भी नहीं रही?
3: महाराज, संशयवश अविश्वास के कारण मैंने भस्म का उपयोग ही नहीं किया। मैंने उसे घूरे पर फेंक दिया था।
2: ओ माता, मुझे वहां ले चल। हे हरिनारायण सुपुत्र, आपकी उत्पत्ति हो गई हो तो कूड़े से बाहर आइए।
4: राजा राजा, आवाज लगा, बोल अलख अलख गोरख गोरख, बोल अलख अलख
2: अलख अलख गोरख गोरख अलख अलख।
0: कूड़े के ढेर से आवाज आई, मैं कूड़े के ढेर से दबा हूं। महायोगी मुझे निकालो, अलख अलख गोरख गोरख
2: अलख अलख।
0: समझ रहा है ना भर्तरी, सत्य घूरे में दबा रहता है तब तक जब तक कोई विरल आत्मा महान आत्मा उसे खोजकर बाहर ना निकाले। यहां यही हो रहा था, घूरे के भीतर से आवाज आई। आवाज को सुनकर सबके सब गोबर कूड़ा हटाने में जुट गए। जब मलिनता स्वच्छ हुई तो वहां एक अत्यंत तेजस्वी रूपवान बालक निकला। महायोगी ने गाय के गोबर से उसकी उत्पत्ति का कारण उसका नामकरण किया गोरखनाथ।
2: गोरखनाथ, चलो मेरे साथ।
3: प्रभु प्रभु, कहाँ ले जा रहे हैं इसे?

0: पुत्र के बिना सद्गति नहीं होती।
1: माता, मैं क्या करूं? वो जो ऊपर बैठा है, सबके ऊपर बैठा है, वही संसार के खिलौनों को रचता है। जिस निर्विकार भाव से वो उसे रचता है, उसी निर्ममता से उसे तोड़ भी देता है। मैं भी एक खिलौना हूं और तू भी। विधाता ने तेरे भाग में पुत्र का सुख नहीं लिखा माता, पर तू मान ले कि तू ही गोरखनाथ की माता है।
2: आवेश में आकर जोगी शंगी को लगातार बजाता है।
3: बाबा मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ को संग लेकर निकल गए। राजा भर्तरी, गुरु के जन्म की कथा पूरी हुई।
4: किंतु कथा तो अभी शेष है महाराज। कथा तब पूरी मानी जाती है जब श्रोता के संदेहों का समाधान हो जाए। और
3: राजा, तू सुशिक्षित है, विद्वान है, राजा को होना भी चाहिए। मैं ठहरा अनपढ़ मूढ़, उतना ही जानता हूं और समझा है। मैं तेरे जैसा ज्ञानी नहीं हूं, पर गुरु कृपा से मैं इतना जान गया हूं कि किसी भी ज्ञानी के ज्ञान की सीमा एक जगह जाकर ठहर जाती है। इसके बाद वो आत्मतुष्टि के अभिमान के साथ जीने लगता है।
4: किंतु प्रश्न भी शेष है महाराज।
3: किंतु परंतु कुछ नहीं, तुझे

उसी मुद्रा में सोता रहा। वर्षा थमी, तारे फिर झांकने लगे, कहीं सिंह गरजा, कहीं सियार रोए, श्वानों ने ध्वनि की, पवन सनसनाया, बिलाव लड़े, औंघड़ सोता रहा, भरथरी जाग रहे थे। और फिर रात भर की नहाई हुई उषा ने पूरब में अपने रक्ताभ कीले वस्त्र सूखने के लिए लटका दिए।

0: अलक अलक अलक गोरख गोरख पर तरी तू सो नहीं पाया रात भर। ये ले शिंगी और अलसाए वृक्षों बैलों घास दुर्वा उड़ने चलने सरकने वाले सभी जीवों को चेतन कर दे। फूंक मार इस सिंगी को और बोल अलग गोरख गोरख। जगत को जगाना है और संसार के नियम भय से मुक्त नहीं हो पाया, फिर भी बजा फूंक मार दे सिंगी में, बंधन तभी छूटेंगे, बजा।
1: जंगल जाग उठा जैसे श्रृंगी का स्वर एक आह्वान हो, जागरण का अभियान। नीरों में पांखी पहले तो कुनमुनाए, फिर आंखें खोली और चहकने लगे, सिंदूरी सूर्योदय का स्वागत करने।
0: चलो आगे, चंद्रपुर अभी शेष है, अभी दूर है राजा।
1: आगे एक वन नदी पड़ी, यौवन में उफन कर बहती हुई वर्षा के जल से पुलावित ऐसी नदी बहुत तीव्र होती है। वो अभी प्रहर भर ही चले होंगे। भरथरी को चलने में उतना कष्ट न था, किंतु जब तलवों के नीचे कोई नोकीली वस्तु आ जाती तो व्रणों की पुरानी पीर उभर आती। पंख और फिसलन तो थी ही, जीवन में कुछ ना कुछ प्रतिकूल होता ही है, सर्वदा सब कुछ अनुकूल नहीं होता। नदी ने भरथरी और औंघड़ का मार्ग रोक दिया था।
2: अब क्या जोगी?
0: केवल केवल प्रतीक्षा। यदि पानी नहीं बरसा तो नदी पहर भर में पार जाने योग्य हो जाएगी।
2: तब तक क्या करेंगे?
0: कहा ना, प्रतीक्षा, केवल प्रतीक्षा। कभी कभी मनुष्य के हाथ में केवल प्रतीक्षा रह जाती है। ये जीवन का क्षयक है राजा भर्तरी।
3: गोरख गोरख अलग अलग

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 10वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार शीलू अस्थाना, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, सरस्वती कीर्ति कुलश्रेष्ठ, मच्छेंद्र नाथ अब्दुल रजाक सिद्दीकी।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से में कामिनी काय कांतारे धारावाहिक की 10वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।

0: जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और भूस्खलन के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रहे श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। अधिकारी सुरक्षित और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए मौसम और यात्रा मार्ग की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून का मजबूत सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिससे अगले 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए आप सुनते हैं महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान है।

तेरी हर बात को हर बात पर रखा मैंने, एक तू है कि मुझसे बात नहीं करता। हर सांस पे तेरी इबादत की मैंने, एक तेरी तस्वीर को दिल में बसा कर रखा। कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली

पहल करके हमें सहयोग प्राप्त करना चाहिए। सुरक्षा एवं घरेलू हिंसा या किसी भी उत्पीड़न के समय महिला हेल्पलाइन 181 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 नंबर त्वरित कार्यवाही में हमारी मदद करते हैं। सरकारी योजनाओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 अथवा 181 जैसी सेवाओं के माध्यम से आप अपनी समस्याओं की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और इन्हें ट्रेस भी कर सकते हैं। 24x7 यानी 24 घंटे हर दिन ये नंबर कभी भी दिन रात काम करते हैं। इनमें आप किसी भी समय मुसीबत में कॉल कर सकते हैं। बहनों आप जान लें 011-411-9866 पर मानसिक तनाव जैसी समस्याओं पर विशेष डॉक्टरों या काउंसलर से मुफ्त सलाह भी मिल सकती है। मतलब बहनों ऐसे कुछ नंबर जो हमेशा हमें याद रखना है और इसका उपयोग कहाँ करना है इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे 112 पुलिस, 101 आग, 102 एम्बुलेंस, 139 रेल पूछताछ, 1090 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1076 सीएम हेल्पलाइन, 1072 रेल दुर्घटना।

कई योजनाएं तैयार करती हैं और इसे जमीनी स्तर पर चलाने का प्रयास भी करती हैं। इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर महिलाओं में हर क्षेत्र में जागरूकता लाना और उनके कार्य में गुणवत्ता को लाना प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 79वे स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में शाइन योजना शुरू की। यह BIS की पहल है जिसमें महिलाओं को गुणवत्ता और मानकों के क्षेत्र में जागरूक और सशक्त बनाया जाता है। मानकों के तहत NGOs और स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, गुणवत्ता और आजीविका मजबूत होती है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के कल्याण, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के लिए कई योजनाएं चला रही है। राज्य की सबसे प्रमुख योजनाओं में महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद और सुरक्षित भविष्य देने पर जोर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए चल रही प्रमुख योजनाएं जैसे लाडली बहना योजना, उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाना। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह योजना बहुत लोकप्रिय है। इस योजना में बालिका के जन्म पंजीयन से लेकर उसकी पढ़ाई और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर एक मुफ्त राशि उच्च शिक्षा हेतु दी जाती है। अब मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, यह योजना मुख्य रूप से पीड़ित और कठिन परिस्थितियों वाली महिलाओं के लिए है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थायी कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं माताओं को पोषण के लिए मदद करती है। उज्ज्वला योजना, घरेलू गैस ईंधन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह के लिए प्रोत्साहन हेतु ग्रामीण महिलाओं का छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। बहनों, चर्चा के साथ साथ गीत संगीत का आनंद भी जरूरी है, तो लीजिए सुनिए दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गीत।

0: दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन पानी में डूबने से होने वाली मौतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को सुरक्षित रखने के तरीके सिखाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस विषय में क्या कहना चाहती हैं?
1: जी नमस्कार रचना जी, आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है और निश्चित तौर पे न सिर्फ युवाओं को बल्कि हम सभी को जागरूक होना चाहिए इसके प्रति, ताकि असमय किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। रही पानी में डूबने से बचाव के कारण, तो जब भी हम कहीं घूमने निकले, क्योंकि मौसम सुहाना है, बारिश का मौसम है, लोग घूमने जरूर निकलते हैं, ऐसे में सबसे पहले हमें खुद को देखना है कि क्या हमें तैरना आता है, और अगर तैरना नहीं आता है और यदि आप घूमने जा रहे हैं तो ऐसे पानी के स्रोतों के पास बिल्कुल ना जाएं जो काफी गहरे हैं और आप उनसे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। दूसरी बात कि यदि आपको पानी में तैरना आता भी है, बावजूद इसके आप अगर घूमने जा रहे हैं तो पानी के किसी भी स्रोत की इतनी पास ना खड़े हों कि मिट्टी गीली होने की वजह से धस जाए और आप पानी में चले जाएं, या फिर वहाँ काई लगी हो फिसल के आप चले जाएं, या फिर आजकल सेल्फी वगैरह का बड़ा ट्रेंड है तो आप इन ट्रेंडिंग चीज़ों में अपने आप को बिल्कुल इतना डुबो दें कि आपको ये ख्याल ना रहे और आप अनहोनी का शिकार हो जाएं। तो ये तो रही अपने आप को सचेत करने की बात। कई बारी हम घूमने पूरी फैमिली के साथ भी जाते हैं और नौका विहार करते हैं, ऐसे में भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जैसे हम किसी स्टीमर में जा रहे हैं, नाव में घूमने जा रहे हैं, तो इस दौरान हम ध्यान रखें कि मौसम कैसा है। सबसे पहले तो मौसम को ध्यान दें और उसके बाद हम उस नौका को देखें कि वो पर्याप्त रूप से तैयार है नौका विहार के लिए, उसमें लाइफ सेफ्टी के सारे इंतजाम हैं या नहीं है, और आसपास वहां पर गोताखोरों की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है, उस नौका की क्षमता कितनी है, और साथ ही अगर कोई ऐसी घटना हो गई है जब अभिभावक साथ में है और कोई बच्चा डूब गया है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो बाहर है जोर से चिल्लाने की, लोगों को इकट्ठा करने की, या जो उसमें से तैरना जानता हो वो जाके उस बच्चे को बचाए, और डूब रहे व्यक्ति को भी इस बात का ख्याल रखना है कि वो अगर जरा भी उसे समय मिला है, क्योंकि कई बारी पानी में गिरने से चोट लगने के कारण अचेत हो जाता है इंसान और उसकी डेथ हो जाती है और हम कहते हैं कि डूबने से मौत हुई, लेकिन होता यह है कि उसकी हेड इंजरी या नाक पे चोट लगना या कनपट्टी पर चोट लगने के कारण ऐसा होता है। तो डूब रहे व्यक्ति को अपने आप को ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तैयार रखना है कि वो घबराए नहीं और हाथ या पैर चलाते रहे, और मुंह से सांस लेने की बजाय थोड़ी भी सांस अगर उनको लेना है तो एक लंबी सांस खींच के अपने अंदर स्टोर करने की जरूरत होती है, ताकि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो वो डूबेगी नहीं बल्कि उतराएगी। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी मनोकामना है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही हमारे युवा और युवा के साथ साथ सभी लोग इस बात को सुनकर सचेत रहे।
0: बहनों, बारिश का मौसम तो है ही, और इस मौसम में दालों की चीजें खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो चलिए मिक्स दाल से बना व्यंजन आज बनाते हैं। दाल चाहिए एक पाव उड़द की दाल, एक पाव मूंग की दाल और एक पाव मसूर की दाल, दो पाव चने की दाल, चार प्रकार की दालें, और दालों में छिलका नहीं होना चाहिए। सभी दालों को भिगो दीजिए। अच्छी तरह फूल जाने के बाद सभी दालों का पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट पतला नहीं गाढ़ा होना चाहिए। इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई मिला लीजिए, और स्वाद अनुसार नमक मिला लीजिए, और इसे बढ़िया से फेंट के बढ़िया स्मूथ पेस्ट बना लीजिए, और ढोकला प्लेट में तेल से ग्रीस करके इसमें पतला सा फैलाकर भाप में पका लीजिए। पक जाने पर इसे अपने मन पसंद आकार में प्लेट से अलग कर लीजिए, और इसे आप तल के भी खा सकते हैं, भाप में पकाया हुआ भी खा सकते हैं, और इसका उपयोग आप कढ़ी या ग्रेवी बनाकर सब्जी भी बना सकते हैं। टमाटर की हरी चटनी या आम पाउडर की खट्टी मीठी चटनी के साथ लाजवाब स्वाद का आनंद भी ले सकते हैं, और इसे गर्मा गर्म चाय के साथ भी खा सकते हैं।

बढ़िया चटपटा स्वाद रहता है बहनों इसका। बहनों अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव, बहनों फिर मुलाकात होगी। इस वादे के साथ स्वीकार कीजिए अर्चना शुक्ला का नमस्कार।

0: और अब एक सूचना, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों के सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस निर्माता अधिकार स्वामी एग्रीगेटर कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण और रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड निःशुल्क या ग्रेटिंग आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेश के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने पहले वे कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देश आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। सभी दस्तावेज प्रसार भारती समय है अंतराल का।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे ललिता सिंह और साथियों के स्वर में कलश गीत।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए प्रतिदिन आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, प्रतिदिन सुबह 7:20 से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का
2: गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: प्लानिंग को बना सकते हैं और
0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार की और मोहम्मद रफ़ी की, और गीतकार थे मजरू और संगीत था राजेश रोशन का।

ये गीत है फिल्म सत्ते पे सत्ता, जिसके लिए आवाज है आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की, गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीत है आर डी बर्मन का।

इस गीत साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। बता दें कि इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। बीती रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के साथ उनका रिश्ता विश्वास और सहयोग पर आधारित है और ये जुड़ाव आगे भी लगातार मजबूत होता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश वो राज्य है जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में सबसे पहले लागू की गई और पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय प्रारंभ किए हैं।
1: हमारा प्रयास है हम सभी प्रकार के शिक्षा से जुड़े हुए मसलों को संवेदनशील तरीके से लेते हैं, चाहे शिक्षक वर्ग का हो चाहे विद्यार्थी वर्ग का हो। उल्लेखनीय है कि शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य मध्यप्रदेश है। 3 सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी मध्यप्रदेश ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में मौका दिया है। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे सारे कामों से हम अपने विकास की गतिविधि, और ये किसी पे हम एहसान नहीं कर रहे, हमारी ड्यूटी है, ये हमारे अपने विद्यार्थियों के हित में लिए गए निर्णय है।
0: द्वितीय विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को नामांकित किया है। वहीं आजाद समाज पार्टी ने दामोदर सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। सभी 3 उम्मीदवार अपने समर्थन में वोट हासिल करने के लिए मतदाताओं के घर घर जा रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी आज दतिया जाएंगे, वे वहां कुछ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। डॉ. यादव यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और व्यापारिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में दतिया के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। उधर कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रचार की कमान संभाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड कल प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमतौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात करते हैं। वे देश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखा करते हैं। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में इन दिनों मानसून पूरी तरीके से सक्रिय बना हुआ है। आज प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि करीब 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस बीच रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेमरी नदी के तेज बहाव में बहे युवक का 3 दिन बाद शव मिला है। यहाँ 3 दिन से युवक के खोज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिला पंचायत सीईओ द्वारा कल जिले की ग्राम पंचायत तनोडिया, पिपलोन कला, मधकोटा और सुधवास में विभिन्न योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का स्थल पर जाकर जायजा लिया गया। झाबुआ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने विकासखंड झाबुआ के ग्राम करडावद खुर्द और अमरपुरा में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस कार्यक्रमों का संयुक्त निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज कटनी जिला अस्पताल में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सिंगरौली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर ने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत नोटिस तामील कर बड़े बकायेदारों से वसूली के निर्देश दिए हैं। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। आगे दीजिए, नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध

0: स्तर पर जारी है।
1: सीआरएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी।

0: ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
1: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुँचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज विनीत सब बदौलत

0: हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGP के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के नाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी श्रोता साथियों ने। और ये साथी हैं लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरेंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, और यहीं भाटापारा से ही दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म मैं हूं ना, इस फिल्म का ये गीत जिसके लिए आवाज़ है अभिजीत श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत है अनु मलिक का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है डब वाली हरियाणा से जे के बोकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल, मीनू बोकोलिया, और ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश, नागनपुरी, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, सूरज, और ये साथी हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आप सभी साथियों ने सुनना चाहा है बंटी और बबली का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर के, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता और भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है केके की आवाज़ में फिल्म वो लम्हे का ये गीत, जिसके लिए गीतकार है नीलेश मिश्रा और संगीत है प्रीतम का।

ये अगली फरमाइश है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, और ये हैं बिहार लोनी से नसीमुल इस्लाम इस्लाम और प्रकाशवीर राजपूत, डोंडी लहारा बलौत से कमलेश जयपुरिया, भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी प्रमिला प्रदीप, रायगढ़ से लालचंद्र मिश्रा, नरेंद्र कुमार राम, और ये साथी हैं आज़ाद नगर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म धूम 2 का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है सुखबीर सोहम चक्रवर्ती, और साथियों के गीतकार समीर, संगीत है प्रीतम का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है, खंडवा ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे वंदना नागनपुरे, और उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, सिद्धांत प्रिंस एकांश गवाणकर, शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली, श्वेता, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है कुछ ना कहो, इस फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस विधेयक के मसौदे को कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। लद्दाख में 27वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय समारोह आज द्रास में लामोचेन व्यू पॉइंट पर युद्ध स्मरण कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। इस समारोह में 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य विधानसभा परिसर में आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और गोविंद नारायण सिंह के परिवारजन मौजूद रहे। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। आज प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा के कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5 बजे सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान होगा। शाम 5:33 पर, 6 बजे और रात 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, प्रायोजन विकास दर्शन आप सुनेंगे 7:45 पर। रात 8 बजे सुनिए इस सप्ताह संसद में, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा 8:15 पर।

विज्ञान भारती ये कार्यक्रम होगा आज रात 9:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। और रात 10 बजे सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अदिति बैनर्जी से ठुमरी दादरा गायन। और 7:21 पर सुनिए आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा। ये थी जानकारी हमारी शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज पर, डीडीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारे आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान था। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान है। पहले सुनिए अहमद रजा के स्वर में गजल।

ये था सुगम संगीत का कार्यक्रम और ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान था। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

ये गीत था फिल्म डर से, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर ए हरिहरन की। गीतकार थे आनंद बख्शीश, संगीत था शिव हरि का। और इसके साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है,

0: डीजीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड कल प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। प्रदेश में अब पेपर लीक, नकल और सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में इन अदालतों को नामित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। पुलिस फर्जी खबरों, AI और डीप फेक वीडियो, एडिटेड क्लिप और भ्रामक पोस्ट से संबंधित हर जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर रही है। और प्रदेश में मानसून इन दिनों पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। आज प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 20

0: आप सुनते हैं इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास से बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम इनसे मिलिए आपके लिए लेकर आता है कुछ ऐसी शख्सियत से बातचीत जो न केवल अपने कार्य में एक विशेषज्ञता रखते हैं बल्कि कई आयाम भी तय कर चुके होते हैं। आज इस कार्यक्रम में स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री नारायण व्यास जी। स्वागत है व्यास साहब आपका। नमस्कार।
2: सभी साथियों को नमस्कार और सुनने वालों को मेरी ओर से शुभकामनाएं।
1: आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे सभी सुनने वाले कि नारायण व्यास साहब को आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त है और आप एक ख्यात पुरातत्वविद हैं जिनका लंबा अनुभव रहा है। उनकी दृष्टि की एक परख है जिसमें कई चीज़ें उजागर हुई और लोगों तक पहुंची हैं। ऐसा कहते हैं कि अभिव्यक्ति के लिए भाषा की ज़रूरत होती है और जहां भाषा की ज़रूरत नहीं होती वहां कभी फूल मुस्कुरा देते हैं, कभी नदियां कलकल करने लगती हैं। लेकिन पत्थर की भाषा को समझना और उस बात को मुखरित कर लोगों तक पहुंचाने का काम पुरातत्वविद ही कर पाते हैं। तो व्यास साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आने का सबसे बड़ा राज क्या था? क्या ये मोहब्बत, ये दोस्ती पत्थरों से शुरू से थी या ये एक समय के साथ पैदा होती चली गई?
2: इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि मूल रूप से मैं फाइन आर्ट पेंटिंग का विद्यार्थी था। वो बचपन में उज्जैन में रहता था और बहुत चित्र बनाया करता था स्कूल में, कॉलेजों में, जहाँ जहाँ पढ़ता था वहाँ। और विशेष रूप से क्या है कि मेरी आदत ऐसी थी कि कोयले होते थे घर में, उससे दीवारों पर बनाता रहता था। इससे क्या, मेरे घर के लोग सब परेशान हो जाते थे कि जहाँ तो यहाँ चित्र देता है, जहाँ जहाँ लिख देता है और काला काला करेंगे तो उधारी बहुत हो जाएगी। तो पिताजी माता जी डांटते भी थे। लेकिन सौभाग्य से एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी आर्य समाज के प्रधान थे उज्जैन में। एक दिन उन्होंने 1964 में डॉक्टर वाकणकर जी का व्याख्यान रखा था वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के व्याख्यान में वो मुझे भी ले गए और प्रभावित भी हुआ, मैं भी हुआ कि नई नई चीज़ें मैं सुनने मिली। फिर बाद में पिताजी ने उनसे ये कहा कि ये मेरा बेटा नारायण है और इसकी हमेशा ऐसी आदत ख़राब है कि चाहे जहाँ चित्रता रहता है कुछ ना कुछ काला पीला करता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चित्रकार हैं तो इसको कुछ मार्गदर्शन दें ताकि कुछ इसे लाइन पकड़ लें। तो वाकणकर जी ने कहा ठीक है, अगले दिन से भेज दो मेरे यहाँ। तो उज्जैन में उनका एक भारतीय कला भवन चलता था और मैं उसमें मिडिल के हायर सेकेंडरी क्लास में पढ़ता था, 64-65 की बात है। तो दूसरे दिन पिताजी मुझे ले गए और वाकणकर जी के यहाँ स्कूल में भर्ती कर दिया। तो जब से मैं उनके यहाँ फाइन आर्ट सीखने लगा तो मेरी क्या दृष्टि कुछ अलग होने लगी थी। क्योंकि क्या है, वाकणकर जी एक पुरातत्व तो क्षेत्र में थे ये मेरे को पता नहीं था, लेकिन जब उनके घर में मैं ये पत्थर देखता था, मिट्टी के बर्तन देखता था, सिक्के पड़े होते थे घर में जगह जगह, तो मेरे को लगता है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो उत्सुकतावश मैंने एक बार पूछ लिया था वाकणकर जी से ये क्या चीज़ें हैं। तो बोले यार ये तो पुरातत्व पुरानी चीज़ें हैं, तुमको अभी क्या करना है इससे, तुम तो फाइन आर्ट का अपना काम करो। लेकिन मेरा मन नहीं लगता था क्योंकि मैं देखता है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है, इनके सिक्के भी आ रहे हैं, मूर्तियां भी आ रहे हैं, बहुत चीज़ें आ रही है। तो आखिर में उस समय मैंने बीए भी पास कर लिया था, उनके डिप्लोमा भी कर लिया। तो उन्होंने कहा यदि तुम्हारा इतना इंटरेस्ट है तो तुम एमए पुरातत्व या प्राचीन भारतीय संस्कृति में कर लो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनके यहाँ अगले दिन से, उन्होंने जब मेरे से कहा तो विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में ये विषय था, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद तो मेरी जो

0: आया वो, तो उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे हम लेके आए हैं, इस गांव में गए थे, तो हमारे साथ वाकणकर जी भी गए। जब चले तो गए, एक दिन रात रुके, दूसरे दिन हमने वो चीज़ें ढूंढी वहाँ, और गांव का नाम था दंगवाड़ा। अच्छा। दंगवाड़ा बड़ा प्रसिद्ध स्थान है ताम्रास युग का, वहाँ बहुत सी चीज़ें मिली, तो वाकणकर जी बहुत खुश हो गए। और शाम हो गई थी, उनको वापस आना था जल्दी, और बसें मिलती नहीं थी, तो क्या करें, तो मैं और वाकणकर जी बस के ऊपर बैठ के फिर उज्जैन आए। कई हम लोग के साथ ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन अंत में क्या हुआ कि जब हमने कर लिया तो हमें क्या आगे किया जाए, तो वाकणकर जी ने कहा कि तुम दिल्ली से डिप्लोमा होता पुरातत्व का, वो कर लो। तो दिल्ली में मैंने एडमिशन ले लिया, पुरातत्व का डिप्लोमा भी हो गया। तो उसमें ये फायदा हुआ कि आदिमानव की सभ्यताएं, इतिहास, पुरातत्व, स्थापत्य, मूर्तिकला सबकी जानकारी मिल गई। तो वहां से होने के बाद वाकणकर जी ने कहा कि मैं अभी ये भीमबेट का काम करने वाला हूँ, तुम मेरे साथ रहो। तो इस प्रकार मैं वाकणकर जी के साथ भीमबेट का रहा, और कुछ समय तक मुझे प्राचीन मानव की जो सभ्यताएं उत्खनन में मिली है, आदिमानव पत्थर के हथियार हैं, गुफाओं में बने चित्र हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें मेरे को उनके द्वारा जानने को मिली। तब से भी कहना चाहिए एक तरह से बहाव किसी चीज का होता, वो चालू हो गया, हवा का बहाव जैसे कहते हैं ना, फिर वो मैं जो चला तो चलते ही गया वैसे चलता है। वाकणकर जी बड़े खुश होते हैं, वो देखते बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार उनके कारण ही भारतीय पर्यटन सर्वेक्षण में सर्विस भी लग गई और इसमें भी आ गया। 37 वर्षों के मैंने कार्य किया, जगह जगह देश भर में घूमा, एक दो बार कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में बाहर भी गए, म्यांमार भी गए इस मार्कों का अध्ययन करने के लिए। 1988 में वाकणकर जी का स्वर्गवास हो गया, बड़ा दुख हुआ, लेकिन उनका जो काम था वो पूरा नहीं हुआ था। काम क्या था, जो रॉक पेंटिंग होते हैं उन पे काम करना था, तो वो काम बड़ा अधूरा था। तो मैंने यही प्रण किया कि मुझे अभी काम करना चाहिए, तो जगह जगह जाकर शैल चित्रों का अध्ययन किया। स्पेन की भी एक संस्था है वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट भी, जब उन्हें इस विषय में पता चला तो उन्होंने मेरे को अपने ग्रुप में मिलाया, तो उनके साथ भोपाल के आसपास के जितने भी रॉक पेंटिंग है सबके सर्वे किया और एक पुस्तक निकाली जिसके अंदर भोपाल के आसपास के क्षेत्र के जितने भी रॉक पेंटिंग ये हो गए। क्योंकि अब ये इतने लंबी सर्विस रही, जगह जगह गए, अनुभव होते गए, लेकिन जब मेरी रिटायरमेंट हुआ तो लोग कहते अब क्या करोगे, अरे मैंने क्या रिटायरमेंट के बाद तो मैं ज़्यादा काम करूँगा, जो ये काम अभी यहाँ करता था इससे ज़्यादा काम मिलेगा। तो वही हुआ, मैं 1972 में सर्विस में लगा, वो 2009 में रिटायर हुआ। उसके बाद से लगातार मैं यही काम कर रहा हूँ पुरातत्व के क्षेत्र में, जगह जगह हम जाते हैं। वो मेन ये उद्देश्य था कि हम लोगों के पास जो जिम्मेदारी पारिवारिक होती है वो इतनी नहीं है कि बच्चे अपने अपने जल लगे गए, अपने अपने काम करते हैं, तो हम क्या करें। तो हमने यही कहा कि हम धरोहर की सेवा करेंगे, और जितने भी लोग होंगे, बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, शोधार्थी होंगे, उनको हम ये पूरी जागरूकता, उनके बीच में अभियान चलाएंगे, उनके चीज़ें बताएंगे। तो मैं और मेरी मिसेज साधना व्यास, वही पुरातत्व में एम ए किया है, साथ साथ में रहती है, हम साथ साथ ही जगह जगह जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, और कोई भी ऐसा समय आता है या त्यौहार आता है जिससे संबंधित चीज़ें होती हैं, हम उसकी प्रदर्शनियाँ भी जगह जगह हम लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारा निरंतर काम चलता रहा है।
1: बहुत लंबा अनुभव और बहुत खूबसूरत सी यात्रा है आपकी, जो वाकणकर जी के निर्देशन में या उनके नेतृत्व में कहिए शुरू हुई। और जब किसी भी चीज़ को या बहाव को दिशा मिल जाती है तो वो अपने गंतव्य तक पहुंचती है।
0: बिल्कुल सही है कह रहे आप।
1: आपने एक अच्छे गुरु के रूप में कहिएगा या मार्गदर्शक के रूप में वाकणकर जी को पा लिया था
0: जी।
1: और आपके लिए दिशा मिलती चली गई। यदि किसी बच्चे की, किसी युवा की आज इस क्षेत्र में रुचि हो तो वो क्या चीज़ें हैं जिसके माध्यम से वो वहाँ तक बढ़ सकता है, और आज के समय में क्या संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं, क्योंकि कोई भी युवा बिना संभावनाओं के चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ सकता है, जो ज़रूरत भी है वक्त की, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात?
0: इस विषय मेरा ये कहना है कि सबसे पहले अपनी धरोहर है, इनको सभी में जागरूकता के रूप में फैलाना है, विशेष रूप से स्कूल में, कॉलेज में, बच्चों के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए, टूरिस्टों के लिए। तो उस प्रकार का अभियान हम चलाते हैं, जब हम स्कूल कॉलेजों में जब लगाते हैं तो बच्चे बड़ा आकर्षित होते हैं, वो देखते हैं आदिमानव के पत्थर के हथियार, भाले, कुल्हाड़ी कैसी होती है, क्योंकि उनके कोर्स में होते हैं, ड्रिल कोर्स में, 6वीं 7वीं 8वीं में होते हैं कोर्स में, तब वो देखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो चीज़ें देखते हैं तो झूम पड़ते हैं हमारे ऊपर कि अरे इतने सुंदर चीज़ें लेके आए हो, ये भाला है, ये कुल्हाड़ी है, ये खरोंचने वाला है, ये तीर कमान है, तो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। तो ये करके बच्चों में बड़ा चाव होने लगा। अब स्कूलों कॉलेजों में जाने का प्रभाव ये हुआ कि बहुत से जो बच्चे हैं इनकी ओर आकर्षित हुए, और कुछ लोग इसके अंदर एम ए भी कर रहे हैं, कुछ इसमें पी एच डी भी कर रहे हैं, और कहने इसमें रोजगार की संभावना भी हो जाती है। कि भारतीय पर सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व, स्टेट आर्कियोलॉजी, यानी कहीं के वैकेंसीज निकलती है और उनको काम मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कई लोग हमसे कहते हैं कि और क्या हम कर सकते हैं। हम उनको बताते भी है, यदि आप पढ़ लिख लेते हो या सब कर लेते हो तो अपना ग्रुप बना लीजिए।

0: ये उसको रजिस्टर्ड करा लीजिए, एनजीओ बना लीजिए, उसके माध्यम से आप जगह जगह स्कूल में कॉलेज में एमओयू करिए, और एमओयू करेंगे तो आपको काम मिलेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप सक्षम होंगे और लोगों को काम भी आप दे पाएंगे। तो फ्यूचर पार्कसिटी से पुरातत्व के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत है, इसे कम नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन हमारे कहना इसमें बहुत कुछ है। यदि हमने धरोहर को सीख लिया, इन्हें सब चीज़ सीख ली, हमारे विषय कोई भी हो, लेकिन हमारा जो विषय जो है ये पुरातत्व ऐसा है वो सभी के लिए मान्य भी होता है। हम चाहते हैं सभी लोग इसको पढ़ें और इसके प्रति जागरूक हो और जितना फैल सके उतना फैलाएं इसको।
1: निश्चित रूप से जागरूकता एक बहुत बड़ा जरूरत और टूल होता है जो हमें चीज़ों के प्रति सचेत करता है, आकर्षित करता है और थोड़ा सा सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित भी करता है।
0: बिल्कुल सही है
1: व्यास साहब। यहाँ पर थोड़ा सा मूड को बदलते हैं, यदि आपकी पसंद का कोई गाना हम जानना चाहें जिसे हमारे श्रोता भी सुनकर आनंदित हो, तो कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
0: ऐसा है, बचपन से मेरे देशभक्ति का जज्बा मेरे पिताजी से हुआ
1: जी।
0: क्योंकि वो क्या है कि स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे।
1: अच्छा।
0: और उज्जैन में सबसे पहले जो तिरंगा झंडा उनके द्वारा ही लगाया गया है 15 अगस्त 1947 को
1: जी।
0: तो मध्य प्रदेश शासन ने वो चौराहे का नाम है हमारे पिताजी के नाम से, अनंत लाल व्यास चौराहा नाम से कर दिया है। तो वो इस चीज से बड़े प्रसन्न होते थे कि मैं इस टाइप से काम करता हूँ। तो एक बार उनसे मैंने कहा कि भाई कुछ सिनेमा देखना है, तो उन्होंने कहा ये सिकंदर आजम देखो नई फिल्म आई है 1965 में, और उसका बड़ा प्रसिद्ध गाना है जहाँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है।
1: तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और सुनवाते हैं सभी को।

0: सिकंदर आजम के इस खूबसूरत से गीत के बाद वापस हम उस बातचीत की तरफ आते हैं जिसके लिए आज आप स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हम आपसे मार्गदर्शन पा रहे हैं। यदि विषय की दृष्टि से पुरातत्व को देखा जाए तो व्यास साहब, वो कौन कौन से इसमें आयाम या विषय आते हैं जिसके प्रति हम अपनी रुचि को बढ़ा सकते हैं?
1: ये पुरातत्व का एक विज्ञान है, साइंस है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत फला फूलता है और अच्छा चलता भी है। किसी भी हम ऑब्जेक्ट का या पुरानी चीज़ों का साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, साइंस है। अब जैसे आदि मानव का जो सबसे पहला जो हथियार था, कुल्हाड़ी, वो पहली वैज्ञानिक उपलब्धि, ये पूरा विश्व मानता है। इस प्रकार जैसे विकास हुआ तो पुरातत्व के कई सेक्शन होते हैं, कई विभाग होते हैं जिसमें पुरातत्व है ही है। ये पुरातात्विक उत्खनन भी होते हैं, स्थापत्य कला भी है, मूर्तिकला भी है, स्मारकों का कंजर्वेशन भी है, कॉइंस के बारे में भी है, पुराने एपिग्राफ जो होते हैं, अभिलेख होते हैं, इनके ऊपर भी है। इस प्रकार कई विषय ऐसे हैं और उसमें एक अलग सोच है, ये जो पर्यटन का भी है, एक ये भी उसमें आता है। हर जिले के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर पर्यटन समिति है, पुरातत्व समिति है, हर जगह समिति, उसके माध्यम से भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो इतने विषय हैं सबके अपने पसंद होते हैं, लेकिन एमए तो एक विषय में होता ही है, उसमें ये सभी विषय आते हैं। उसके बाद यदि स्पेशलाइजेशन करना हो किसी को तो उसको पीएचडी कर लेता है। बहुत से लोग पीएचडी स्थापत्य कला पर करते हैं, मूर्ति कला पर करते हैं, सेल चित्रों पर करते हैं, ये प्राचीन मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन कैसे होता है इस पे करते हैं, सिक्कों पे करते हैं, क्योंकि सिक्के बहुत अपने प्राचीन समय से मिलते हैं, प्राचीन अभिलेखों से मिल करते हैं। अभिलेख का जो पढ़ना है ये बड़ा मुश्किल तो पड़ता है, लेकिन इसकी जो लिपि और भाषा समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे ब्राह्मी लिपि है, पुराने अभिलेख सब ब्राह्मी लिपि के होते थे, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज, जो भाषाएँ होती थी वो पाली होती थी, प्राकृत होती थी, संस्कृत भी होती है, और उसी भाषा का जो विकास हुआ ब्राह्मी लिपि का, वो वर्तमान में हमारे नागरिक की लिपि वो भी उससे मिलती जुलती है। आज जैसे हमारी भाषा हिंदी है तो उस समय पाली, प्राकृत, संस्कृत हुआ करती थी। तो इस प्रकार कई इसके आयाम हैं पुरातत्व के, जिसके अंदर किसी भी क्षेत्र में हम एमए करने के पश्चात उसे पीएचडी कर सकते हैं, और पीएचडी के बाद हम डीलिट भी चाहें तो उस पर कर सकते हैं।
0: जी, आपकी रुचि का विषय सबसे ज़्यादा क्या था?
1: पुरातत्व तो ऐसा है कि इसमें सभी विषय होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरी रुचि का विषय ये पेंटिंग, रॉक पेंटिंग, सेल चित्र, जो मेरे गुरुजी वाकणकर साहब की जो देन है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। वही रॉक पेंटिंग मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी में ज़्यादा काम करता रहता हूँ।
0: जी, आपका 37 वर्षों का तो सर्विस का या सेवा का काल रहा, और उसके बाद भी आप 2009 से लगातार कार्यरत हैं।
1: जी,
0: तो आपके इतने बड़े कार्यक्षेत्र में और एक लंबी अवधि में कुछ ऐसी खास चीज़ें रही होंगी जो आपके दिल के भी बहुत नज़दीक होंगी और जो कुछ विशेष कार्य में परिणित हुए होंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे।
1: ऐसा है, काम तो मैंने बहुत सब तरह के किए हैं, सब्जेक्ट किए, ऑल ओवर इंडिया गए हैं, एक्सकेवेशन किए, एक्सप्लोरेशन किए, नई नई खोज की है, लेकिन तीन ऐसे विषय हैं मेरे विषय में जो मेरे सामने जो प्रमुखता से आते हैं। इसमें जो भीमबेटका के शैल चित्र हैं, जो वाकणकर जी के कारण ही मैं ये सब सीखा हूं और उसको फिर विश्व धरोहर में लिया है, और दूसरा सांची है। सांची मेरा बड़े प्रिय स्थान है, जहाँ मैं आदि मानव की सभ्यताओं से लेके, वो तो मिलते ही हैं, सम्राट अशोक से रहा के 12वीं शताब्दी तक लगातार सांस्कृतिक धरोहर चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। स्तूप भी है, प्राचीन मंदिर भी है, अभिलेख भी हैं, और मूर्तियाँ इतनी अनगिनत है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और उस तीसरा मेरा जो सब्जेक्ट जो थे पसंद का, वो है रानी की वाव। रानी की वाव जो गुजरात में बड़ा प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है, एक बावड़ी है, स्टेपवेल, जो हम 100 के नोट पे भी हम देख सकते हैं। तो क्या जब मेरे 1981 में वहाँ पोस्टिंग हुई थी, तो क्या उस समय मुझे काम दिया गया, काम तो सभी करता था, लेकिन ये विशेष रूप से काम दिया, मेरे को कहा कि आप ये रानी की वाव का काम करो, इसका एक्सकेवेशन करना, प्रिजर्वेशन करना, और मूर्तियों का डॉक्यूमेंटेशन करना। जब मेरी पोस्टिंग, जब वहाँ काम शुरू किया तो बावड़ी करीब 20 से 25 फीट खुदी हुई थी।
0: अच्छा।
1: तो उसके बाद काम बनता। जब मैंने वहाँ काम शुरू किया 1981 से ला के 1987 तक मैंने वहाँ काम करता रहा, उसके बाद मैं ट्रांसफर हो गया। लेकिन इसे 7 साल में अन्य काम के अलावा मुख्य काम ये रानी की वाव का था। करीब 150 फीट तो लंबी थी ये बावड़ी, और चौड़ाई में लगभग 60-65 फीट थी, और पानी का लेवल हमने जब खुदाई की तो 120 फीट थे।
0: अच्छा।
1: तो उसमें कई 7 मंजिला बावड़ी थी, स्टेपवेल जिसे हम कहते हैं, सीढ़ियों से पानी तक आना होता है, वो बहुत बड़ा कुआं था, और उसमें कई इतनी साइंटिफिक चीज़ें थी। जैसे हम मंदिर देखते हैं जिसमें शिखर ऊपर दिखता है, इसके अंदर शिखर के रूप में एक कुआं देखते हो जो जमीन के अंदर है, और पूरी मूर्तियाँ भरी हुई है, जैसे मंदिर के भाग होते हैं वैसे इसके भाग होते हैं अलग अलग। हम देखते हैं तो उसमें करीब 1500 मूर्तियाँ उसमें हमें मिली।
0: अच्छा।
1: जो दीवार पे लगी हुई थी, यथा स्थान पे थी, लेकिन इतनी सुंदर मूर्तियां थी कि उसमें

0: रोशनक नहीं आई, क्योंकि ऐसा अनुभव हमें हुआ है कि जब काम कर रहे थे तो ये बावड़ी पहले पुराने समय में कुछ गिर चुकी थी, गिरने के बाद उसका पानी का लेवल ऊपर हो गया। जब हम पानी के लेवल ओरिजिनल लेवल तक गए तो हमने देखा कि मूर्तियां मिलती जा रही, नीचे मिलती जा रही है, और लोगों को एक धारणा थी कि रानी की जो बावड़ी है ये कौन रानी थी
1: जी।
0: तो अब ये समस्या थी क्योंकि 11वीं शताब्दी की, उस समय राजा महाराज जो थे वहाँ के सोलंकी, लेकिन जब खुदाई के समय सबसे नीचे पानी में एक हमें मूर्ति मिली वो एक महारानी की थी, और उसमें महारानी का नाम लिखा महारानी उदयमती।
1: अच्छा।
0: महारानी उदयमती, तो हमने अंदाज लगा लिया कि महारानी जो है यही रानी है और इसके नाम से ये बावड़ी बनी है, क्योंकि अब ये किसी की स्मृति में नहीं, उनके प्रति थे भीमदेव सोलंकी जो 11वीं शताब्दी में थे, महमूद गजनवी से जिनका युद्ध भी हुआ था, वो उसमें एक मूर्ति लगी हुई है जिसमें राजा के पूरे लक्षण पूरे दिए हैं, तो वो मूर्ति राजा की ना भीमदेव सोलंकी ही होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी चीज़ उसमें मिली। और हमने गैलरीज के अंदर दशावतार नाम दिया एक गैलरी का, एक हमने वैष्णव गैलरी का दिया, और एक रुद्र रूप जिसमें कुएं के अंदर मूर्तियां लगी थी ऊपर से नीचे था, और इतना जोखिम का काम था कि तीन बार तो मेरे को इसमें ऐसे चक्कर जैसे आया कि मैं कब गिरा कह नहीं सकता। एक बार मचान टूट गया, और एक बार क्या हुआ कि जब इतनी ठंडी में जब काम कर रहा था तो कमर बिल्कुल अकड़ गई उसके अंदर, तो मैं एक कदम भी चल नहीं सका, लगभग एक महीने में बीमार रहा। धीरे धीरे जब ठीक हुआ तो वापस में काम शुरू किया। उसी समय हमारे वाकणकर साहब सरस्वती नदी का सर्वे कर रहे थे, वो वहाँ आए और मेरे से कहा नारायण तुमने इतना बड़ा काम किया है इस पर PhD कर लो। तो मैंने कहा PhD कैसे होगी इस पर, बोले नहीं हो जाएगी। फिर उन्होंने उसकी सिनॉप्सिस बना के दी और कहा आप कर लो। तो क्या है कि जब मेरे को इतनी कठिनाई इतना कष्ट हुआ, जब ये PhD के बारे सुना तो सारे कष्ट में भूल गया। मैंने कहा ये मेरा उद्देश्य नहीं रहा कि मुझे PhD करना है, तो मैंने पूरे मूर्तियों का क्लासिफिकेशन किया। उसमें विष्णु की जो मूर्तियाँ थी उनको बिल्कुल डिफरेंस, जैसे उनको नाम आते हैं जैसे आयुध के हिसाब से, जैसे माधव है, केशव है, श्रीधर है, प्रद्युम्न है, जनार्दन है, हम देखने में तो विष्णु दिखेंगे लेकिन उनके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा बदलते जाएंगे
1: जी।
0: और दूसरी गैलरी में दशावतार थे, विष्णु के दशावतार जो हुए वहाँ पे मत्स्य कुंभ, वराह और नरसिंह जो हैं, उससे मत्स्य कुंभ में तो मिली नहीं, बाकी मूर्तियाँ वहाँ पर हमें देखने को मिली, और इतनी सुंदर मूर्तियाँ दशावतारों की, तो खरोंच तक नहीं लगी, ना कोई नाक तक टूटी, ना उंगलियाँ टूटी, और इतनी सुंदर, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, इतनी सुंदर मूर्तियाँ, कभी आप खड़े रहें तो देखते ही रह जाएंगे और ऐसा लगता है कि मूर्तियाँ आपसे बात कर रही है। और वैसे ही वहाँ पे अप्सराओं की मूर्तियाँ मिली, अलग अलग भाव होंगी वहाँ, करीब 202 मूर्तियाँ अप्सराओं की थी जो अलग अलग, कोई नृत्य कर रही है, कोई मृदंग बजा रही है, कोई शंख बजा रही है, कोई आरती उतार रही है, कोई तलवार जला रही है, इस प्रकार की कहना चाहिए 202 ऐसे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ मिली जो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं, पूरे भारत में घूमा कहीं नहीं देखी जो मेरे को रानी की वाव में दी। तो ये रानी की वाव मेरे लिए एक बहुत बड़ी महत्व की चीज़ है, माइलस्टोन है मेरे लाइफ का, जिसमें मैंने ये जो काम किया, क्योंकि ये काम उजागर हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि फिर इसने गवर्नमेंट ने योजना बनाई इसको विश्व धरोहर श्रेणी में लिया जाए, तो विश्व धरोहर श्रेणी में मुझे डिपार्टमेंट ने मेंबर भी बनाया, कमेटी का मेंबर भी, और 2014 में ये विश्व धरोहर घोषित हुआ। तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रानी की वाव है।
1: निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये एक बहुत जोखिमपूर्ण रास्ते से होकर गुजरी है और उस पर आप सतत कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे शहर या क्षेत्र रहे भारत के जहाँ पे आपका काम चलता रहा और आपका काम के कारण जाना हुआ?
0: ऐसे में तो काम तो की है, विदिशा में आपने बेसनगर नाम सुना होगा
1: जी, बिल्कुल।
0: जो विदिशा बेसनगर सम्राट अशोक की ससुराल थी, बहुत बड़ा नगर था, ताम्रराज युग से महाभारत के युग में वहाँ के अवशेष मिले हैं, तो वो भी मैंने 3 साल काम किया था 1975 से 1976 तक। लेकिन क्या है कि एक उत्सुकता होती है तो पता तो चला था कोई नगर दबा हुआ है, जब हमने नगर को खोलना शुरू किया तो नीचे हमें मकान दिखे, भवन दिखे, मंदिर के अवशेष मिले, हमने लगा कि हम कहाँ क्या चीज़ देख रहे हैं ये जो इतने समय से गुप्त है, तो हमने उसको उजागर किया उस नगर को, तो उसमें कुछ सड़कें भी मिली, उसके अंदर कुछ मकान मिले, कोई रॉयल कॉम्प्लेक्स भी मिले, मंदिरों के अवशेष भी मिले, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पुराने ज़माने के जो बर्तन चलते थे, आज जैसे स्टील के बर्तन चलते हैं, उस जमाने में ऐसे बर्तन चलते थे, काले चमकदार चलते थे, जो सम्राट अशोक के समय चला करते थे, वो हमें मिले। बड़े छोटे हो वहाँ भेदभाव नहीं होता था, सब मिट्टी के बर्तन वहाँ प्रयोग किया करते, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिली और ऐसी दुर्लभ चीज़ें मिली कि उसमें कोई बखान भी नहीं किया सकता। वो मेरे जीवन में एक वो बहुत बड़ा पुरातात्विक उत्खनन था, हालांकि उत्खनन करने के पश्चात उसको बंद कर दिया जाता, यदि कोई प्रोजेक्ट हो बड़ा तो वो ओपन करते, क्योंकि वो नगर ऐसा था कि तीन तरफ तो नदियों से घिरा था, बेतवा और बेस और फिर उनका संगम, और एक तरफ उसकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी लंबी दीवार बनी थी, उसमें पानी की खाई थी, और पानी की खाई में बेस नदी का और बेतवा नदी का पानी, इसलिए ये त्रिकोणात्मक नगर से पूरा सुरक्षित नगर था, क्योंकि यहाँ सम्राट अशोक भी आए, उसके बाद भी राजा महाराजा वो आए।

0: और ये विदिशा क्या है कि पहले इसको दसाण प्रदेश बोलते थे
1: जी।
0: ये दसाण प्रदेश की पूरी राजधानी थी, जो विदिशा के आसपास का क्षेत्र और झांसी तक का क्षेत्र इसमें होता था। तो यहाँ पे कहते भी हैं कि रामायण के समय में शत्रुघ्न के पुत्र को ये पूरा राज्य यहाँ का दिया था, वो महाभारत युद्ध के समय में पांडवों की तरफ से यहाँ के शासक लोग लड़े थे। नाम तो मिलते नहीं लेकिन ऐसे कथानक हमें मिलते। तो इस प्रकार का जो नगर है आज भी दबावा है। यदि आप जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े टीले देखने को मिलेंगे, पुराने मिट्टी के बर्तन भरे, लेकिन वो पूरा भारत सरकार ने उसको संरक्षित कर रखा है, इसलिए किया है कि भविष्य में कोई प्रोजेक्ट हो तो हम उसको पूरा ओपन कर सकें। इसके अलावा भी और ऐसे कई चीज़ें हैं, दुर्घटनाएं भी घटी मेरे साथ में, ऐसे नहीं कि नहीं वो है। अब जैसे भोपाल के पास एक कठोतिया गाँव है जो रॉक पेंटिंग जो बहुत ही हुआ है, तो हमारे ग्रुप के साथ जो पुरातत्व के जो लोग हैं उनके साथ हम वहाँ गए देखने के लिए, तो किसी ने मधुमक्खियों को छेड़ दिया। तो मधुमक्खियों को छेड़ने से क्या हुआ कि मधुमक्खियों से बचना बहुत मुश्किल है, तो वो हमने मित्रों को तो भगाया कि तुम चलो जल्दी जाओ, और मैं उस समय रह गया तो मेरे पे मक्खियाँ पूरी झूम गई, तो मुझे करीब 70-80 मक्खियों ने काटा होगा। अब एक मक्खी काटने से कैसा असर होता है, वो 60-70 मक्खी काटने कैसा होता है, वो तो मैंने अपना पेशेंस रखा, धीरे धीरे पहाड़ी से उतरा, मक्खियाँ काटती गई, मैं थोड़ा भी यदि विरोध करता उनका तो जान जोखिम बहुत ही हो जाए। फिर पहाड़ी उतरने के बाद मेरे पास मोबाइल था, बाय चांस मेरी बेटी को लग गया, वो डॉक्टर थी, वो पूरी एम्बुलेंस लेके आई और सबको दवाएं वगैरह थी, इंजेक्शन लगाए, और चिमटी से मेरे 70-80 पूरे मधुमक्खी के डंक निकाले, और डंक ऐसे जहाँ डंक निकलते हैं ब्लड आने लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं युद्ध से आ रहा हूँ, इतना पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन मेरे को होश ही नहीं था। फिर मेरे को 24 घंटे आईसीयू में रखना पड़ा, जब उसका जहर उतरा धीरे धीरे दवाइयों से तब मैं ठीक हुआ। लेकिन क्या है कि मेरे को कठिनाइयाँ तो आती है, तो हम सब जानते हैं पुरातत्व का काम जोखिम का होता है, कठिनाइयाँ तो आती है, यदि हम वो ध्यान रखेंगे कठिनाइयों को देखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो काम करना है तो करना है, ये मन में ठान लो, इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, दुख दर्द हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इसको हम परवाह नहीं करते, क्योंकि तकलीफ के बाद ही इन्हें कहने से कांटों के रास्ते के बाद ही हम कहते हैं ना अच्छा रास्ता आता है, वो अपने को ही चुनना है।
1: निश्चित रूप से इस जुनून भरे सफर में जहाँ आपने कई सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की, क्या कोई एक ऐसी चाह अभी भी है कि मैं ये काम भी कर लेता या वहाँ तक पहुँच पाता तो और अच्छा लगता मुझे?
0: अभी भी मेरे मन में तो बहुत है चीज़ें, खुशी देख रखी, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अभी प्राचीन एक नगर मिला है यहाँ रायसेन जिले में, देवरी गांव है, पुराने नगर के टाउनशिप को कहना चाहिए, पूरी मिली है वहाँ, जिसको अभी पूरा काम नहीं किया है। वहाँ एक लंबी दीवार मिली है, फोर्टिफिकेशन वाले जिसे कहते हैं, वहाँ स्थानीय लोग कहते हैं कि यह 80 किलोमीटर लंबी दीवार है, लेकिन जब नाप के देखे थे इतनी तो हमने लगी नहीं, लेकिन 25-30 किलोमीटर वो दीवार देखी हमने, लोगों ने कुछ तोड़फोड़ भी रखी, लेकिन उसके अंदर के हम देखते हैं तो बड़े बड़े भवन के वो अवशेष मिले हैं, मकान के हैं, यानी कहना चाहिए पूरे हैबिटेशन है वहाँ, कई मंदिर का अवशेष है। तो ये अभी क्या है, ये जंगलों में होने के कारण बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं ये वाला काम है वो शीघ्र शीघ्र पूरा करें, और हमें करना है, क्योंकि हमारी जो एक समिति है इतिहास संकलन समिति, उसका अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ मध्य भारत प्रांत का, तो हमारे ग्रुप ने खोज 2014 में की थी, तब से इतनी भारत में पर प्रसिद्ध हो गई ये दीवार और वहाँ के टाउनशिप। लेकिन अभी भी क्या है कि हम चाहते हैं कि जगह संरक्षित हो जाए, वो काम शुरू हो, और एक नगर एक नया चीज़ें लोगों के सामने आए तो पता चलेगा कि ये विकास के क्रम में ये नगर भी अंदर दबा हुआ है, सामने लोगों के आएगा
1: जी। इस तरह के काम जब लोगों तक पहुंचते हैं, लोग उसे देखते हैं, संरक्षित होते हैं, या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण का वैलिडेशन पाते हैं, तो यकीनी तौर पर इतिहास और पुरातत्व को लेकर एक बहुत बड़ा संरक्षण होता है। लेकिन इस सब कार्य को जब पद्मश्री से नवाजा गया, आपके काम को एक सम्मान मिला, तो कैसा महसूस हुआ आपको, और क्या उसके बाद किसी तरह की कोई काम को लेकर जिम्मेदारी में अंतर आया?
0: ऐसे मेरे को जो पद्मश्री सम्मान मिला है पुरातत्व विज्ञान में मिला है
1: जी।
0: क्योंकि ऐसा है ना, ये पुरातत्व विज्ञान को हम लोगों ने एक जनता से जोड़ा है, इन लोगों से जोड़ा है, विद्यार्थी जोड़ा, तो इसका प्रभाव बहुत हुआ है
1: जी।
0: इसके लिए प्रयास तो मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन इस बार प्रयास जो मैंने किया बड़ा सफल रहा उसमें। तो इसमें मेरा काम देखा गया कैसा है, सब जगह इंक्वायरी हुई, सब चीज देखी, उसके बाद ये डिक्लेयर किया, मुझे पद्मश्री पुरस्कार दिया। लेकिन मिलने के बाद क्या है कि बहुत से लोगों को इसके मन में एक अभिमान जैसा हो जाता है, लेकिन मेरे मन में अभी भी वही है जैसे पहला था वैसे ही मैं अब हूँ, क्योंकि इतना सम्मान भारी है, इतना बड़ा सम्मान है, तो मैं अकेला तो उठा नहीं सकता, तो इसमें मेरे परिवार के लोग, मित्र लोग, पुरातत्वविद्ता सब लोग मिलकर इसमें हाथ लगाए, तब जो पूरा वो उठा रखा है, तब से मुझे ये मिला। और लेकिन अब इसके बाद में मुझे काम जो करना है वो तो करना ही है, जो काम करता हूँ पूरा करता हूँ। तो मेरे छोटे हुए काम जो भी है, जैसे रॉक पेंटिंग का है, वो टाउनशिप जो है जंगल में जो थी गोरखपुर के, उनको अभी भी मुझे काम करना है। शारीरिक दृष्टि से भी मैं थोड़े पैर में कोई तकलीफ हो गई, इसलिए काम में थोड़ी गति कम आ गई, लेकिन मन मेरा तो उससे भी तेज चल रहा है। तो मैं जैसे अभी ठीक होऊंगा, क्योंकि यदि मन यदि मेरा कच्चा हो जाएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा।

0: इसलिए मेरे मन को पक्का करना पड़ेगा और ये मन में जुनून करना कि मुझे वो काम करना है, भले कैसी ही परिस्थितियाँ हो, कैसी ही तबीयत हो, कितनी भी कठिनाई हो, मैं वो काम करूँगा और करने का प्रयास करता ही रहूँगा।
1: हम यही कामना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, अपने काम को अमली जामा पहनाते रहें और इससे भी कुछ और बड़े पुरस्कारों के हकदार बने। बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम तक पहुंचाने और सब तक पहुंचाने के लिए। बहुत आभार। नमस्कार।
0: नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास से बातचीत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए आप सुनते हैं संग्रहालय से इस कार्यक्रम में कामनी काय कांतारे इस धारावाहिक की 10वीं कड़ी।
3: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 10वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महालय छोड़ देते हैं, पैठार गांव के भोले भाले ग्रामीण उन्हें पुण्य पुरुष मान लेते हैं और अच्छी फसल होगी इसलिए उनसे खेतों में बीज छिटकवाते हैं। ग्रामीण युवती शची से उनका मिलन हो जाता है। अब आगे

0: ग्राम पैठार से राजा भर्तृहरि विदा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मार्ग में उन्हें एक भूत प्रेत का इंद्रजाल वाला गांव मिलता है। उससे बचकर भर्तृहरि आगे बढ़ते हैं। उन्हें चंद्रपुर जाना है। बादल खिर रहे हैं, वो सुरक्षित स्थान खोज रहे होते हैं। तभी एक कृषक उनसे कहता है,
1: जय महादेव पथिक, कहां से आगमन हो रहा है?
2: चला तो पैठार गांव से था, रात्रि विश्राम प्रेतपुरी के निकट एक ग्राम में हुआ। गंतव्य है चंद्रपुर। आगे का गांव कितनी दूर होगा?
1: चंद्रपुर गांव पर 2 कोस दूरी पर है। एक पांतशाला भी वहां है, जहां यदा कदा पथिक साथ ठहर जाते हैं। आप हमारे ग्राम में रुक ले, जब तक कोई स्थान न मिल जाए।
2: चंद्रपुर पहुंचना है, फिर वर्षा काल है, यदि पानी बरसने लगा तो जाना संभव नहीं होगा। कब तक रुकना पड़े? इसलिए जब तक वर्षा नहीं होती चलते रहना ही उचित है।
0: भर्तृहरि जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। भालुओं के गुर्राने की आवाजें आती हैं, वन पशुओं की भी आवाजें आती हैं। बादल गरजने लगते हैं और मेघ बरसने लगते हैं। पांतशाला के भीतर से एक व्यक्ति का भर्तृहरि को संबोधित करता हुआ स्वर उभरता है।
3: आइए, स्वागत है। आप बाहर भीग जाएंगे, पांतशाला में आप पहुंचे हैं। सही समय पर आए हैं आप। तनिक भी विलंब होता तो बुरी तरह भीग जाते। मैं 2 घड़ी पहले ही यहाँ पहुंचा हूं। मुझसे पहले ये महाशय यहाँ थे? वेशभूषा से वे खनस प्रतीत होते हैं। पहले से ही इसी मुद्रा में अविचल ध्यान मग्न बैठे।
4: कौन जानता है कि महादेव महाकारिणी किस काल के लिए क्या निर्धारित कर रखा है? सत्य का साक्षात्कार तो मैं भी नहीं कर पाया। क्या पता सत्य किसी बड़े महासत्य का अंश हो, और वो महासत्य उससे भी आगे परम सत्य का। कौन जानता है, हम सत्य को खोजते रहते हैं। ये वर्षा तेज हो रही है।
3: अब तो पांतशाला की छतें भी टपकने लगी। शीघ्र ही यहाँ पानी में भूमि गीली हो जाएगी, सोना भी कठिन होगा, भोजन व्यवस्था की संभावना भी नहीं रही। ऐसे में कौन यहाँ आएगा ये देखने कि पांतशाला के पथिक भूखे हैं? मैं समझता हूँ भयानक अंधेरा, दारुण अतिवृष्टि और भूख, यही काल रात्रि है।
4: हसो, और जोर से हसो, हसो। जो भूखा रहकर हंस सकता है वो भूख को भी जीत सकता है। अकालों में किसान इसी तरह मौत और भूख को हरा देते हैं।
0: तभी पांतवास के बाहर कुछ सैनिक घोड़ों पर सवार आते हैं। वो देखते हैं कि अंधेरा है और भोजन नहीं है, तो वो प्रकाश और भोजन की व्यवस्था करते हैं। फिर राजा भर्तृहरि से पूछते हैं कि वो कहां से आए हैं।
2: मैं पैठार ग्राम से आया हूं।
0: सैनिक अन्य पथिकों से इन महानुभाव की सेवा का ध्यान रखने को और आहार में कुछ बच जाने पर शेष को ले लेने को कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि तुम कृषक हो, भूख सह सकते हो, किंतु ये विप्र उसे सहन नहीं कर पाएंगे। ये कहकर सैनिक चले जाते हैं।
4: तुम लोग भोजन करके विश्राम कर लो, हम मेघ साधना करेंगे।
2: पर महाराज, थोड़ा बहुत आहार तो ले लें।
4: क्षत्रिय हो ना
2: देव, कैसे अनुमान लगाया?
4: इसीलिए, क्योंकि ये ब्राह्मण चुप रहा, इसे भूख ने घेर रखा है। अब मैं चलता हूं।
3: निकट लगता है योगा, आओ कुछ खा ले। जोगी तो खाएगा नहीं, जाने कहां चला गया है। घनघोर वर्षा की भी चिंता नहीं।
0: वर्षा रुक जाती है। प्रातःकाल का सूर्य उगने लगता है। मुर्गे की बाग, पक्षियों का कलरव, श्वान पशुओं के रम्हाने, मनुष्य के खांसने, बतियाने के स्वर उभरने लगते हैं। अचानक योगी की श्रृंगी कूकने लगती है।
5: राम महाराज, स्वागत है आपका।
4: तुम किस दिशा में निकलोगे?
2: चंद्रपुर जाना है महाराज।
4: चंद्रपुर? बहुत दुर्गम है मार्ग, अनेक नदी नाले हैं, वन व्याघ और तस्कर मिलेंगे, कहीं कहीं सैनिक गुप्तचर भी मार्ग रोकेंगे। गुरु का आदेश हुआ है कि ये दुर्गम मार्ग मैं तुम्हें पार कराऊंगा।
2: गुरु? कौन गुरु? आप मुझे जानते हैं वैखानस महाराज?
4: नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे गुरु जानते। उठाओ ये अपना झोली डंडा और निकल पड़ो हमारे साथ। मुझे लोग जोगी कहते हैं। ओगड़ जोगी ओगड़। और हाँ, मुझे बेखा नस्बत कहो, सिर्फ जोगी कहो, जोगी।
0: इतना कहकर जोगी चिंघाड़ उठता है। अलख अलख, गोरख गोरख। शंगी फूंकता है, तभी मेघ बरसने लगते हैं।
2: क्या हमें वर्षा रुकने तक की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए?
4: मत सोच, सोच मत, कुछ भी मत सोच। जो तेरे वश में नहीं है उसे मत सोच। जहां पहुंचना है उसी दिशा में चल दे।
2: चलिए महाराज।
4: हेलो,

0: मध्यान्ह काल हो गया और राजा भर्तृहरि तुम दो कोस भी पूरे नहीं कर पाए।
1: महाराज,

0: नाम कैसे जानते हैं?
1: हाँ, तो इस पर गुरु महाराज की कृपा है। मेरे गुरु भाई ने बताया है कि ये विद्वान है और किसी आवेश में ग्रह त्याग कर आया है।
0: गुरु भाई, कौन है आपके गुरु भाई? आपको ये सब कब बताया उन्होंने?
1: रात में जब पांतशाला में आया था, तो उन्हें जानता है, प्रेतपुर की प्रेतनी से उन्होंने तेरी रक्षा की थी गुरु महाराज के आदेश से। तू गुरु महाराज की धरोहर मूल्यवान वस्तु है।
0: और आपके गुरु कौन है, क्या मैं ये जान सकता हूँ?
1: बताऊंगा, वो भी बतलाऊंगा। अभी तो कई दिन हमें साथ रहना है भर्तरी, अभी तो चला चल, गति गति तनिक बढ़ा दे।
0: अवश्य महाराज, पाँव का छाला बहुत पीड़ाजनक है।
1: मेरे पाँव में तो कोई छाला नहीं।
0: आपको नंगे पाँव चलने का अभ्यास है महाराज।
1: तुझे भी हो जाएगा।

0: अब तो सूर्यास्त होने को आ गया राजा भर। भूख लगी होगी?
1: मैंने भी कुछ दिन ऐसे के संग बिताए हैं जिन्हें भूखे रहने का अभ्यास है।
0: फिर हम आज की रात निराहार ही बिताएंगे।
1: आपकी ये दूसरी निराहार रात्रि होगी।
0: जानते हो राजा भर्तरी, अन्न का भी एक मद होता है। मद गुरु ने बताया है, संसार में मद ही मद है। धन का मद, शक्ति का मद, रूप का मद, यौवन का मद। साधक को इन सब से विमुख होना पड़ता है और युक्त तो तभी हुआ जा सकता है जब इन्हें जान लिया जाए, उनका अनुभव हो तुम्हारे पास। क्यों, बात समझ में आई?
1: हाँ, कुछ कुछ समझ रहा हूँ जो।
0: आज की रात हम इस वृक्ष को अपना आश्रय बनाएंगे। अंधेरा हो रहा है, लगता है आसपास कहीं हिंसक पशु बैठे हैं। चलो चलो राजन, पेड़ पर बैठकर सुरक्षित हो ले।
1: हिंसक पशु तो मार्ग में भी अनेक मिले थे, किसी ने आक्रमण नहीं किया, हानि नहीं पहुंचाई। तो अब कैसा भय महाराज?
0: अरे वो तो मेरे गुरु भाई की कृपा थी, उन्हें वन्य जीवों को वश में करने की सिद्धि प्राप्त है। अब पेड़ पर चढ़ जा, गुरु कृपा से ये रात भर हमारी रक्षा करेगा।
2: चढ़ गया, मुझे अभ्यास है। तू ये सहारा ले ले, ले।
1: कुछ दिन पहले इसी तरह मैं वृकवन में जा पहुंचा था, तब इसी भांति बबूल के एक वृक्ष पर चढ़कर प्राण बचे थे। तब बबूल ने रक्षा की थी, आज ये पलाश। कितना असुरक्षित है मनुष्य।
0: न तो जन्म परवश है और न मृत्यु पर।
2: गुरु कृपा से ही सब जन्म और मृत्यु को वश में किया जा सकता है।
0: तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है राजा भर्तरी?
1: नहीं, पर आपने बताया नहीं कि गुरु कहाँ है, कौन है। आपने वचन दिया था कि बताएंगे, मैं जानना चाहता हूँ।
0: जानना ही चाहिए, जरूर जानना चाहिए। बोल, संक्षेप में कहूँ या विस्तार से?
1: यदि विस्तार ही अभिप्रेत है तो प्रारंभ अभी कर दें और क्रमशः कहते चले।
0: तेरा राजत्व अभी शेष नहीं हुआ, पा लेने की जल्दी है। किंतु मुझे क्या, अरे गुरु जाने ये तो।
3: अला अला गोरा।
4: जोगी की शृंगी के स्वर में वन्य जीवों की दहाड़ मिल जाती है।
0: सुन राजा भर्तरी, एक बार महायोगी मच्छिंद्रनाथ पर्यटन करते हुए बंग देश की नगरी चंद्रगिरी पहुंचे। वहां एक धर्मपरायण पंडित रहता था। उसकी सुंदर सुशील पत्नी सरस्वती देवी थी, किंतु निसंतान होने के कारण ये दंपति दुखी रहता था। भिक्षाटन के साथ समय योगी राज की भेंट इनसे हुई। परम गुरु मच्छिंद्रनाथ जान गए कि ये नारी अत्यधिक दुखी है। उन्होंने पूछा,
5: माता तुम्हारे दुख का क्या कारण है?
6: महाराज, यूं तो मैं सभी भांति संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ, किंतु निसंतान होने का दुख है। यदि आप अनुकंपा करें तो मेरा ये दुख दूर हो सकता है।
0: महायोगी ने अपनी झोली से भस्म निकाली और माता के हाथ पर रख दी और कहा,
5: इस भस्म को ऋतु स्नान के पश्चात खीर में मिलाकर खा लेना। तेरे यहाँ नारायण के अंश से उत्पन्न तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। अब मैं 12 वर्ष पश्चात ही यहाँ लौटूंगा।

0: महागुरु प्रसाद देकर विदा हुए। सहेलियों ने संदेह उत्पन्न किया, कहा भूल कर भी मत खाना भस्म को। अरे क्या पता कौन सा तंत्र मंत्र हो, जोगी था या बहरूपिया। अरे यदि भस्म से ही संतान जन्म लेने लगे तो संसार में कोई भी बांझ ना रहे। सुन रहे हो राजा भर्तरी, गुरु के अवतार की कथा। सोया है तो जाग जा, और जागता है तो फिर हुंका भर।
1: हाँ महाराज, जाग रहा हूँ।
0: बड़े गुरु ने भी हुंकारा भरते हुए सुनी थी अमर कथा, काल के महाकाल महादेव के मुख से। गुरु की कृपा से कोई कोई सुन पाता है, यार कोई अमर नहीं होता। ये संसार आने जाने का स्थान है, कोई अमर नहीं होता, हो नहीं सकता। अलख अलख तो राजन सुन, जितने मुंह उतनी बातें इस भस्म को लेकर। संदेह ने सबके विश्वास को गड़बड़ा दिया, ये संदेह बड़ा छली है। आत्मियों का संशय छल इतिहास रच देता है। तूने भी संशय के वशीभूत होकर गृह त्याग दिया है। तू गुरु के अवतार की कथा सुन, सुन रहा है ना?
1: हाँ हाँ देव, कहते रहिए।
0: संशय ग्रस्त माता ने बहकावे में आकर महागुरु की दी हुई भस्म को घूरे पर फेंक दिया और भूल गई, बांझ की बांझ बनी रही। उधर घूरे पर फेंका हुआ बीज भीतर ही भीतर अंकुरित होता रहा, और इस तरह 12 वर्ष व्यतीत हो गए। और 12 वर्ष पश्चात अपने वचन के अनुसार महायोगी मच्छिंद्रनाथ फिर द्वार पर थे, और उन्होंने पूछा,
1: माता तेरा पुत्र तो अब बड़ा हो गया होगा, दिखाओगी नहीं मुझे? क्या क्या भस्म निष्फल हुई, संतान हुई नहीं, अथवा होकर भी नहीं गई?
2: महाराज, संशयवश अविश्वास के कारण मैंने भस्म का उपयोग ही नहीं किया।

0: एक घूरे पर फेंक दिया था।
1: ओह, माता मुझे वहां ले चल। हे हरि नारायण सुपुत्र, आपकी उत्पत्ति हो गई हो तो कूड़े से बाहर आइए।
2: राजा राजा आवाज लगा, बोल अलख अलख, गोरख गोरख, बोल अलख अलख
3: अलख अलख, गोरख गोरख, अलख अलख।
2: कूड़े के ढेर से आवाज आई, मैं कूड़े के ढेर से दबा हूं, महायोगी मुझे निकालो, अलख अलख, गोरख गोरख,
3: अलख अलख।
2: समझ रहा है ना भर्तरी, सत्य घूरे में दबा रहता है तब तक जब तक कोई विरल आत्मा, महान आत्मा उसे खोज कर बाहर ना निकाले। यहां यही हो रहा था, घूरे के भीतर से आवाज आई। आवाज को सुनकर सबके सब गोबर कूड़ा हटाने में जुट गए। जब मलिनता स्वच्छ हुई तो वहां एक अत्यंत तेजस्वी रूपवान बालक निकला। महायोगी ने गाय के गोबर से उसकी उत्पत्ति का कारण उसका नामकरण किया गोरखनाथ।
1: गोरखनाथ चलो मेरे साथ।
0: प्रभु प्रभु कहाँ ले जा रहे हैं इसे? सुना है पुत्र के बिना सद्गति नहीं होती।
1: माता मैं क्या करूं, वो जो ऊपर बैठा है, सबके ऊपर बैठा है, वही संसार के खिलौनों को रचता है। जिस निर्विकार भाव से वो उसे रचता है, उसी निर्ममता से उसे तोड़ भी देता है। मैं भी एक खिलौना हूं और तू भी। विधाता ने तेरे भाग में पुत्र का सुख नहीं लिखा माता, पर तू मान ले कि तू ही गोरखनाथ की माता है।
4: वेश में आकर योगी शंगी को लगातार बजाता है।
2: बाबा मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ को संग लेकर निकल गए। राजा भर्तरि, गुरु के जन्म की कथा पूरी हुई।
5: किंतु कथा तो अभी शेष है महाराज। कथा तब पूरी मानी जाती है जब श्रोता के संदेहों का समाधान हो जाए। और
2: राजा तू सुशिक्षित है, विद्वान है, राजा को होना भी चाहिए। मैं ठहरा अनपढ़ मूढ़, उतना ही जानता हूं जितना गुरु ने बताया। गुरु की दी हुई दृष्टि से संसार को देखा और समझा है। मैं तेरे जैसा ज्ञानी नहीं हूं, पर गुरु कृपा से मैं इतना जान गया हूं कि किसी भी ज्ञानी के ज्ञान की सीमा एक जगह जाकर ठहर जाती है। इसके बाद वो आत्मतुष्टि के अभिमान के साथ जीने लगता है।
5: किंतु प्रश्न भी शेष है महाराज।
2: किंतु परंतु कुछ नहीं। तुझे वृक्ष पर सोने का अभ्यास तो होगा नहीं, चाहे तो यहां भी शैया का राजसुख भोग कर सकता है। मरकटों को यह सहज उपलब्ध है। मनुष्य ये गुण साधना से पाता है, यह भी एक साधना है, योग है। देख मैं सोकर बताता, तू जागने की साधना कर।
4: क्षण भर में ओंघड़ नींद में डूब गया। जागते रहे राजा भर्तरि अपने अनसुलझे प्रश्नों के साथ, जिज्ञासाओं और उत्सुकताओं के सिरहाने। देखते देखते मेघ फिर से घिराए, गर्जना और कौंध के साथ बूंदे टप टपा कर गिरने लगी। ओंघड़ उसी मुद्रा में सोता रहा। वर्षा थमी, तारे फिर झांकने लगे। कहीं सिंह गर्जा, कहीं सियार रोए, श्वानों ने ध्वनि की, पवन सनसनाया, बिलाव लड़े।

पौंगड़ सोता रहा। भरथरी जाग रहे थे और फिर रात भर की नहाई हुई उषा ने पूरब में अपने रक्ताभ कीले वस्त्र सूखने के लिए लटका दिए।

0: हलक अलक अलक गोरख गोरख भरतरी तू सो नहीं पाया रात भर। ये ले सिंगी और अलसाए वृक्षों बैलों घास जुड़वा उड़ने चलने सरकने वाले सभी जीवों को चेतन कर दे। फूंक मार इस सिंगी को और बोल अलख गोरख गोरख। जगत को जगाना है और संसार के नियम भय से मुक्त नहीं हो पाया, फिर भी बजा फूंक मार दे सिंगी में, बंधन तभी छूटेंगे, बजा।
1: जंगल जाग उठा जैसे श्रृंगी का स्वर एक आह्वान हो, जागरण का अभियान। नीरों में पांखी पहले तो कुनमुनाए, फिर आंखें खोली और चहकने लगे, सिंदूरी सूर्योदय का स्वागत करे।
0: चलो आगे, चंद्रपुर अभी शेष है, अभी दूर है राजा।
1: आगे एक वन नदी पड़ी, यौवन में उफन कर बहती हुई वर्षा के जल से पुलावित ऐसी नदी बहुत तीव्र होती है। वो अभी प्रहर भर ही चले होंगे। भरथरी को चलने में उतना कष्ट न था, किंतु जब तलवों के नीचे कोई नोकीली वस्तु आ जाती तो व्रणों की पुरानी पीर उभर आती। पंख और फिसलन तो थी ही, जीवन में कुछ ना कुछ प्रतिकूल होता ही है, सर्वदा सब कुछ अनुकूल नहीं होता। नदी ने भरथरी और औंघर का मार्ग रोक दिया था।
2: अब क्या जोगी?
0: केवल केवल प्रतीक्षा। यदि पानी नहीं बरसा तो नदी पहर भर में पार जाने योग्य हो जाएगी।
2: तब तक क्या करेंगे?
0: कहा ना, प्रतीक्षा, केवल प्रतीक्षा। कभी कभी मनुष्य के हाथ में केवल प्रतीक्षा रह जाती है। ये जीवन का क्षयक है राजा भर्तरी। गोरख गोरख अलग अलग।

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 10वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार शीलू अस्थाना, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, सरस्वती कीर्ति कुलश्रेष्ठ, मच्छेंद्रनाथ अब्दुल रजाक सिद्दीकी, कृषक वी आर ढोके, जोगी मांगीलाल, पथिक तनवीर अहमद और ग्रामीण श्याम मुंशी। परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ठौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना कामिनी काय कांतारे का 10वां भाग। डीटीएच का प्रसारण इस वक्त आप सुन रहे हैं।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड कल प्रसारित होगा। यह कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा है कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न हुई स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कहा कि उनका 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनकी अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत भारत के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेन्स हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पहला पदक हासिल करने वाले झंडू कुमार को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे जल संचय के विषय में और विद्यांजलि पोर्टल के बारे में। साथ ही होंगी कुछ अन्य जानकारियाँ और सुनवाएंगे कुछ गीत भी। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जल है तो कल है, इसके बावजूद भी जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। दोस्तों, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल संरक्षण से ही है। हम हमेशा से सुनते आए हैं, जल ही जीवन है, जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमूल्य संसाधन है जल, या यूं कहें कि यही सभी जीवों के जीने का आधार है। दोस्तों, धरती का 97% पानी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें से 2% पानी ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में 1% पानी ही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, जल संचय और जल संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को व्यर्थ होने से रोकना, भूजल स्तर को बढ़ाना और दैनिक उपयोग में पानी की बर्बादी को कम करना है। दोस्तों, पानी को बचाने और उसका सही उपयोग करने के लिए कई व्यवहारिक तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे वर्षा जल संचय, छतों के पानी को पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर बने टैंकों, गड्ढों में इकट्ठा करना। इससे भूजल स्तर बेहतर

बेहतर होता है। तालाब और कुओं का जीर्णोद्धार, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों की साफ सफाई करके उन्हें फिर से उपयोग लायक बनाना, खेतों में मेड़बंदी और फार्म पॉन्ड, टपक सिंचाई,

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन जैसे राष्ट्रव्यापी अभियानों का मुख्य उद्देश्य वर्षा की हर बूंद को बचाना और नागरिकों को जागरूक करना है। जल संचय केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि इसमें आम जनता, एनजीओ और उद्योगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से।

दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी भारत सरकार की एक अनूठी पहल विद्यांजलि पोर्टल के बारे में, जो समुदाय और निजी क्षेत्र को सीधे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से जोड़ती है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक, एनजीओ या कॉरपोरेट संस्था अपनी स्वेच्छा से स्कूलों में ज्ञान, कौशल या आवश्यक संसाधन जैसे उपकरण या सामग्री आदि दान कर सकती है। विद्यांजलि पोर्टल का मुख्य उद्देश्य स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए समाज की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस पोर्टल पर योगदान करने के लिए मुख्य रूप से दो वर्ग बनाए गए हैं। पहला, सेवाएं और गतिविधियां, जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन और करियर काउंसलिंग, योग, खेल और व्यावसायिक कौशल सिखाना, भाषा पढ़ाना और दिव्यांग छात्रों की सहायता करना। और दूसरा है, स्कूलों को बुनियादी ढांचा, पुस्तकालय के लिए किताबें, खेल का सामान, कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण दान करना। दोस्तों, इस पोर्टल का उपयोग भारत के नागरिक, प्रवासी भारतीय, सेवानिवृत्त शिक्षक और अधिकारी, युवा पेशेवर और एनजीओ, साथ ही यूडाइस कोड वाले सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कर सकते हैं। दोस्तों, विद्यांजलि का सीधा अर्थ है ज्ञान का अर्पण। ये देश भर के नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में अपना प्रत्यक्ष योगदान देने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करता है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत लगान फिल्म से ए आर रहमान और श्रीनिवास की आवाज में।

0: दोस्तों, डॉक्टर बनना बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना होगा और इस सपने को पूरा करने के लिए वो नीट की परीक्षा की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज हम युवा श्रोता समीर सोनी से नीट की परीक्षा के बारे में जानेंगे, जिन्होंने हाल ही में रीनीट परीक्षा 2026 क्वालिफाई किया है।
1: हेलो एवरीवन, मैं समीर सोनी हूँ। मैं रीवा एमपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने हाल ही में नीट और रीनीट का एग्जाम दिया है। अभी रिसेंटली नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है। आज मैं आपसे अपने नीट की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो होपफुली मेरे जर्नी से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूँगा कि नीट टफ एग्जाम है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत बार लगता था कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे कम्प्लीट होगा, कभी मार्क्स कम आते थे, कभी कॉन्फिडेंस लो होता था, लेकिन इन सब जर्नी में मैंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी, एंड दैट वाज द की ऑफ माय सक्सेस। सबसे बड़ा रोल मैं अपने मम्मी और अपने पापा को ही दूंगा, क्योंकि जब भी मेरा कॉन्फिडेंस लो होता था या मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझसे नहीं होगा, तब उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया, मुझे एक होप ही दी है। उन्होंने कभी मार्क्स का प्रेशर नहीं दिया, बस इतना बोला कि मेहनत होनेस्टी से करो और रिजल्ट अपने आप आएगा। आज अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का ही है। अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो होनेस्टली मुझे फिजिक्स से सबसे ज्यादा पसंद थी। मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना और कॉन्सेप्ट समझना काफी

0: लगता था। बायो और केमिस्ट्री मुझे स्टार्टिंग से थोड़ी हार्ड लगती थी, लेकिन मैंने उन सब्जेक्ट से भागने की जगह उन पे ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट किया। बहुत लोग पूछते हैं कि थ्योरी ज़्यादा पढ़ें या न्यूमेरिकल्स, मेरे हिसाब से हमें दोनों को बैलेंस करना चाहिए। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में थ्योरी और एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग रखो, और फिजिक्स में जितना हो सके उतने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इसलिए सिर्फ रटना इनफ नहीं होता है। डॉक्टर बनने की मोटिवेशन भी मुझे सबसे ज़्यादा अपने मम्मी पापा से ही मिली। उनका सपना था कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूं और उनका नाम रोशन करूं, और मेरे पूरे ब्लड लाइन में कोई डॉक्टर नहीं है, सो एक सपना मेरा वो भी था। जब पढ़ते पढ़ते मैं थक जाता था, डीमोटिवेट हो जाता था, तो बस उनके बारे में सोचता था, फिर मुझे दोबारा पढ़ने बैठ जाता था। मैं ज़्यादातर टाइम एमसीक्यूज करता था और 2 वीक में एक मॉक्स दे देता था। आखिर में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कभी भी हार मत मानिए, कंसिस्टेंसी रखिए, अपने मिस्टेक से सीखिए। जब गोल क्लियर हो और फैमिली की सपोर्ट साथ हो तो कोई भी एग्ज़ाम इम्पॉसिबल नहीं लगता। और आज के ज़माने में, आज के टाइम पे यूथ का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है फ़ोन। सो मैं सबसे कहूँगा, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, आप अपना फ़ोन अवॉइड करिए। एक साल फ़ोन टच नहीं किया, इवन मैं अपने पेरेंट्स से भी महीने में एक बार बात करता था, वो भी 30 to 60 minutes ओनली। सो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। एंड थैंक यू और ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सपने जरूर पूरे करेंगे और एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। अपने नाम के आगे डॉक्टर का टैग भी तो लगाना है ना।
1: दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ, हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी खराद कला के बारे में। खराद कला लकड़ी को खराद मशीन पर तराश कर सुंदर और आकर्षक कलात्मक वस्तुएं बनाने की एक पारंपरिक कला है। इसमें लकड़ी को मनचाहे आकार में ढालकर उस पर लाख और प्राकृतिक रंगों से नक्काशी और पॉलिश की जाती है। ये कला अपनी विशिष्टता, इतिहास और तकनीक के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रसिद्ध है। दोस्तों, कास्ट खराद कला के माध्यम से खिलौने, रसोई के बर्तन जैसे बेलन, चौकी, ओखली, सजावटी सामान, शतरंज की मोहरे और फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये शिल्प मध्य प्रदेश के श्योपुर और सीहोर और राजस्थान के उदयपुर में बहुत प्रसिद्ध है। उदयपुर में इस कला का इतिहास 250 साल से भी अधिक पुराना है, जहाँ मुख्य रूप से खिरनी की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बुनाई खराद में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बकरियों और ऊँटों के ऊन से हथकरघे पर बुने गए मोटे और मजबूत आसनों, कालीनों और वॉल हैंगिंग को खराद कहा जाता है। बुनाई खराद कला का मुख्य क्षेत्र गुजरात का कच्छ है। दोस्तों, खराद की बनावट बहुत ही विशिष्ट होती है। ये मजबूत होती है और लंबे समय तक चलती है। एक खराद आसानी से लगभग 100 साल तक चल सकती है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत हाईवे फिल्म से सुल्ताना और ज्योति नूरा की आवाज में।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है? आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaadiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त ईशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर

0: बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
0: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल ध्यान, राह हो जाएगी आसान।
2: ए भाई दर्द

दिल चाहता है फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं शंकर महादेवन, शान के की, और गीत था जावेद अख्तर का, तर्ज़ बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज़ में तेरी नाम फिल्म का ये नगमा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए आप आपको सुनवाते हैं कल होना हो फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं अलका याग्निक और शान ने, गीतकार हैं जावेद अख्तर और तर्ज बनाई शंकर एहसान लॉय ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सीजेपी का प्रदर्शन समाप्त हो गया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों को सहानुभूतिपूर्वक मान लिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड कल प्रसारित होगा। यह कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून का मजबूत सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिससे अगले 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और हरारे में 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर में 4 विकेट पर 196 रन बना लिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी का 6वां भाग। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं करगिल विजय दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह पर केंद्रित कार्यक्रम।
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आज सुनते हैं करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: नमस्कार। एक ऐसे योद्धा की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में 15 जुलाई 1999 का दिन पुनर्जन्म दिवस या अमृत दिवस के रूप में आता है। करगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जब मौत मोर्टार बनकर गिरी, शरीर पर दर्जनों चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद हौसला नहीं टूटा। लगभग मुर्दा घर से वापस लौटकर भारत के पहले ब्लेड रनर बने, करगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मैराथन दौड़ी, कई पदक जीते और आसमान से छलांग लगाकर पहले सोलो स्काई डाइवर होने का गौरव भी हासिल किया। हजारों दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। स्वागत कीजिए करगिल वॉर के हीरो, भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह जी का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जय हिंद, सबको नमस्कार, राम राम।
3: कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका बचपन था, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर उससे आगे बढ़कर जब आप कॉलेज में गए, तो पहली बार कब एहसास हुआ या कब विचार आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? क्या परिवार के किसी लोग ने आपको प्रेरित किया या दोस्तों के बीच ऐसा माहौल था कि दोस्त कह रहे थे कि आपको सेना में जाना चाहिए? वो कहानी थोड़ी सी बताइए।
4: मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, जगाधरी के पास, और मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो अब जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, रुड़की, जो IIT रुड़की के लिए मशहूर है, वहाँ पे हुई है। कॉलेज में प्राइवेट किया है। और रही बात प्रेरणा स्रोत, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मेरे जो दादाजी थे वो वहाँ पर आर्मी का एक सेंटर है उसमें सेवा करते थे, वो अकाउंट्स में थे CDA में, उनके साथ मैंने बचपन बिताया अपना, क्योंकि मेरे पिताजी दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, वो बॉर्डर रोड्स में सेवा कर रहे थे। तो दादा दादी के पास रहते हुए जो एक जीवन था वो बड़ा डिसिप्लिन वाला और सख्त था, लेकिन नाना नानी के पास जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो बड़ी मस्ती होती थी। तो वो जो बच्चा दूसरी क्लास में उनके पास रहता था उसको थोड़ा सा अटपटा लगता था, और डिसिप्लिन में किसको रहना पसंद है। तो एक दिन मैं ये सोच के कि यार नानी के पास ज्यादा मस्ती होती है, घर से भाग गया। और जब मैं घर से भागा तो उस रुड़की की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि किसी जानने वाले ने मुझे पकड़ा, साइकिल पे बिठाया और वापस अपने घर के बाहर छोड़ दी। तो जिंदगी का मेरा वो पहला यू टर्न था, और उस पहले यू टर्न में मैंने सबक लिया था कि भाई डीपी सिंह, जिंदगी में आप अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते। जहां हो, जैसे हो, वहां पर आपको अपने परिश्रम से, अपने बल से ऊपर उठ के जीना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला यू टर्न था, इसने मुझे बाद में जब मैं युद्ध में घायल हुआ, जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापस आया घर तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहना है, ठीक है, अब डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन वाले एंगल से ही चलेंगे। और मेरे दादा दादी ने मुझे जोड़ दिया था गुरुद्वारे से, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फौज में ऑफिसर बनने की 8वीं क्लास में ही ठान लिया था, जब मैं भाग के गया था और घर में जो वापस ला के छोड़ दिया गया था। तो एक क्लैरिटी आ गई थी तभी कि भैया जिंदगी जीनी है तो फौज में अफसर बन के जीना है।
3: मेजर साहब, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 7 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन होना और भारतीय सेना की वर्दी पहनना, कितना गर्व का पल था, क्या इमोशंस आपके जहन में चल रहे थे उस समय?
4: बिल्कुल, बहुत गर्व का पल था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो। पहले एनडीए में फेल हुए, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, एनडीए में 3 बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि

0: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला? क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई, परिवार के लोगों का क्या कहना था, या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था, थोड़ा बताएं उसके बारे में।
1: देखिए, उन दिनों इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे, सिर्फ चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया, 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी। तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज यंग ऑफिसर्स को फिर कमांडो कोर्स करने में बीत गया था। और सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेने के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो तब तक मेरी पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से कि आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है, और हमें खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या टीवी भी नहीं होते थे। और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड थे तो वहाँ पे समाचार पत्र भी जो 3-4 दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था 3-4 दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही, उन दिनों 24 साल की मेरी उम्र थी और युद्ध शुरू हो चुका था, तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है। हम तो तैयार थे सबके सब।
0: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया, कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थीं और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था। थोड़े आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे?
1: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मशको। उस क्षेत्र में आके उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में। वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था, उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी। तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं एक नूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी। और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण, नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी। और जैसे आजकल आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है। तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी, पीछे से सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था। लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबाइलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे उनका जीना बड़ा आराम रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में भी मैंने देखा कि सिविलियन जो गाँव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे। तो जीवन जो था वो सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले ही वो सिविलियन हो, लेकिन हम डटे हुए थे क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज ने हमें दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
0: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे थे, 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा, उसकी सुबह कैसे हुई थी, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था?
1: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसू साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15

0: जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी। लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को। मेरे उठने पे बैठने पे नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन, कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई। दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता है उस आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा आगे गिरेगा कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई। वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर। 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था। तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहूलुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रास्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार मृत घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूँ, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है। जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र, तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि सैनिकों में वो 4 जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका ऑफिसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया। रास्ते में वो स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे आरएमओ, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डिक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगे के ले जाओ इसे बोला गया, लेकिन हम भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल राजिंदर सिंह जो डॉक्टर थे। वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाजा था
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी है, ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो एमएच अखनूर में उस समय उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला। वो थे तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहाँ से वो कैसे बचा के ले आए वापस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, अनिस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पाँव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं, उससे ज़्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी होंगी। तो बच तो गया था। वो कर्नल राजिंदर सिंह उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी, मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई। वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन, एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला, तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहाँ पे मिला और जाके मैंने उनके पाँव छुए, गले मिला, और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का सैनिक से मिलाप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं, परेशान करते होंगे आज भी।
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं, 73 ऐसे टुकड़े हैं। उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे तंकरना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसे जगह हैं, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक, तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने उन वो तो तंग करने से नहीं हटे, लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए, वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने के बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीज़ें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं, सब कुछ बेहतर कर सकता हूँ?
0: ये बहुत अहम सवाल है और मैं कहूँगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक, जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने के बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पहला जो विचार था उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉयस विचार था, क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है, ये एक चैलेंज है, शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी ज़िंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी उसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊँगा तो खुल के जीऊँगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूँ कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो शायद भगवान की दी हुई सोच थी और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरे तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी।

0: हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं मेजर साहब। जब आप 1 साल से ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहे, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
0: तकरीबन 1 साल मैं हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था, हॉस्पिटल में मेरे जैसे 5 जने थे। हम किसी की टांग नहीं थी, किसी की आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख और हाथ दोनों नहीं थे, लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमरेडरी ने एक दूसरे का सहारा बन के कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम है। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं या फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं 4 कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मेंटल हेल्थ और PTSD के बारे में जरूर बात करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माई केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीज़ों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद्व था मेरा, मेरे पास की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीज़ों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद 21 किलोमीटर भाग के आया। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो।
1: जी
0: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया। और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, NGO है, द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3,500 एम्पुटीज कनेक्टेड हैं,
1: जी
0: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखा, जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उनमें से बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खास कर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी,
1: जी
0: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो बदलाव आया और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम

0: फेंकता, चोटिल होता ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
1: बहुत ज्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
0: 3 बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था, तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को काफ़ी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ डीपी, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए। तो मेरे को 2011 में एजी ने भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में मेजर डीपी सिंह सेवानिवृत्त को दिया गया, और वहां से मेरे को ब्लेड रनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे, तो 2018 को सेना ने एयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था, और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जाम्पल जगह जगह पे जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ दिस सोल्जर, जो कि 100% डिसेबल है उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई नोट पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है उन्होंने मुझे 1 महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य काफ़ी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिए, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है, चाहे भले बूढ़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल रहा है, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं, और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।

0: ऑन आकाशवाणी,
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
2: समीन आदम, मैं आपका मेजबान तारिक राठौर एज डायरेक्टर न्यूज एंड हेड ऑफ आर एन यू आपका खैर मकदम है। तो आज आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो है एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो वक्त है उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एकेडमिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही हैज बीन द एकेडमिक इन इंग्लिश कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज सीनियर मोस्ट टीचर रिटायर होने के बाद। इसके साथ साथ वो उनका जो करियर रहा है, उनका जो प्रेजेंस रही है ऑन द लिटरेरी एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक साहब एक बड़ा ऐसा नाम है जिनका नाम सामने आते ही स्टूडेंट्स हैं, एकेडेमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं और लैंग्वेज आने वाले लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, लिटरेचर से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ विद ऑल रेस्पेक्ट लव फॉर प्रोफेसर शफी शौक साहब। तो आज हमारे स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे ट्रेडी सफर का। सबसे पहले मैं प्रोफेसर शफी शौक साहब आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आपका खैर मकदम है सर।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया।
2: प्रोफेसर शौक साहब, हम मुख्तसरन हमारे जो लिसनर से हम आपकी जुबान से ही जानना चाहेंगे कि आप जिंदगी का सफर, एजुकेशन का सफर किस तरह से चला, यहाँ इस लैंडस्केप में आप एक बहुत ही आला मकाम पे आ गए, पद्मश्री अवार्डी आप हैं, इसको आप कैसे हमारे सामीन हमारे लिसनर्स को उन तक पहुँचाना चाहिए।
3: मेरी जिंदगी का, मेरे अदबी सफर का और मेरी तालीम का जो सफर है वो किसी खत मुस्तकीम से नहीं चला, एक लीनियर प्रोग्रेशन से नहीं चला, बल्कि बहुत ही ज़िगज़ैग तरीके से करूँ और अपने जो मैंने सोचा था करूँ वो नहीं हुआ। पूरी नाकामियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन वही नाकामियां मेरी कामयाबी बन गई। ये अजीब इतफाक है कि मसलन मैं स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने गया था घर से बाहर, गांव में जिया हूँ तो इन्हें एग्रीकल्चर के लिए मुझे भेजा गया, लेकिन फिर बीएससी बायोलॉजी में किया, बायोलॉजिकल साइंसेस में, लेकिन वहाँ नाकामी ये हुई कि मेरा अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ ही एकदम बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए वो 3 साल का, फिर जो ही फारिग हुआ बीएससी से तो सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में मैंने एडमिशन ले लिया, कोई 1976 की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी के कुछ इम्तहान पास किए हैं, फारसी में कुछ इधर उधर हाथ मारा, यानी कि कहीं एक सिमत में नहीं रहा। अंग्रेजी अदब पर्टिकुलरली मेरा चॉइसिस्ट फील्ड था। मैं साइंस में तालीम हासिल करते वक्त भी अंग्रेजी के बारे में लिखता रहा, अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता रहा या कश्मीरी से ट्रांसलेट करता रहा अंग्रेजी में, वो चीजें छपती रही, लेकिन साथ साथ बहुत सारी अजीब तरह की दिलचस्पियां रही। मैंने मसलन कश्मीरी जबान का पहला ग्रामर लिखा जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में ही मैंने पहली बार एक जर्नल भी स्टार्ट किया, खुद ही अपने हाथ से कलम से लिखता था, उसका नाम था आश। और फिर लाल चौक में आकर शोपियान से अनंतनाग से लाल चौक में वो बेचता, उसे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट शुमारा छपता। लेकिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में रहकर मेरी मुलाकात कश्मीर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लोगों से हुई, जिनमें प्रोफेसर अमर राही, प्रोफेसर हामदी कश्मीरी, डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद वगैरह वगैरह, ऐसे काजी गुलाम मोहम्मद, ऐसे लोगों से उठना बैठना रहा। मैं तो स्टूडेंट था लेकिन वो मुझे पहले ही जानते थे, क्योंकि वो मैगजीन जो मैं छापता था उसकी वजह से वो मुझे जानते थे। और इसी रेडियो स्टेशन से मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते थे, अद्भुत मबास में हिस्सा लेता था, इस वजह से भी वो मुझे जानते थे, यानी कि एक तालिबे इल्म की हैसियत से भी मुझे वो हौसला।

0: बड़े लोगों के साथ उठना बैठ रहा और इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा माहौल था। अभी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर एम एस वॉन थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उसके साथ साथ प्रोफेसर जे रमन साहब थे, मेरे दोस्त भी थे और मेरे टीचर भी। आज तक जो टीचर्स मैंने देखे उन सब में वो सबसे अच्छा टीचर था, तो उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रहा। प्रोफेसर ए एन धर साहब जो मेरे सुपरवाइजर बन गए एम फिल और पी एच डी में, पहले जय रमन साहब थे, मैंने वहीं से एम फिल भी किया पी एच डी भी किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि माय प्रोग्रेशन हैज नॉट बीन क्वाइट लीनियर इन स्ट्रेट डायरेक्शन, मैंने उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तो उसको कायम करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की कि यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट होना चाहिए। उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट बन गया और जब मैं इंग्लिश में, मुझे ही ये काम सौंपा गया कि मैं उसका पहला टीचर बन गया, पहला रेगुलर कश्मीरी टीचर। हालांकि कश्मीरी में मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन मेरी किताबें थी,
1: राइटिंग थी,
0: मसलन उनको और कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर मैंने ही लिखा था, कश्मीरी ग्रामर मैंने ही लिखा था वगैरह वगैरह, और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन ये भी मैंने ही लिखा कश्मीरी में, और भी कई किताबें मेरी पहले थी स्टूडेंटशिप के दौरान ही। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि मुझे यूनिवर्सिटी के शोबे कश्मीर का पहला लेक्चरर इन दिनों हुआ करता था, तो मुझे रेगुलर लेक्चरशिप मिल गई।
1: रिपब्लिक डे 26 जनवरी को कॉन्फर किया गया पद्मश्री, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन? क्या आपके जहन में ये था कि पद्मश्री आपको कॉन्फर किया जाएगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए और भी बहुत काम करना पड़ता है पद्मश्री के लिए। इससे पहले मुझे बड़े बड़े एजाजत मिले हैं, साहित्य अकेडमी के कई अवार्ड में स्टेट अवार्ड भी मिला है वगैरह वगैरह, मुझे बहुत सारे कंट्रीज का दौरा करना पड़ा। लेकिन ये जो है पद्मश्री, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा। लेकिन रिपब्लिक डे से पहले मुझे होम मिनिस्ट्री से कॉल आ गई, एक दो दोस्त हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा कि खुश रहिए, जब मिला बहुत खुशी हुई, लाजम खुशी हुई।
1: प्रोफेसर साहब, आपने एक नुक्ता इसमें उबारा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जैसे समबडी हैज टू फाइल एन एप्लीकेशन या नॉमिनेशन, जैसे आपने कहा कि मैंने कभी इसके लिए इस तरह कोई पहल नहीं की, आपको क्या लगता है एज ए लिटरेरी पर्सन, एज ए राइटर, एज एन ऑथर, एज एन इंटेलेक्चुअल, क्या ऐसा सिस्टम सही है या होना चाहिए कि somebody would in any field, in any sector, in medicine, in engineering, in research, in literature, in all areas of, you know, our day-to-day life, governance system, structure जो है, क्या अप्लाई किया जाना चाहिए या खुद सरकार या जो इंस्टीट्यूशंस है कंट्री में उनको खुद देखना चाहिए ऑन द बेस ऑफ वर्क? किस तरह का आप समझते हैं एज एन इंटेलेक्ट, एज ए राइट?
0: मैं समझता हूँ कि वन मस्ट नॉट स्ट्रगल हार्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ ऑनरे अवार्ड, ये तो बहुत ही प्रेस्टीजियस है। सो द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट सर्कल्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स, दे मस्ट टेक द डिसीजन टू चूज द राइट पर्सन।
1: ओके, प्रोफेसर शौक साहब, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग बाय human being, where from this mode of expression has originated? तो आप क्यों लिखते हैं, आपने क्यों लिखना शुरू किया पहले से?
0: It is a matter of introspection when I think how did I write and why did I write? इस एज में पहुंचकर जो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी इन इटसेल्फ इज एन इंस्टिंक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। क्रिएटिविटी बचपन से ही पैदा होती है, प्लेफुलनेस, जो प्लेफुलनेस बचपन की है, बनाना, बिगाड़ना, तोड़ना, मरोड़ना वगैरह और फिर से नया बनाना, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो इंस्टिंक्चुअली कुछ काम करने से ये है कि सबसे पहले जो इन्वॉल्व्ड है पर्सन हु क्रिएट्स, ही गेट्स सम काइंड ऑफ प्लेजर इन मेकिंग एंड रिशेपिंग, एंड वही बेसिक पर्पस है। फॉर इंस्टेंस फॉर मी, वेदर आई राइट इन इंग्लिश और कश्मीरी और हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, इट गिव्स मी अ सॉर्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन दैट आई एम इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ राइटिंग। आई एम द फर्स्ट रीडर ऑफ माई राइटिंग, आंसरेबल टू माई सेल्फ। आई असेस माई राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, आई बिकम द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ माई राइटिंग। तो ये अलग बात है, फिर मुझे कोई पढ़ने वाला मिले या ना मिले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है, जिनका कोई रीडर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा लिख के गए हैं इस दुनिया से। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हर किसी शायर को, नावल निगार को, अफसाना निगार को, ड्रामा नविस्ट को, ये देखना है कि इज इट सेटिस्फाइंग द क्रिएटर्स ओन इंस्टिंक्ट टू क्रिएट और नॉट। इफ इट डज नॉट, देन इट मीन

0: स्वयं के सामने रखने से पहले खुद ही एसेस करना पड़ता है। और ऐसा भी है, बहुत सारे लोग बेनाम ही मर जाते हैं, तो बेनाम ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे क्रिएटर्स हैं। तो ये क्रिएटिविटी, अगर इसको हम कहेंगे ये इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्चुअल प्रोपेंसिटी है, राइट फ्रॉम द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट फ्रॉम कमिंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ होमो सेपियंस, दिस हैज बीन एन इंस्टिंक्ट विद मैन। चाहे वो गारों में रहा, चाहे वो जंगलों में रहा, रेगिस्तानों में रहा, पुराने जमाने के क्रिएटिव लोगों की चीजें आज भी स्कल्पचर है, उनकी पेंटिंग्स हैं, उनकी राइटिंग्स हैं, अब भी उनका आनंद लेते हैं। लेकिन ये कि ये पूरा ह्यूमन एक्सप्रेशन है क्रिएटिविटी।
1: हिस्ट्री भी इसमें है कि इंसान का पहले से इंस्टिंक्ट रहा है। क्या आपको लगता है कि एज अ राइटर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इन द लाइफ आपको लोग जो पढ़ते हैं या पढ़ते थे, आपको किस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता था?
0: सबसे पहले हम अपने आप हो जाए लिखने से, कुछ क्रिएट करने से, तो वो बड़ी कामयाबी है। लेकिन उसके साथ ये भी है, वरना कोई छापता ही नहीं, पब्लिश ही नहीं करता। पब्लिश इसलिए करते हैं कि कोई और भी इस दुनिया में हो जो मेरे एक्सपीरियंस में शरीक हो, शामिल हो, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कोई और समझे,
1: रीडर जो आपका होगा,
0: रीडर होगा, या अगर कोई सिंगर हो, कोई सुनने वाला हो, अगर कोई पेंटिंग करता है तो कोई देखने
1: वाला,
0: तो इसी तरह स्कल्पचर वगैरह में भी फाइन आर्ट्स है, उनमें यही है, क्रिएटर के अलावा कोई और इसमें शामिल हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी को बहुत सारे रीडर्स मिले, और मिलते भी नहीं। अगर हम किसी बड़े से बड़े राइटर को भी लें, दुनिया के सबसे अजीम, बस मैं समझता हूँ मेरे लिए सबसे अजीम दुनिया का राइटर जो है वो विलियम शेक्सपियर है। सब उसका नाम जानते हैं, कोई दुनिया में है ही नहीं जो भी एजुकेटेड है जो उसका नाम,
1: विलियम शेक्सपियर को उनके नाम को नहीं जानते,
0: उसके काम को कौन पढ़ा है। बहुत सारे लोग, उसके इतने दर्जन ड्रामास हैं, उनको किसने पढ़ा है? किसी एक ने एक प्ले पढ़ा, किसी ने एक चैप्टर पढ़ा, किसी ने एक सीन पढ़ा, कुछ डायलॉग्स याद किए, इतना ही मिल गया उसको। और शेक्सपियर को खुद क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो ये कि अपनी जिंदगी उसने बहुत ही फायदेमंद तरीके से गुजारी, कि वो क्रिएट करता रहा और खुश होता रहा। वही खुशी जब वो एक्सटेसी मिलेगी अपने आप को, क्रिएटर को, वो बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम है।
1: प्रोफेसर साहब, बीइंग एन ऑथर एंड राइटर, आपको क्या लगता है जिंदगी में किस तरह का पर्पस आपको लगा एज राइटर? आपको फीलिंग है आज की तारीख में?
0: न सिर्फ ये कि मैं अपने दुख दर्द और अपने तजुर्बात का इजहार करूं, बल्कि मैं एक जमाने में रहता हूं, किसी जगह रहता हूं। सबसे पहले मैं अपने घर में रहता हूं, फिर अपने मुल्क में रहता हूं, अपनी रियासत में रहता हूं, और इस दुनिया में रहता हूं, 21वीं सदी में रहता हूं। मेरा अकेलापन बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। मेरी एग्जिस्टेंस जो है, मेरा वजूद जो है, इज इन रिस्पॉन्स टू अदर इंडिविजुअल्स ऑफ दिस 21st सेंचुरी लिविंग इन सरफेस ऑफ द ग्लोब। उन सबके साथ मेरा ताल्लुक है जिनको मैं जानता नहीं, लेकिन एज राइटर, सेंसिटिव राइटर, वो आंसरेबल है, चाहे वो अमेरिका में हो, कहीं भी हो, उन सब लोगों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए। जो रिश्ता है अपने जमाने और स्पेस एंड टाइम के साथ रिश्ता है, वही रिश्ता, उस रिश्ते की बिना पर हम अब एक दूसरे के दुख दर्द समझते हैं और शरीक हो जाते हैं, चाहे उसके बारे में डायरेक्टली लिखें या ना लिखें। लेकिन जब भी मैं अपनी बात करूंगा, अपने एग्नीज और अपने पेन के बारे में लिखा, वो मेरा इंडिविजुअल पेन, मेरी इंडिविजुअल एग्नी नहीं, बल्कि पूरे 21वीं सदी के इंसान की मुसीबत है, उसका अजाब है, उसका तन्हाईपन है, वो लोनलीनेस है जो हमको मिली 21वीं सदी में। लोनलीनेस और सेंस ऑफ एलिनेशन को जब मैं बहुत ही इंटेंसिफाई करके लिखता हूँ, तो वो यूनिवर्सल खुद ही बन जाता है। उसको और लोग भी समझ सकते हैं कि ये, हाँ, ये आज से 200 साल पहले नहीं लिखी जाती ये बात, हाँ, ये कोई 14वीं सदी में कोई ऐसा नहीं कहता, या 14वीं सदी में आज की बात नहीं हो सकती है। ठीक है, जो ह्यूमन वैल्यूज है वो यूनिवर्सल है, फ्री फ्रॉम टेम्पोरल लिमिटेशन है, लेकिन जो आज मैं लिखता हूँ वो मेरे आज के जमाने की तर्जमानी करता है। वो सारा अदब जिसमें ये तर्जमानी ना हो, अपने जमाने और मकान और अपने माहौल की कोई आकाशी नहीं हो, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा अदब नहीं है। ठीक है, हम लिरिसिज्म को पसंद करते हैं, लेकिन खाली लिरिसिज्म, मौसीकी और

0: तरन्नुम की बुनियाद पर अदब की पहचान नहीं करते, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के दौर का अदब आज के दौर का ही होना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं हम कोशिश करें, जब भी हम सिंसियरली कुछ लिखें तो उसमें अकासी खुद ही आ जाती है। यानी अदब की पहचान ही यही है, रिप्रेजेंटेशन, तर्जुमानी, तर्जुमानी अपने जमाने की, अपने आप की, विद रेफरेंस टू सर्टेन पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस, वो खुद ही आ जाती है। आज भी अगर हम कोशिश करेंगे कि हम जाने 16वीं सदी में या 17वीं सदी में कश्मीर कैसा था, कहाँ ढूंढेंगे वो, सबके सब इस जहानी फानी से चले गए हैं। अगर कुछ रह गया है, हिस्ट्री तो लिखी नहीं गई कश्मीरियों की, तो अगर हम झलक ढूंढना चाहें वो उस जमाने के अदब पारों में ढूंढ के निकालेंगे, कहीं कहीं कोई एक शेर, कोई एक मिसरा या कोई एक नज़्म पूरी मिलेगी, तो हम खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ पाया 17वीं सदी या 18वीं सदी के बारे में, वरना लिरिसिज्म वो कॉमन हो जाता है। इसलिए तर्जमानी बुनियादी शर्त है अदब की।
1: प्रोफेसर साहब, व्हाट हैव बीन योर फोकस्ड एरियाज, आपके इमोशंस से जुड़ी हुई जो चीजें थी, वो हाउ डू पैरामीटर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड योर राइटिंग्स?
0: लाजमी है कि कोई राइटर इस दुनिया में किसी भी जबान में किसी भी मुल्क में लिखता हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिखता, अलग से होके नहीं लिखता
1: जी।
0: He writes in response to other literatures of other languages also, within his own language, within his own socio-economic structure. लेकिन इसके लिए डिलिबरेट कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं जरूरी आज के मसलन हाईफाई की साइंस के बारे में लिखूं, AI के बारे में लिखूं, या आज के इंतजार के बारे में। अगर डिलिबरेटली हम कोशिश करेंगे वो अच्छा अदब कभी नहीं बन पाता। हाँ, जरूर ये है कि मैंने जैसे कहा कि कोई भी शायर हो, अदीब हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिख पाता, ही हैज टू रीड अ लॉट, क्योंकि अदब में दो चीजें शामिल हैं, एक तो उसका सब्जेक्ट मैटर और हालत। ठीक है, हमें उसका सब्जेक्ट मैटर मिलता है आसपास के लोगों से या बाय ट्रेडिशन मिलता है हमें, लेकिन हालत का ताल्लुक जहां तक है, उसमें अगर ये टेबल मेरे सामने है, ये वही आदमी बना सकता है जिसको मकसद के बारे में, वो एक कारपेंटर हो तो अगर कोई कारपेंटर बनना चाहे उसको जरूर है उस्ताद के पास जाना पड़ेगा।
1: Exactly.
0: इस वक्त मेरे सामने इतने सारे हाई फाई कैमरा लगे हैं, तो इनको चलाने वाला
1: प्रोफेशनल होना चाहिए।
0: यानी कि एक तो अदब में दो चीजें हैं, जीनियस जिसको आप खुदादाद कहेंगे या इनबॉर्न कहेंगे या इंस्टिंक्चुअल प्रोपेंसिटी कहेंगे, तो लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है इसकी हैयत,
1: मीनस
0: यानी फंक्शन। कोई द होम ऑफ एनीथिंग is not isolated from its function. तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। खुदादाद तो ये कभी नहीं आएगा, ये इंस्टिंक्चुअली किसी को नहीं मिलेगा। इसी तरह लिटरेचर में भी अगर कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, हमारे दौर का कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइटर हरगिज हरगिज नहीं लिख पाता तब तक जब तक कम अज कम उसने रशियन वगैरह लिटरेचर की बात न करूं, अगर अपने भारत की ही बात करें, कम अज कम प्रेम सिंह को तो पढ़ना पड़ेगा, कम अज कम कृष्ण चंद्र को पढ़ना पड़ेगा, अगर उनका पूरा मुताला हो तो एक शॉर्ट स्टोरी लिख सकता है, उनको सीखेगा। लेकिन उससे पहले बड़े बड़े मास्टर्स रहे हैं शॉर्ट स्टोरी में, जिन्होंने ये जॉनर ऑफ लिटरेचर कायम किया, मसलन चेखोव, ओहेनरे, मापासान, बाल्जाक, ऐसे लोगों को जो दूसरी लैंग्वेज से ट्रांसलेट हो गई है इंग्लिश में, हिंदी में, कश्मीरी में, उनको तो पढ़ना पड़ेगा सीखने के लिए, ये हैयत कहाँ से आएगी। वरना ऐसा होता है कि आज बहुत सारे लिखना चाहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी, लेकिन उनको मालूम ही नहीं शॉर्ट स्टोरी क्या है, जब किसी का पढ़ा ही नहीं। अगर किसी और जबान का ना पढ़े, कम से कम अख्तर मेहदीन को पढ़े,
1: जम्मू कश्मीर की जो बात है, अख्तर मेहदीन साहब की पढ़े,
0: हरे कृष्ण को उनको पढ़े, रतननाथ शांत को पढ़े, ऐसे मास्टर्स को पढ़कर ही सोमनाथ जोशी को पढ़े। जब ऐसे मास्टर्स को पढ़ेंगे हमें आएगा कि अफसाना कैसे लिखते हैं। यही बात गजल में भी है, सब जो सब गजल लिखते हैं, लेकिन ये जाने बगैर, उन उस्तादों का कलाम पढ़ने के बगैर, ईरान से आया है फारसी की गजल गो राइटर्स, किसी का किसी हाफिज किसी को पढ़े या गालिब को पढ़े, अगर गालिब को पढ़ा ही नहीं तो गजल कैसे लिखेंगे, ये रदीर काफिया इस्तेमाल कैसे करेंगे, वजन अवजान का शोर कैसे पैदा करेंगे। ये जो तहजीब है अदब की, वो उधार लेनी पड़ती है, एक्वायर करनी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है, ये इंसलाकी चीज है, अक्वायर्ड चीज है।

0: से अक्वायर की जाती है। इसलिए दोनों चीजें सही हैं। एक तो जो तजुर्बा है वो अपनी जात का हो, लेकिन ये का मामला जब तक है इसका प्रेजेंटेबल सूरत, वो प्रेजेंटेबल सूरत सीखनी पड़ती है। अगर एक मामले में कमजोर रहा, मसलन हमारे गजल गो कुछ बहुत सारे हैं जो सिर्फ रदीफ काफिया को जानते हैं, अवजान की तमीज रखते हैं, लेकिन मवाद कुछ नहीं, उनको कहने के लिए कुछ नहीं, फिर भी गजल बनाते हैं। अगर उसमें हमारे दौर की कोई रिफ्लेक्शन नहीं, अगले जमाने में उसी को याद करेंगे कि हम देखना चाहिए 21वीं सदी की इस कैसा इंसान था। सिर्फ इश्क आशिकी की बातें करने वाले से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, और सिर्फ उसी की बुनियाद पर कुछ नहीं मिलेगा उसको। इसलिए न सिर्फ रवायत सीखना पड़ेगा, हयात और अपने जमाने से हासिल करना होगा। वो तभी मुमकिन है जब हम अमली तौर पर जिंदगी में शामिल हों। हमारी शायरी के लिए, अदब के लिए जरूरी है कि आई एम डियर फॉर आई, इसका रिवर्स एग्जिस्टेंशियली, मैं हूँ इसीलिए सोचता हूँ, ये नहीं कि मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ। अगर वो तो सिर्फ थॉट बन गया। अगर हम सहेंगे मैं हूँ, I exist therefore I think, I am therefore I think, तब रिवर्स हो जाता है कि हम इंसान की सतह पर बात कर पाते हैं।
1: इस तरह समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर हैं, they could be the good writers?
0: Not necessarily. I have so many clients of mine who are good teachers, who know better English than me. ज़्यादा अच्छी हिंदी जानते हैं, लेकिन क्रिएटिव नहीं है।
1: जिस भी लैंग्वेज में रीडर है, उस रीडर के जो मेंटल एंड इमोशनल होराइजंस हैं, मेंटल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, किस तरह से आप उसको फील करते हैं, एक राइटर किस तरह से इसको बेस्ट तरीके से कर?
0: Sincere to my own experience that I want to deliver something, transport something from my inner being to others, the listener or the reader, and then I become a part of the community. I cannot isolate myself from the community. Community ki jo problems hain, issues hain, musibatein hain, khushiyan hain, gham hain, anxieties hain, jis mahol mein hum rehte hain, kaun adib, koi shayar, koi fiction writer aisa nahi ho sakta. Literature likhna to produce product mein do cheeze hain. Ek to iska मैटर है, दूसरा इसका कमिटमेंट है, ये किस पर्पस के लिए लिखा है। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल जब हर किसी बात में है, अगर इस माइक्रोफोन का क्वालिटी कंट्रोल है, इस शीशे के गिलास का क्वालिटी कंट्रोल है, पानी का क्वालिटी कंट्रोल है, तो जो प्रोडक्ट हम लफ्जों में पेश
1: क्रिएट या यू राइट
0: हैज टू बी सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ स्क्रूटनी। इफ इट पासेस ऑल द टेस्ट्स ऑफ स्क्रूटनी देन इट इज एन लिटरेचर, इफ इट डज नॉट देन इट इज नॉट गुड लिटरेचर। When we keep this thing in mind and write, we are committed to our society, we are committed to our contemporary reality, the contemporary world in general, and humanity in at large. As you said, it has to be very, very humane. The humane to hona hi chahiye. हम किसी जंगल में तो नहीं रहते, हम किसी रेगिस्तान में अलग से, किसी जजीरे में अलग तो नहीं रहते, हम लोगों में बसते हैं, तो उन लोगों की बात खुद ही आ जाती है जब मैं अपनी बात कहूँ।
1: एज ए लिटरेटर, एज ए ऑथर, एज ए राइटर, हाउ डू यू नेविगेट द बैरियर्स ऑफ द लैंग्वेज, कल्चर और पर्सनल लाइफ जो है, फैमिली लाइफ है, ग्लोबल लेवल को एब्जॉर्ब करके उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं, होन अप कर सकते हैं, शीन एंड शाइन दे सकते हैं, इसको आप कैसे नेविगेट करते हैं एज एन ऑथर? हाउ यू हैव बीन डूइंग इट?
0: कि मुझे 5-6 जबानों का इल्म है, अंग्रेजी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, इवन पर्शियन, अरबिक तो है ही, संस्कृत, इन सबको मैं टाइप भी करता हूँ, लिखता हूँ और कंपोजिंग भी करता हूँ खुद ही अपने कंप्यूटर पर। ये पहले मेरे लिए एडवांटेजस रहा, इस वजह से मुझे कई जबानों के अदब का मुताला करना पड़ा। इसके साथ जो ट्रांसलेशन वर्क है, जो बाकी लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुआ है अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में, तो मैं भी इसमें शरीक हो गया। मैंने इंटर लैंग्वेज एंड इंट्रो लैंग्वेज ट्रांसलेशंस किए हैं। मसलन मैं फारसी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैंने मिर्जा गालिब की बेहतरीन गजलों का अंग्रेजी तर्जुमा किया, बेस्ट ऑफ मिर्जा गालिब पर्शियन पोएट्री, मेरी किताब से भी बहुत चली और बहुत पसंद की गई। इसी तरह मैं कभी उर्दू की बेस्ट सूफियाना पोएट्री को कश्मीरी में डाला, इसी तरह ऐसे ही काम करता रहा और अपनी शायरी और अफसाने लिखने के साथ साथ।
1: Professor Shukla sir, the amount of time, the, I can say the hours, months, life you have spent on writings in academics, years of workings, you know, since childhood, you know, successful in navigating challenges.

0: is number one. Number two, how the people around you, your family and your friend who are associated with you, you would like to give credit to anybody?
1: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children. Up to the 12th grade, I have been their tutor, very dedicated tutor. Main aaj bhi physics, chemistry, biology, sara padha sakta hu.
0: So much of variety in your life.
1: Mujhe admission nahi mila medical college mein, kyunki un dinon invitation card milna bahut mushkil hua karta tha. To mere bacche bahut padhe hain. Mera beta Dr. Razan Swami is work of Harvard University mein oncology department ke sabse world famous oncologist hain. Meri beti is work Canada mein hai. Wo bhi science field mein hi excel kar rahi hai. Ye mujhe khushi deta hai ki chaliye mujhe tanhai mili.
0: Do you feel that they would be contributing towards the human society?
1: That has been my aim, that they should be able to contribute in their own way, not like me playing with words and making things, and let them do something, contribute to humanity. Oncology to agar kuch kar paaye, agar ek hi aadmi ko bacha paaye, mera beta to badi baat hai. Mujhse zyada bada kaam kiya hai usne hematology mein, usne kaise cancer treatment ho sakta hai, aur usne headways ki hai roz ek mulk mein dusre mulk mein rehta hua, mujhe pictures bhejta, mujhe khushi milti.
0: From all across life, jitne bhi fields hai दुनिया में गवर्नेंस के, एक पॉलिटिशियन आता है, एक एमएलए आता है, एक मेंबर पार्लियामेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप एज टीचर किस तरह से आप देखते हैं आज की तारीख में? आप बहुत हद तक मुतमईन हैं?
1: मैं मुतमईन हूँ. मैंने पहले अर्ज किया कि ये जरूरी नहीं कि मुझे बहुत सारे पढ़ने वाले मिले, लेकिन जो कश्मीरी पढ़ते हैं कॉलेजों, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ना ही पड़ेगा शिफिशो. क्यों? डिक्शनरी किसी और ने नहीं लिखी है, तो मेरी डिक्शनरी उनको लेनी ही पड़ेगी. हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर किसी ने नहीं लिखी है, तो मैंने ही लिखी, उनको लेनी है कॉपी. उनकी 31 एडिशन आज तक आ गए हैं. 1978 से आज तक हर साल मैं इसको रिवाइज करता. पहला ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा सबको. इसी तरह मैं खुश हूँ हजारों लोगों जो मेरी किताबें खरीदे, उनके साथ मेरा रब्ता न हो,
0: वो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट.
1: उनको जानता हूँ जिनको मैंने डायरेक्टली पढ़ाया है. मैं चाहता हूँ कि मुझसे भी कुछ ऐसे मेहनत करने वाले पैदा हो जाएं, ऐसे काम करें. करने को तो बहुत कुछ है अभी. हर कोई काम दूसरे नए काम की फंडामेंटल बुनियाद बनता है. अगर मेरी किताब नई किताब बिना बने, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी.
0: प्रोफेसर शोक साहब, किस तरह से आप चाहेंगे कि नेशनल लेवल पे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और जेल के लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस, उनको किस तरह से आगे की तरफ देखकर क्या काम किया जाना चाहिए?
1: सारे इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है. एक तो हमारा जो रिवाइज, जो हमारी ट्रेडिशन है, किसी भी फॉर्म में, कश्मीरी शायरी में, नसर में वगैरह, उसको प्रिजर्व किया, रिप्रिंट किया जाए. हैरत की बात यह है कि हमारे बड़े बड़े शौरा का कलाम इस वक्त अवेलेबल ही नहीं मार्केट में. हमारे मीरास को बचाया जाए.
0: प्रोफेसर शफी शौक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम विद अस. So dear listeners, with this, the special program with Padma Shri Professor Shafi Shauk concludes here. Khuda Hafiz.
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी. आज आपने सुनी जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत. इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता.
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की है. केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ CJP प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने ये घोषणा की.
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे.
3: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है.
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात

0: भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए CGPA के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
0: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
1: आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने कहा कि नीट UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ और यातायात जाम के कारण लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सभी 18 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार यात्रियों के लिए खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसियर डैन के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का लक्ष्य दिया है। ईशान किशन ने 81 और तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन की शानदार पारी खेली। ताज़ा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने 7वें ओवर में 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले सभा के शेष कार्यक्रम आज शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुन सकते हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में रात 8 बजे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे इस सप्ताह संसद में। 8:15 पर सुर्खियों में कार्यक्रम सुना जा सकता है। फिल्म संगीत 8:30 पर आप सुनेंगे। 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे विज्ञान भारती। और रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से ही रिले होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे अदिति बनर्जी का ठुमरी।

बजकर 30 मिनट से हेलो ग्राम सभा आप सुनेंगे। इसमें विषय होगा सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर स्वप्निल तुबे।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में कल सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 12 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। इसमें आप सुनेंगे कामिनी का एकांतारे का 11वां भाग। महिला कार्यक्रम आप सुनेंगे 1 बजे। 1:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम सुना जा सकता है। सुगम संगीत का आनंद आप लेंगे 1:45 पर। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेंगे। 2 बजे फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं। 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। संध्याकालीन सभा के कार्यक्रम इस तरह से होंगे। पांच बजकर 2 मिनट पर युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। 5:33 पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं। 8 बजे सुर्खियों में सुना जा सकता है। 8:15 पर डगर विकास की हम आपको सुनवाएंगे। इसमें विषय होगा पीएम श्री योजना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। 9:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इसमें आप सुनेंगे विदुषी वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात में करेंगे राष्ट्र निर्माण और गुमनाम नायकों की बात। केंद्र सरकार ने सीजेपी की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक माना, जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन हुआ खत्म। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया अपने पद से इस्तीफा, कहा युवाओं को बहकाया गया। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, 3 माह में परीक्षा जैसे अन्य मामलों का होगा निराकरण। और भोपाल इंदौर सहित प्रदेश के 35 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 4 दिन तक

0: भारी बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड कल प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आम तौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात किया करते हैं। वे देश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखा करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी CJP का प्रदर्शन समाप्त हो गया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, जितेंद्र सिंह और CJP प्रतिनिधि आशुतोष रंका और सौरव दास के बीच बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों को सहानुभूतिपूर्वक मान लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे।
1: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: वहीं CJP के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने और सौरव दास ने मीडिया और सरकार का आभार जताते हुए प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की और सभी प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने घरों को लौटने का आह्वान किया।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे इसके प्रति सदा समर्पित रहेंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही पूरी जिम्मेदारी ली और कभी भी इस स्थिति से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को घोषित NEET UG के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें वंचित पृष्ठभूमि के कई मेधावी विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों का कल्याण सर्वोपरि है। वे दतिया से वर्चुअली खरगोन के बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कल्याण वर्ष की प्रथम छमाही में जहां कृषि उपकरणों की तकनीक और उन्नत कृषि के संबंध में कार्यशालाएं आयोजित की गई, वहीं दूसरी छमाही में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। बलराम कृषि महोत्सव का ये सिलसिला 15 जुलाई को इंदौर से प्रारंभ किया गया है, जो आगामी 13 नवम्बर तक जारी रहेगा, जिसके तहत जिले जिले में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में 4 फास्ट ट्रैक कोर्स बनाए जाएंगे, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा सहित अन्य मामलों का मात्र 3 माह में निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये समय की जरूरत है कि युवाओं से संबंधित न्यायिक फैसले तीव्र गति के साथ हो। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।
4: हमारा प्रयास है हम सभी प्रकार के शिक्षा से जुड़े हुए मसलों को संवेदनशील तरीके से लेते हैं, चाहे शिक्षक वर्ग का हो चाहे विद्यार्थी वर्ग का हो। उल्लेखनीय है कि शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, 3 सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी मध्यप्रदेश ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में मौका दिया है। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे सारे कामों से हम अपने विकास की गतिविधि, और ये किसी पे हम एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे अपने विद्यार्थियों के हित में लिए गए निर्णय है।
0: सांची में आज स्वच्छ पर्यटन अभियान के तहत व्यापक स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस अभियान में स्थानीय समुदाय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों, सफाई कर्मियों, एनसीसी के विद्यार्थियों, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अभियान का उद्देश्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाना, साथ ही स्थानीय समुदाय को स्वच्छ पर्यटन की मुहिम का सक्रिय भागीदार बनाना रहा। राजगढ़ जिले में शनिवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक डैम में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुजनेर थाना पुलिस के अनुसार कार शुजालपुर की तरफ जा रही थी। भीलखेड़ी जोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित डैम में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। मृतकों की उम्र 40 से 55 साल के बीच बताई जा रही है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून इन दिनों पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। आज प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि करीब 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगरमालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने आज आगरमालवा में 111 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सर्व सुविधा युक्त आगरमालवा, सुसनेर एवं नलखेड़ा के 3 सांदीपानी विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया। खंडवा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए भंडारा आयोजनकर्ताओं और श्रद्धालुओं से सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। राजगढ़ पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन चक्षु 360 अभियान के अंतर्गत राजस्थान एवं गुना जिले की सीमा से लगे ग्राम पंचायत किला अमरगढ़ में सुरक्षा की दृष्टि से 16 हाईटेक IP आधारित CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं। अशोकनगर जिले में खरीफ 2026 फसलों का फसल बीमा के लिए किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पन्ना जिले के आदर्श ग्राम पंचायत शाहनगर को पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इस पंचायत को प्रदेश में सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाली पंचायत घोषित किया गया है। बरसात के मौसम में बच्चों को डायरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। और सागर में आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों अपन देख ही रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, भूजल स्तर में लगातार गिरावट के कारण जल संकट हो रहा है और जाके लाने अपन सभी को आगे आना होगा। और ऐसी स्थिति में खेत को पानी खेत में किसानों के लाने बहुत उपयोगी है, जाको अर्थ है कि वर्षा को पानी खेत से बहकर बाहर न जाए बल्कि उसे खेत में ही सहेज कर रखें। जैसे कहा है कि ये पानी माटी में समाहित हो जाए और ताकि खेत को और भूजल स्तर दोनों की बढ़वार रहे। भैया अपन देखते हैं कि वर्षा को पानी खेत बिना उपयोग में बहकर नदी नालों में चले जाते हैं और जैसे कहा कि अपने खेत की जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी बह जाते हैं और भूमि की उर्वरा क्षमता तो कम होती होती है। अगर ये पानी अगर अपन खेतों में रोक दें तो मिट्टी की नमी बनी रहेगी, भूजल स्तर भी अच्छा रहेगा और सिंचाई की आवश्यकता भी कम होगी। और जैसे कहा है कि अपना जो उत्पादन है बामे भी वृद्धि होगी और अपनी जो लागत है वो जो सिंचाई में अपन अधिक पैसा लगाए देते हैं तो वो भी कम होगी। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी लेकिन बाकी पहले देते तनक सु विराम और सुनते जी संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भैया अपन चर्चा कर रहे थे खेत को पानी खेत में, तो बारिश से पहले अपन को कहा है कि अपने जो खेतन की मेड़ हैं बिन्हें अपन मजबूत कर लें। जैसे कहा है कि बारिश को पानी खेत से बाहर नहीं जाएगा और खेत में ही समा जाएगा और यदि खेत अपना ऊँचो नीचो है तो बात से कहा है कि पानी बह जाते हो तो अपन अपने खेत को समतलीकरण कर लें। जैसे कहा है कि पानी समान रूप से खेत में फैलेगा और जाके अलावा अपन अपने खेत के एक हिस्से में छोटा तालाब भी बनवा लें। जैसे कहा है कि अपन वर्षा को जो जल है वो एकत्रित कर सकें जो कि सूखे के समय में अपने पशुपालन या अन्य कृषि कार्यों में सिंचाई में अपन उपयोग में ले सकते हैं। और अपने खेत में जहाँ पानी एकत्रित होता है वहाँ सोखता गड्ढे बनवा दें। जैसे कहा है कि पानी जमीन के अंदर पहुंच जाएगा, जैसे कहा है कि भूजल स्तर है बाकी वृद्धि भी होगी। और अपन अपने खेती किसानी में गोबर की खाद, कंपोस्ट और फसल के अवशेष मिट्टी में मिलाएं। जैसे कहा है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ेगी और जल धारण क्षमता से क्या है जल संरक्षण भी होगा, सिंचाई भी कम लगेगी और जल संरक्षण से सिंचाई को खर्चा कम होता है और सूखे के समय भी फसल अपनी सुरक्षित रहेगी, मिट्टी को कटाव रोकोगे, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और जल जो संकट है वाको प्रभाव भी कम होगा। हमें कम पानी चाहने वाली फसलों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे मोटे अनाज हैं, दालें हैं और तिलहन हैं, इनमें कम पानी में अच्छा उत्पादन होता है। और ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई को उपयोग करने चाहिए, जैसे भी कहा है कि पानी की 30-60% बचत हो सकता है। और खेतों की मेड़ों पर नीम, करंज, शीशम, सहजन, बांस जैसे जो उपयोगी वृक्ष हैं वे भी अपन लगाएं। इनको लगाने से कहा है कि वे मिट्टी को कटाव को रोकते हैं और मेड़न को मजबूत करते हैं और मिट्टी में नमी भी बनी रहती है। और खेत को पानी खेत में नारा नहीं है बल्कि ये भविष्य की सुरक्षा और टिकाऊ खेती को आधार है। वर्षा जल के संरक्षण से अपन जल संरक्षण जो जल संकट है वासे काफ़ी हद तक बच सकते हैं और मिट्टी की उर्वरा बचाए रख सकते हैं। तो आज की आवश्यकता है कि अपन जो अपन किसान भैया रहे भी जल संरक्षण की आधुनिक तकनीक को अपनाएं और वर्षा की प्रत्येक बूंद को खेत में रोकने को प्रयास करें। भैया रो चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सु विराम और सुनते हैं जी संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भैया नो अपन देखते हैं कि अपने पूरे विश्व में नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों, बाढ़, स्विमिंग पूलों में कई लोगों की डूबने से मृत्यु हो जाती है और कई दुर्घटनाएं थोड़ी सी लापरवाही, सुरक्षा नियमों की अनदेखी या तैराकी को प्रशिक्षण ना होने के कारण होते हैं। तो अपन अपने बच्चन को जी ध्यान रखें कि बिना निगरानी में ही अपन जलाशयों, तालाबों के पास खेलने दें और डूबने से होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनको अपन रोक सकते हैं। और यही उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है और जय दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि डूबने से जो दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें रोका जा सके। सही जानकारी, सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जल सुरक्षा नियम की जानकारी होनी चाहिए और जल दिवस को उद्देश्य ही डूबने से होने वाली मौतों को कम करना, बच्चों युवाओं में जल सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना, तैराकी एवं जीवन रक्षक कौशल को बढ़ावा देना, जलाशयों के आसपास सुरक्षा उपाय करना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। भैया नो चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम और सुनते हैं जी संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भैया रहो आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में आपको पुनः स्वागत है और अपन चर्चा कर रहे थे कि डूबने के कारणों को रोकना और दुर्घटनाओं को रोकना। भैया रहो डूबने का जो प्रमुख कारण अपन ने बताए कि अपन बच्चों की उचित निगरानी नहीं रखते, नावों में लाइफ जैकेट का उपयोग ना करना और नशे की हालत में जलाशयों में जाना और चेतावनी संकेतों की अनदेखी करना। भैया रो डूबने की घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है यदि हम बच्चों को पानी के आसपास अकेला न छोड़ें, बच्चों को तैरना सिखाएं, तेज बहाव में प्रवेश ना करें। और अपन देखा था ना कि बाढ़ के समय कई लोग पुलियों पे अपनी गाड़ियों से या पैदल उसे पार करने का प्रयास करते हैं, तो ये प्रयास ना करें। प्राथमिक उपचार या CPR को प्रशिक्षण लें। जलाशयों के आसपास लगे हुए जो चेतावनी बोर्ड हैं बिनको अपन पालन करें और बारिश के मौसम में विशेष तौर पर सावधानी बरतें। भैया रो जल ही जीवन को आधार है, लेकिन लापरवाही होने पर यही जानलेवा बन सकता है। तो जाकेलाने अपन स्वयं को जल सुरक्षा के नियमों को पालन करना चाहिए और साथ ही साथ दूसरों को भी जाकेलाने अपन को प्रेरित करने चाहिए। भैया रो चर्चा अपनी चलत रहेगी, लेकिन अब अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के कार्यक्रम फूल बगिया का भी समय हो गया है जिसका वो लोग पूरे सप्ताह इंतजार करते हैं। तो तनक उनसे भी बतियाने, फिर आप लोगों से भी चर्चा करेंगे।

बच्चों आपके अपने कार्यक्रम फूल बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों तैराकी जो है बच्चों के लिए बेहतरीन शारीरिक व्यायाम है, इससे शरीर मजबूत और चुस्त रहता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तैराकी मनोरंजन के साथ साथ महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी है, और अगर अपन उचित रूप से तैराकी करें, तैराकी के लाभ हैं, इससे शरीर की मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं, इससे हाथ पैर कंधे और शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नियमित तैराकी से शरीर सक्रिय रहता है और सहन शक्ति लचीलापन भी बढ़ता है। तैराकी एक बहुत अच्छा व्यायाम भी है, इससे हृदय और सांस लेने वाली मांसपेशियों की कार्य क्षमता बेहतर बनाने में मदद मिलती है। जब बच्चा धीरे धीरे तैरना सीखता है और पानी में अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करना सीखता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बच्चों पानी में गतिविधि आनंद तो देती है और पढ़ाई की दिन भर व्यस्तता के बाद अपन को तरोताज़ा भी महसूस कराती है, लेकिन इसके लिए बच्चों अपन को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों जब भी अपन स्विमिंग पूल, तालाब, नदी या किसी जल स्रोत के पास जाएं तो किसी बड़े के साथ ही जाएं या किसी की निगरानी में ही अपन तैराकी करें, और कोशिश करें कि प्रशिक्षित तैराकी शिक्षक से ही अपन तैराकी सीखें, और उसकी अपन कोशिश भी ये भी करें कि ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएं। अपन जैसे अभी नई तैराकी सीख रहे हैं तो अपन कोशिश करें लाइफ जैकेट या अन्य उपयुक्त सुरक्षा उपकरण हैं उनको लेके ही अपन पानी में जाएं, और जब तक अपन अच्छे से तैरना न सीख लें तो अपन गहरे पानी में ना जाएं। और इसके साथ साथ अपन जैसे कहीं नदी तालाब के आसपास जाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि उसके किनारे पर दौड़ें नहीं, किसी को धक्का न दें, दूसरे बच्चों को जबरदस्ती पानी में न डालें या बिना अनुमति पानी में छलांग न लगाएं। नदी तालाब या खुले जल स्रोत में तैरने से पहले पानी की गहराई बहाव इसका जरूर ध्यान रखें, और यदि अपन को थकान हो, ठंड हो, चक्कर हो या अपन कुछ असहज महसूस कर रहे हो तो अपन तुरंत पानी से बाहर आ जाएं। बच्चों तैराकी स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन पानी में सुरक्षा को हमें सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चों चर्चा अपनी चलती रहेगी, अब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बच्चों, अभी अपन ने सुना ये प्यारा सा गीत, और अब सुनते हैं एक वार्ता जिसका विषय है पत्तियों में क्लोरोफिल कैसे बनता है, और इसके बारे में आपको जानकारी देंगी श्रीमती शशि भामा तिवारी। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: बच्चों, आप सभी ने अपने चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों को लहलाते देखा है। वर्षा ऋतु में इनका हरा रंग पूरे निखार पर होता है। जरा सोचिए, अगर आपके आसपास रंग बिरंगे पेड़ हों, जैसे नीले, भूरे, बैंगनी और भी कोई रंग जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आइए आज चर्चा करते हैं कि पेड़ों की पत्तियां हरे रंग की ही क्यों होती हैं और पौधों के लिए इस हरे रंग का क्या महत्व है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पौधे ही हमारे लिए और संसार के सभी अन्य जीवों के लिए भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे भोजन तो बनाते ही हैं, साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, जो सभी जीव श्वसन में उपयोग करते हैं। पौधों के इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से हमारे पूर्वज पेड़ों की रक्षा करते आए हैं। इसी से संबंधित चिपको आंदोलन तो आप

आपको मालूम ही है। आपने बुजुर्गों से अक्सर पौधों की रक्षा के बारे में सुना होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझने से पहले आइए सूर्य के प्रकाश के बारे में बात करें। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे आप सभी इंद्रधनुष के 7 रंगों के रूप में वर्षा काल में आसानी से देख सकते हैं। इन 7 रंगों में से लाल और नीले रंग को पत्तियाँ अवशोषित कर लेती हैं, जबकि हरे रंग को परावर्तित कर देती हैं। हरे रंग के परावर्तन अर्थात वातावरण में वापस भेजने के कारण ही हमें पत्तियाँ हरे रंग की दिखाई देती हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल की उत्पत्ति कैसे हुई? करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई। उस समय जो सूक्ष्म जीव आए, वे ऊर्जा अनेक रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी वातावरण में अनेक परिवर्तन होते गए और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव में क्लोरोफिल की उपस्थिति दर्ज की गई, जिसकी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त हुई और समय के साथ साथ जटिल जीवों का विकास होता गया, क्योंकि यही ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस मानी जाती है। अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे क्लोरोफिल की भूमिका पर प्रकाश डाला जा सके। दिन में सूर्य की रोशनी जब हरे पत्तों पर पड़ती है, तो इनमें उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और ये रासायनिक ऊर्जा हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध हो जाती है। यही रासायनिक ऊर्जा पौधे अपनी वृद्धि के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यदि हम पत्ती आंतरिक संरचना देखते हैं, तो पाते हैं कि उनमें एक विशेष लवक पाया जाता है, जिसे पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल कहते हैं। ये पर्णहरित अपनी विशिष्ट संरचना और तरंग लंबाई के कारण सूर्य के प्रकाश में से कुछ विशेष रंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, और जैसे ही पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, इस ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। आपने कई पौधों को देखा होगा जिसमें पत्तियों में हरे रंग के अलावा और भी कई रंगों के छींटे दिखाई देते हैं। इसका सबसे सामान्य उदाहरण है विभिन्न प्रकार के क्रोटन, जिसमें पीले व लाल गुलाबी रंग भी दिखाई देते हैं, और इन्हीं विभिन्न रंगों की उपस्थिति उन्हें सजावटी पौधों की श्रेणी में ला रखती है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अगर हरा रंग जो पत्तियों में पाया जाता है अपनी विशिष्ट संरचना के कारण प्रकाश संश्लेषण करता है, तो क्यों कुछ पत्तियों में अन्य रंग जैसे हल्का पीला या नारंगी रंग भी पाया जाता है? पत्ती की संरचना व उनमें पाए जाने वाले लवक का विस्तार से अध्ययन करने पर पाया गया कि ये पर्ण लवक कई तरह के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड इत्यादि। पौधों में क्लोरोफिल ही मुख्य लवक होता है, जो लाल व नीले बैंगनी रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफिल के अलावा अन्य लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा को अवशोषित करके उसे क्लोरोफिल को दे देते हैं। इस प्रकार क्लोरोफिल के पास इतनी ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है कि प्रकाश संश्लेषण शुरू हो सके। पत्ती में पाए जाने वाले अन्य लवक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्लोरोफिल को सुरक्षित रखने का कार्य भी करता है, अन्यथा सूर्य की तेज रोशनी क्लोरोफिल की संरचना में इस तरह का बदलाव भी ला सकती है कि ये बदलाव पत्ती के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी वजह से हरित लवक के अलावा पत्तियों में पाए जाने वाले अन्य लवकों को सहायक लवक कहते हैं। ये सभी प्रकाश संश्लेषण में सीधे भाग न लेकर इस क्रिया में सहायता करते हैं। अब तक की चर्चा से यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि बिना क्लोरोफिल के पौधे खाद्य पदार्थ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में विस्तार से जानें, तो हम पाएंगे कि यह क्रिया दो विभिन्न चरणों में संपन्न होती है, जिसे क्रमशः लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि इन नामों से ही पता चलता है, अर्थात लाइट रिएक्शन के लिए सूर्य की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है, और इसी दौरान क्लोरोफिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है।

0: रासायनिक ऊर्जा के इस रूप को एटीपी के रूप में जानते हैं। इन एटीपी अणुओं का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए किया जाता है। सभी हरे पौधे सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज का निर्माण इसी क्रिया द्वारा संपन्न करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में केवल हरे पौधे व कुछ बैक्टीरिया ही इस श्रेणी में आते हैं, जो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को बदलकर खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और वातावरण में विभिन्न गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं। पत्तियों में उपस्थित हरा रंग हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसकी जानकारी तो मिल गई। फिर हमारे मन में यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि क्यों पौधे के कुछ भाग जैसे फूल या फल अन्य रंगों के भी होते हैं। पौधों में इन रंगों का भी अपना महत्व है। जैसे फूलों के रंग विभिन्न कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और परागण में सहायता करते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कच्चा फल ज़्यादातर हरे रंग का होता है ताकि खाद्य पदार्थ का निर्माण हो सके और बाद में उसमें हरा रंग परिवर्तन होता है। फलों के ये विभिन्न रंग हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने अक्सर डॉक्टर को यह कहते सुना होगा कि हमें अपने भोजन में विभिन्न रंगों के खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए क्योंकि ये हमें स्वस्थ रखते हैं। आज की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि अगर पौधों की पत्तियों का रंग हरा ना होता तो पृथ्वी पर जीवों की उपस्थिति व जैविक विविधता भी संभव न होती।
1: बच्चों, अभी अपन ने सुनी वार्ता। इस वार्ता के माध्यम से अपन ने समझा कि पौधों में हरा रंग किस तरीके से बनता है, यानी पत्तियों में क्लोरोफिल कैसे बनता है, और इसके बारे में जानकारी दे रही थी श्रीमती शशि भामा तिवारी। बच्चों, अपनी जो चर्चा का जो दूसरा विषय है वो है जीवन में अनुशासन का महत्व। बच्चों, अनुशासन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर अनुशासन का अर्थ है अपने काम समय पर करना, नियमों का पालन करना और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना। बच्चों, अगर आज अपन इस उम्र में अपनी अच्छी आदतें सीखेंगे तो वो पूरे जीवन भर हमारे काम आती हैं। और जो अनुशासित बच्चे होते हैं वो समय के महत्व को समझते हैं। वो समय पर उठते हैं, समय पर नहाते हैं, समय पर भोजन करते हैं, समय पर स्कूल जाते हैं और नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं। इसके साथ साथ खेलने, आराम करने और मनोरंजन के लिए भी उचित समय निकालते हैं। और अनुशासित बच्चे अपने सभी काम को व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। बच्चों, विद्यार्थी जो जीवन है वो अनुशासन की पहली सीढ़ी है। यदि अपन रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अपना गृह कार्य समय पर करेंगे तो परीक्षा के समय अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। समय पर स्कूल जाएं, अपने शिक्षकों की बात ध्यान से सुने, अपनी कॉपी किताबें व्यवस्थित रखें, तो ये सब अनुशासन का हिस्सा है। और अगर आज हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। इसके अलावा सुबह जल्दी उठें, रोज़ अपने दांत साफ करें, साफ़ कपड़े पहनें, भोजन से पहले हाथ धोएं, अपने खिलौने किताबें सही जगह पर रखें, बड़ों का सम्मान करें जो अपने व्यक्तित्व को भी अच्छा बनाती हैं। बच्चों, समय बहुत मूल्यवान होता है और एक बार जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। तो अनुशासन में अगर हम रहेंगे तो हम अपने समय का सदुपयोग कर सकेंगे। यदि पढ़ाई, खेल और आराम के लिए अपन समय निर्धारित कर लें तो बिना तनाव के भी अपन पूरे काम कर सकते हैं। बच्चों, जब अपन समय पर काम पूरा करते हैं तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है और अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा होने लगता है। और यही आत्मविश्वास आगे चलकर अपन को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे निकलने का मौका देती है। बच्चों, अपन चाहे खेल ले लें, चाहे पढ़ाई ले लें, सभी में अनुशासन का बहुत महत्व है। खिलाड़ी को नियमित अभ्यास करना चाहिए, प्रशिक्षक की बात मानना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, हार जीत को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए बच्चों, अनुशासन से और टीम भावना विकसित होती है।

बच्चों, अनुशासन केवल स्कूल और पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। अपने घर में अपने माता पिता की सहायता करें काम में, भाई बहनों के साथ प्रेम से रहें, बड़ों का सम्मान करें और छोटों से अच्छा व्यवहार करें, ये भी अनुशासन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बच्चों, अपन सड़क पर जो यातायात के नियम हैं उनका भी पालन करें, कूड़ा कचड़ा इधर उधर ना फेंकें, अपने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। तो बच्चों, जैसे अपन विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में अपन क्या करें कि अपन जो पेंसिल है, कागज़ हैं, उनको इधर उधर ना फेंकें, जो अपने कूड़ादान होता है उसमें डालें। इसके अलावा अपने विद्यालय में आसपास पेड़ पौधे लगाएं, उनको प्रतिदिन पानी दें, जिससे वो अपने को आगे भविष्य में फ़ायदा देंगे। बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ अनुशासन भी बहुत आवश्यक है। बच्चों, अपने देश के या पूरे विश्व के जितने भी महान खिलाड़ी हैं, वैज्ञानिक हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं और अन्य जो सफल लोग हैं, उन्होंने समय और काम के प्रति अनुशासित रहे। यदि अपन आज से ही मेहनत करने की आदत डाल लें तो भविष्य में अपने लक्ष्य को अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों, जैसे अपना अगर उद्देश्य है कि अपन खेल में आगे बढ़ें, तो उस खेल में सीखने के प्रति अपन ईमानदार हैं, नियमित मेहनत करें, प्रशिक्षक की बात करें, या अपने को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना है तो उसके लिए अपन नियमित तौर पर पढ़ाई करें। अगर अपन नियमित तौर पर पढ़ाई करेंगे, अपने समय पढ़ाई को नियमित समय देंगे और खेल कूद के लिए भी अपन समय देंगे, इसके साथ साथ अपन को आराम भी करना है। तो बच्चों, अगर अपन अनुशासन में रहेंगे तो निश्चित तौर पर अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने कामों की जिम्मेदारियों को समझें, सही समय पर काम करें। इसलिए अपन को बचपन से ही, आज से ही अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छी आदतें डालें, सभी से प्यार से बात करें। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हम आज जो हमने लक्ष्य आज साध रखे हैं उन लक्ष्यों को हम पूरा कर सकते हैं। बच्चों, चर्चा अपनी चलती रही, अब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बच्चों अभी अपन ने सुना ये प्यारा सा गीत, और बच्चों अब हो गया चलने का समय, तो सभी बच्चों को सुधांशु भैया का ढेर सारा प्यार।

चलते चलते हम अपने सभी किसान भैयाओं से ये जरूर कहेंगे कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, पानी का जमाव ना होने दें, और अगर पानी का जमाव नहीं होगा तो हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए साफ सफाई रखें और स्वस्थ रहें। तो भैयाओं, अब हो गई चलवे की बेला, तो सभी किसान भैयाओं को सुधांशु भैया की राम राम। जय जवान, जय किसान।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहाँ चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नज़ारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए।

कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी

को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही तीन बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे
जैसे ही दोबारा शुरू हुई।

विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक और आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि इन परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में इसे अमली ढांचा पहनाने के लिए विधि सम्मत उपाय भी किए जाएंगे। यानी संभव है आने वाले दिनों में हम एक नया कानून इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आता हुआ दिखें। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में राजनीतिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक अदिति टंडन जी को। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं उसमें कई में हमने देखा कि कुछ लापरवाहियां रही या उचित कदमों में कहीं तालमेल का अभाव दिखा और प्रश्न पत्र लीक हो गए। इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला और अंततः सरकार ने कड़े कदम उठाने के आश्वासन दिए हैं। किन रूप में दिख रहे हैं इन्हें?
3: देखिए, जैसा कि आपने कहा खुद ही अपने रिमार्क्स में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं और इवन राज्य के स्तर पर जो एग्जामिनेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज के लीक हो रहे हैं। सिस्टम में लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स होते रहे हैं, बहुत सारे हुए हैं, हर स्तर पर, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर हुए हैं और सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की जो कवायद है वो ये बहुत सालों से चल रही है। मैं खुद ही बहुत पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री पर लिखा करती थी, तब से ये

0: कोशिश चल रही है। मुझे आज भी याद है कि AIEEE का एग्ज़ाम लीक हुआ था 2011 में, जिसके बाद सबसे पहले एक संजीदा मसौदा तैयार करने की बात हुई थी कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को फुल प्रूफ बना सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है मनोज जी, हर सरकार के टाइम पर आया है और हर सरकार ने अपने तरीके से इसको प्लग करने की कोशिश की है, पर हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज माफिया है जो इससे लाभान्वित होता है और इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत वेल एंट्रेंच हो चुके हैं सिस्टम में। जो लोग एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, पेपर लीक के डायनामिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, इसके जो तार हैं बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कल मैंने देखी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 ऑफिशियल्स को सैक किया गया है, और ये भी वक्तव्य आया है सरकारी सोर्सेज के हवाले से कि उनमें से बहुत लोगों पे अब मुकदमा भी चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लेटेस्ट नीट UG जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट MBBS एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, May 3 को पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व हैं, अंदर के भी लोग कुछ इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए एक इस सिस्टम में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया है। और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने वक्तव्य में कही हैं सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए। एक तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसा नहीं कि देश में है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मतलब है वो ये है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ इस लॉ के तहत जो केसेस दर्ज होंगे उनको डे टू डे बेसिस पर सुनने के बाद 3 महीने में उनका ट्रायल खत्म करेंगे चार्जशीट फाइल होने के बाद। और हम और आप आज बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही घंटों पहले जो बिल का मसौदा है, जो बिल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था अपने वक्तव्य में परसों रात को, जब उन्होंने एक वीडियो सेल्फी बना के देश के युवाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में एक बिल लेके आने वाले हैं। जो पुराना बिल 2024 में सरकार ने पास किया है उसी को इम्प्रूव किया गया है और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई है वो ये की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया परसों रात को अपने संदेश में, और कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आज बिल का मसौदा भी हम सबके सामने आ गया है और पार्लियामेंट में ये बिल मंडे को पेश भी होने जा रहा है।
1: यहाँ पर थोड़ा हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि ये जो मसौदा बिल आया है उसमें क्या सब बातें रखी गई हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में सुधार के कारक बनकर सामने आएंगे।
0: इस बिल का जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। मैंने जैसे कहा कि ये नया बिल नहीं है, 2024 का बिल है, उसमें संशोधन लाएगी सरकार। संशोधन के माध्यम से नई पनिशमेंट्स घोषित करेगी और जो नए मसौदा तैयार किया है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। जो पुराना बिल था 2024 का, उसमें ये कहा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल पेपर लीक के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 वर्ष की और उस पे जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक ले गए हैं। और सिमिलरली अगर यही क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से कोई कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इन्वॉल्व है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान और भी कड़े किए गए हैं। उस केस में कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट अब 7 साल होगी और मैक्सिमम जो फाइन होगा वो 10 करोड़ होगा। तो ये मेन इस बिल की प्रावधान है। ये तो हो गया कि आपने पनिशमेंट बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमें पता है कि केसेस लंबित रहते हैं लंबे लंबे समय तक। उसको ठीक करने के लिए इस बिल में एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान जो मुझे लगता है वो ये है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित कर सकते हैं इस कानून के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स इन मामलों में होंगी वो हर दिन होंगी, डे टू डे बेसिस पर चलेगा ट्रायल, और ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर दिया गया है कि जब जब ऐसा कोई बड़ा मामला आए नजर में तो इमिजिएटली स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके उस STF को ये मैंडेट होगा कि आपने 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अभी क्या हो रहा है ना, सिस्टम में मिसट्रस्ट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लंबित बहुत हैं केस। आप कानून लाकर सिस्टम को परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने आएगा वो फाइनेंसेस का आएगा।
1: अच्छी

0: बात कही है कि पिछले कानून से किस तरह ये कानून बदला हुआ होगा, अधिक सख्त होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक मामला शुरू हुआ और आमतौर पर ये मामले दम तोड़ देते जब पुख्ता सबूत नहीं रखे जाते। वहां पर कैसे कह लें कि उस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा, यानी अदालतें बन गई। जैसे अभी यदि हाल का एक मामला लें तो उसमें जिस व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया उसके विरुद्ध फिलहाल कोई सबूत नहीं मिलने से वह छूट गया, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए?
1: इसमें मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है ऐसे केसेस में वो कितना लायक है, वो कितनी अच्छी तरीके से आर्ग्यू कर सकता है मैटर, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कितनी क्विकली फॉरेंसिक एविडेंस गैदर कर सकती है, कितनी जल्दी डिजिटल इम्प्रिंट्स को देख सकती है, क्योंकि लीकेजेस तो अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन है, तो उससे क्या है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये सोचना होगा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपर्ट्स भी कोऑप्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, उसमें कन्वेंशनल पुलिसिंग मेथड से आप क्रिमिनल गैंग्स को नहीं हैंडल कर सकते, आपको बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज हर सेक्टर में चाहिए।
0: यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस दिशा में एनटीए क्या कर रही है और किस रूप में अपने आप को पेशेवर बनाने के लिए पेशेवर लोगों की सलाह लेने की योजना बना रही है।
1: इनफैक्ट परसों हमने देखा कि सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से नए पोस्ट घोषित किए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। उन्होंने ये कहा है कि नियुक्ति के लिए अब 4 जनरल मैनेजर्स बुलाए जाएंगे। अभी क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जैसे सबसे ऊपर एक चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है, तो लेकिन अब डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा, उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनटीए ने एक बयान में ये भी कहा है कि ये उपाय एजेंसी के जो संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा है उसके लिए हेल्प करेंगे।
0: यदि श्रोताओं, कुल मिलाकर सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हमारी जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं या राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए जिस तरह तकनीक बदल रही है, तकनीक हावी हो रही है, उसके निदान के लिए जो हमारा वैधानिक ढांचा है उसमें वैसे ही दक्ष पेशेवरों की नियुक्ति की जाए। यहाँ पर अदिति जी, आपने कहा कि इसे वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा, ढांचा तैयार किया जाएगा, किस रूप में परिवर्तन होता देख रही हैं आप वहाँ उस स्तर पर?
1: देखिए, परिवर्तन कितना हो पाएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव सिग्नल इस वक्त है वो ये है कि परिवर्तन की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो लड़ाई है मनोज जी, ये बहुत लंबी है, और ये जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला चीटिंग से लिंक करके नहीं आप देख सकते। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट होता है। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस बच्चा पैदा होते ही पैसा जमा करना शुरू कर देती हैं कि देश में अच्छे एजुकेशन में या अच्छे कॉलेज में अगर बच्चे की भर्ती करानी है तो उसे अच्छे स्कूल में भेजना है, उसकी एक कॉस्ट है, अच्छी कोचिंग दिलानी है, वो कितनी एक्सपेंसिव है हम सब जानते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को सीट मिलेगी। यही वजह होती है कि बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स फीड करते हैं।
0: थोड़ा इसे और विस्तार देकर बताएं कि सिस्टम में बदलाव किस तरह का और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में?
1: मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि एग्जामिनेशन सिस्टम तब फूल प्रूफ हो सकता है जब उसमें ग्रेडिंग हो। ये प्रामाणिक है। आप देखिए कौन कौन से एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे देश में हैं, जिनमें या तो आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि लीक हुए हैं या बहुत नेग्लिजिबल हुए हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए, वो कभी क्यों नहीं लीक होता?
0: बिल्कुल,
1: आप उस मसौदे को समझिए।
0: आर्म फोर्स हैं, उनके
1: आर्म फोर्सेस के लीक नहीं होते। आप और भी समझिए, जब से आपने आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ग्रेडेड बना दिया है, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था AI EEE। मुझे आज भी याद है 2011 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत त्रस्त हुए थे। उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। आप जानते हैं पहले JEE मेन कंडक्ट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल के बच्चे जो टॉप 25% आते हैं उनको मौका मिलता है IIT में जाने का। उससे होता क्या है, जब आप ग्रेडेड एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं कंपटीशन के लेवल पे, आप डिसइंसेंटिवाइज करते हैं कि बच्चे पैसा देके पेपर खरीदें। क्यों? क्योंकि पहले लेवल पर आप निकल जाएंगे, कोई

0: गारंटी नहीं है. जब कोई गारंटी नहीं है तो कोई इंसेंटिव नहीं है पैसा देने का, तो आप डिमांड और सप्लाई के साइकिल को तोड़ सकते हैं ग्रेडेड सिस्टम में. सिमिलरली यूपीएससी में 3 लेवल्स हैं. सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरीज होते हैं, उसके बाद मेंस होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है. किस किस लेवल पर कोई लीकेज के लिए पैसे देगा. सो ये एक सिंपल इजीली डूएबल एक फॉर्मूला है. जो एआई पीएमटी का एग्जाम भी पहले ग्रेडेड होता था, उस वक्त लीकेजेस मुझे लगता है कम होते थे. जब से आपने सिंगल एग्जाम बनाया है, ये जो नीट यूजी है, आपने जब से इसको सिंगल एग्जाम बनाया, 22 लाख बच्चे बैठते हैं. 500 सिटीज में होता है, जिसको कहते हैं बहुत बड़े स्केल पर ये एग्जाम होता है. 22 लाख बच्चों को एक साथ टेस्ट करना और उनको एक ही विंडो में MBBS की सीट देना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम ग्रेडेड एग्जाम करेंगे नीट यूजी को, जैसा कि पहले होता था दो लेवल्स पर, पहले स्क्रीनिंग और फिर सिलेक्शन, तो शायद ये लीकेजेस का इंटेंसिटी कम होगा. ये प्रामाणिकता से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है.
1: अच्छा, कुछ राज्यों की ओर से इस नीट परीक्षा प्रणाली को ही लेकर विरोध जताए जा रहे हैं, उस दिशा में कुछ सुधार की या एक रूपता लाने की कोई भूमिका बनती नजर आ रही है आपको?
0: बिल्कुल. देखिए, तमिलनाडु ने शुरुआत से नीट यूजी का विरोध किया है. उनका ये कहना था कि 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन के बेसिस पे हमारी स्टेट में एक MBBS की एडमिशन होती थी और वो चलती रहनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन मॉडल स्टडी करेंगे, उसमें JEE मेन और JEE एडवांस्ड का मॉडल बहुत अच्छा है. IITs के टॉप डायरेक्टर्स ने मिलकर उसे बनाया है. उसमें बहुत लेवल हुई थी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, और उसमें 12वीं के रिजल्ट्स का भी एक पोर्शन काउंट होता है. फिर वही मैं कहूंगी कि नीट यूजी बहुत बार लीक हुआ है, 3 बार तो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है. तमाम मॉडल्स को स्टडी करने के बाद आप ये भी देखिए कि क्या कहीं नीट यूजी के स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की जरूरत तो नहीं है.
1: यानी श्रोताओं, एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता परीक्षा प्रणाली को है, ऐसा लग रहा. बस यहीं पर हम श्रोताओं आपकी ओर से अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
0: धन्यवाद.
2: अभी आप सुन रहे थे परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा. इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया.
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है. प्रस्तुत है फिल्म संगीत.

हीरो नंबर वन फिल्म का नखमा अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी कुमार सानू की, गीतकार थे समीर और संगीतकार थे आनंद मिलन।

ये धुन है साजिद वाजिद की फिल्म हेलो ब्रदर में। गीत फैज़ अनवर का, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की।

हेलो ब्रदर, फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं उदित नारायण और अलका याग्निक की। फैज़ अनवर के बोल थे, साजिद वाजिद ने इसकी तर्ज बनाई थी। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस

0: जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
0: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
0: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
2: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

छोटी छोटी खुशियां ही जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती रहती हैं। पर हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करके खुशियां देने का काम हमारी सखियां ही तो करती हैं। एक ऐसा संसार जहां होती हैं हमारी सखियां, सखियों की बातें, अपने मन की बातें, दिल की बातें, खुशियों का खजाना, मनोरंजन की सौगात, ज्ञान की बातें और भी अपनी कुछ अनकही अनसुनी सी बातें, जहां एक अलग ही खुशी का अनुभव हम करते हैं, क्योंकि हमारा अपना संसार है महिला संसार। जी हां, महिला संसार। इस कार्यक्रम को सुनना ना भूलें। हर बुधवार एवं शुक्रवार को समय होगा सुबह 10:05।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में समाचार रिली होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए

0: शिक्षा मंत्री होंगे उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
4: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस

0: कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने

मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Blue have registered an unassailable 2-0 lead in the series. A report.
1: This win for the men in blue marks the first series win under the captaincy of new T20 skipper Shreyas Iyer. Chasing a huge target of 220 runs set by India, Zimbabwe got bundled out for just 129 runs in the 18th over. India's batting all-rounder Abhishek Sharma impressed with his bowling skills and bagged 3 wickets. Moreover, debutant Yash Thakur and Prince Yadav each picked up 2 wickets. Earlier, after being invited to bat first, India posted 219 for 5 in stipulated 20 overs, riding on Ishan Kishan's 81 runs of just 44 balls. Tilak Varma also contributed crucial 60 runs in just 29 deliveries and remained unbeaten at the crease. Chirag Jha from Sports Desk.
0: In Ladakh, the first day of the 27th Kargil Vijay Diwas commemorations concluded with the solemn Shaurya Sandhya ceremony at the Kargil War Memorial in Dras this evening. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Dras and participated in the ceremony. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns. CJP calls off protests as government agrees to their demands after talks with Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. President Draupadi Murmu concludes her three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. Ancient Buddhist site of Sarnath in Uttar Pradesh added to UNESCO World Heritage List. And in cricket, India beat host Zimbabwe in second T20 international by 90 runs in Harare. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने एहतजाज खत्म कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का 3 मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सौंपा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब प्रधान ने कहा कि तलबा के एहतजाज के बाद गुज़िश्ता 10 दिन से जारी सूरत हाल से उन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह अना का मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली जंतर मंतर और पूरे मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की खिदमत उनकी जिंदगी की अव्वलीन तरजीह रही है और वो हमेशा इस बात पर अहद बस्ता रहेंगे। जनाब प्रधान ने कहा कि 16 जुलाई को ऐलान किए गए नीट यूजी नतायज इत्मीनान बख्श थे। इनमें कमजोर तबकों से वाबस्ता कई तलबा ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। जनाब प्रधान ने कहा कि अलबत्ता ऐसे वक्त में भी जिम्मेदार ओहदों पर फायज अफराद ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की और तलबा को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि इन बातों से उन्हें गहरी तकलीफ पहुंची है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के साथ साथ वजारत तालीम का चार्ज सौंपा गया है। जनाब जोशी इस वक्त सारेफीन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम नेज नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने वुजरा की मरकजी कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सीजेपी ने हुकूमत के जरिए अपने मुतालबात पूरे किए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदाम के लिए उसके मुतालबात पर तवज्जो मरकूज की गई। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी के वफ्द के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग के दौरान हुकूमत ने सीजेपी के उन मुतालबात से इत्तेफाक किया है कि एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई और ना ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर ना हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: सीजेपी के चीफ तर्जुमान सौरभ दास ने इस उम्मीद का इजहार करते हुए एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया कि जिन उमूर पर इत्तेफाक हुआ है उन पर मुतफक्का वक्त की मुद्दत में अमल दरामद किया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वालों के कुनबों को मुआवजे देने के मामले पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस जिम्न में हुकूमत को पूरी हमदर्दी है और वो उसूल और जवाबित के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मुआवजा फराहम करने को यकीनी बनाएगी।
3: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
2: इस दौरान सीजेपी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रांका ने तमाम एहतजाज करने वालों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर एहतजाज खत्म करें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं।
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
2: लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुल्क के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के लिए ठोस इकदामात करें। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तालिब इल्मों की जीत करार दिया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के तमाम स्टेशन अब मुसाफिरों की खिदमात के लिए खुल गए हैं। इससे कबल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने सिक्योरिटी वजूहात के बाइस 18 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया था। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है और तकरीबन 1,15,000 लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ली हुई है। शिवसागर चराइदियो और जोरहाट सैलाब से ज्यादा मुतासिर हैं। सैलाब से मजीद 14 लोगों की अमवात की खबर है जिससे रियासत में हलाक होने वालों की कुल तादाद 61 हो गई है। मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आसाम में सैलाब से इंसानी जानों के नुकसान और उससे होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया है और वो आज तीसरे पहर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। इससे कबल दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू ने भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत की। बुखारेस्ट में भारतीय बिरादरी के लिए मुनाकिदा एक इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय बिरादरी के तआवुन की ये कहते हुए सताइश की कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी के अहम सुतून हैं।
5: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर रिसर्च

0: कल्चर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने रोमानिया के अपने हम मनसब के साथ वसी मुजाकरात किए। उनका मकसद तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, काबिल तजदीद तवानाई और सकाफत के शोबों में बाहमी तावुन को मुस्तहकम करना था। सदर जमहूरिया मुर्मू ने रोमानिया के वजीर आजम और पार्लियामानी लीडरों से भी मुलाकात की। नीज भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब किया। उन्होंने अननोन सोल्जर के मकबरे पर खराज अकीदत पेश किया। उन्हें इक्तसादी मुतालियात की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। ये एजाज उन्हें अवामी खिदमत और भारत रोमानिया ताल्लुकात में उनके खिदमात के मद्देनजर दिया गया है। रोमानिया सदर जमहूरिया मुर्मू के 3 रोजा सरकारी दौरे का आखिरी मरहला था। 3 मुल्कों के इस दौरे में मोल्डोवा और शिमाली मकदूनिया का दौरा भी शामिल था। उत्तर प्रदेश का कदीमी बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल हो गया है। आज जनूबी कोरिया के बुसान में आलमी मीरास से मुतालिक कमेटी के 48वें इजलास के दौरान इसे बाजाब्ता शामिल किया गया। आलमी मीरास की सरकर्दा फहरिस्त में भारत की ये 45वीं इमलाक है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सारनाथ को आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया है और इसे हर भारतीय के लिए फख्र का एक लम्हा करार दिया है। नायब सदर ने कहा कि सारनाथ अमन, दानिशमंदी और हमदर्दी की एक लाजवाल अलामत रहा है जिससे भारत के रूहानी और फलसफियाना दायमी विरसे की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे फहरिस्त में शामिल किया जाना मुल्क की तहजीबी और रूहानी विरासत का जश्न है। सकाफत और सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारतीय सकाफती विरासत के लिए एक अहम लम्हा करार दिया है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा सोना बेशा यानी सोने से तैयार मलबूसात के साथ रथ पर सवार देखे जा सकते हैं। रिवायती खूबसूरत जेवरास्ते आरास्ता इन देवी देवताओं के दर्शन के लिए पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद हैं। पेश एक रिपोर्ट।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज सोनावेशा में निहायत शानो शौकत के साथ रथ पर सवार हैं, जो खूबसूरत ताज, हार, बाजूबंद, बालियां और दीगर रिवायती जेवरात से आरास्ता हैं और ये तकरीबन 208 किलोग्राम सोने और दीगर कीमती जवाहरात से तैयार किए गए हैं। ये पवित्र सुनहरे लिबास, जो सालाना रथ यात्रा की अहम तरीन रसूमात में से एक है, अकीदतमंदों के दर्शन के लिए आधी रात तक जारी रहेगा। पूरा शहर अकीदत के जज्बे से सरशार है। इस तकरीब के पुरमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के खातिरखा इंतजामात किए गए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुन अली खान।
1: मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क को मशरकी सूबे देर एल ज़ोर से मरबूत करने वाली कौमी शाहरा पर 2 बसों के आज आपस में टकराने के बाद कम से कम 35 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि सहराई शाहरा पर शहरियों की एक बस और दाखिली उमूर की वजारत की एक बस के दरमियान टक्कर में तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए हैं। इस हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 रोज के दौरान छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने इस माह की 27 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। मर्दों की क्रिकेट में हरारे में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया। भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का बड़ा निशाना दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 18वें ओवर में महज 129 रन पर आउट हो गई। भारत के बल्लेबाज ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए 3 विकेट हासिल किए। अपना पहला मैच खेल रहे यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेट पर 219

19 रन बनाए थे। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। भारत ने T20 के नए कप्तान सुरेश अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज जीती है। आज कनाडा के ओंटारियो में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनहत सिंह ने मिस्र की बार्ब समे को 3-1 से हराने के बाद आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। इसी मकाम पर अब उनका सामना खिताबी मुकाबले में मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। इस मैच के भारतीय वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 10:30 शुरू होने का इम्कान है। अनहित सिंह तारीख में महज दूसरी खिलाड़ी हैं जो जोशना चिनप्पा के बाद इस सरकर्दा खिताबी मुकाबले में पहुंची हैं। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने एहतजाज खत्म कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया का 3 मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: दोस्तों विज्ञान भारती के आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंट वार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाए जाने के अवसर पर IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है IVF तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताजा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष

0: मिशिगन के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है, जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है, जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को DNA राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल DNA सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक DNA में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
1: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है, बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं DAVPG कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
3: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहाँ बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है, जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था, वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है, जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
1: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन?

0: हाइड्रोजन। इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं,
1: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनामो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं, और उस एनर्जी का उपयोग करके जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशंस भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही साइड में ही रेलवे स्टेशन के बगल में ही वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है, और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है। और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है। पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ट्रेन में उनको रिफिल करने में इस्तेमाल किया। और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहां पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलकर वापस वो पानी बना गए, यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया, और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
0: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। IIT कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों है।
2: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये है धरती में बहुत सारे बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
0: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स से नहीं बनते हैं, उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे NdFeB बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो Nd जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो Nd की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी बजाय की कि जब हम Nd और Fe को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्युमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
0: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
2: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी, कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना, तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है। और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मतलब एक होता ना कि

0: आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं,
0: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, स्टेम सेल और IVF तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से IVF तकनीक क्या है।
2: तो बेसिकली जो IVF है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपीयरेंस, तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, एंड ही वाज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमीट, एक फीमेल और मेल गेमीट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर, तो उसे हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली। तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है, फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद दो दिन बाद डे टू एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे थ्री होता है, फिर डे फोर होता है, फिर डे फाइव होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब जीरो डे है और फिर स्लोली स्लोली पांचवें दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है और फिर चिपकता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं पांचवें दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं।
1: दोस्तों, IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं,
2: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है, जहां कि पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे पांच दिन में दो बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम एनवायरनमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती है। देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते, तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है, तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा. तो इस सेंस में जो चांसेस हैं अटेम्प्ट्स हैं आईवीएफ के वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा. देन एआई सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया, तो मतलब आजकल लैब्स में एआई विटनेसिंग हो गई है. ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर चार मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो एआई के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है, ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे.
1: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है. लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों, और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से.
3: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है. जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई. इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर आयोजित की गई 2010 में. जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने, और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा. इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए. अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता. तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया. आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते. इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण. इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया. आज 58 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं. इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहाँ पर है.
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं.
3: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो है वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है. प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना. इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो एनडीसीए है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक एम स्ट्राइप ऐप बनाया. हमें अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो एम स्ट्राइप ऐप में एंटर कर सकते. दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है. और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है. यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा. जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं. तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए गए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है. साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पे निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर.
1: दोस्तों जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है. क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से.
4: देखिए जब हम साइंस की बात करते हैं तो कोई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि ये कहीं संस्थान है, ये कोई लैब है जहाँ कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है. हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए. ऐसी टेक्नोलॉजी तो जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है. नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार हैं, फ्रुगल नवाचार हैं, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं. अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गांव से जोड़ना, ये एसटीआई है क्योंकि ये उन्हीं उन्हीं से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए एसटीआई इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
1: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
4: आप

0: देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस्ड, इसलिए हमने स्टेम की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, एक साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़े, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सुनें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही है बिल्कुल स्किल बेस्ड जो होना चाहिए, वही देश को बदलेगा। मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं करा, वो कैसे बदलेगा। सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली, वो सोलर के, तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है। ये विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हो, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
2: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारे लेके नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुराने डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीढ़ी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

श्रोता हूँ, इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी की एक ग्रेड गायिका श्रीमती आदिति बैनर्जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती आदिति बैनर्जी।
0: श्रीमती आदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नीलमाधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायिके का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सान्निध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूर्व अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती आदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूर्व अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
1: श्रीमती आदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। सब्सिक्वेंटली शी अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग इन खयाल एंड टप्पा सिंगिंग अंडर द एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्वालियर घराना पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित अंडर द गाइडेंस ऑफ पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू फॉर नियरली 14 ईयर्स शी मास्टर्ड द ऑथेंटिक पूरब अंग गायकी परफॉर्मिंग ठुमरी, दादरा, होरी एंड कजरी एंड ऑल्सो एकम्पनीड हर गुरु ऑन न्यूमरस प्रेस्टीजियस ओकेजन्स। इन एडिशन टू टॉपिंग हर एमए एंड एमफिल डिग्रीज इन म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विथ गोल्ड मेडल्स, श्रीमती आदिति बैनर्जी वॉज स्पेशली ऑनर्ड बाय पद्म विभूषण गिरिजा देवी ड्यूरिंग द पूरब अंग गायकी उत्सव।
0: आइए सुनते हैं श्रीमती आदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल है बैरन रतिया कैसे आऊ।
1: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती आदिति बैनर्जी। शी इज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। शी बिगिन्स हर रिसाइटल विथ ठुमरी कंपोज्ड इन राग मिश्र तिलक कामोद सेट टू दीपचंदी ताल। बैरन रतिया कैसे आऊं।

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामो ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है छाई घटा घनगोर।
1: That was ठुमरी मिश्र तिलक कामोद। Now श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी, सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: That was Dadra set in मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीर।

0: सागर।
1: इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
2: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे एंड ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जाँच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
3: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
5: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
3: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय

के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: have registered an unassailable 2-0 lead in the series. This also marks the first series win under the captaincy of new T20 skipper Shreyas Iyer. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन EIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।